नमस्कार श्रोताओं, हम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 18 जून 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं। सुस्वागतम।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: सुबह के 6 बजे का समय होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से

0: संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन वार।

लीजिए श्रोताओं, सुनिए सबसे पहले आज का चिंतन। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें। लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। हर अनुभव एक शिक्षा है, हर बदलाव एक संकेत है और हर क्षण भगवान की योजना का हिस्सा है। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए वंदनवार में भक्ति रचनाएं।

अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का पाठ आज भाग 223 प्रसारित किया जाएगा। 6:45 पर और शाम को पुनः शाम को 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार है वायलिन वादक SL कंडारा। इसका भाग एक प्रसारित होगा। प्रस्तुति मनीषा जैन की। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:00। 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर और पुनः दिन में 2:00 आप सुनेंगे त्रिवेणी आलेख एवं स्वर चंचल वर्मा का। सुबह 8:30 पर और रात को 8:15 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम चित्रलोक। पर सुबह और रात्रि 9:30 पर पुनः आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा संगीतकार डांसिंग पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। पिटारा में आज के मेहमान के अंतर्गत आज आप सुनेंगे सुबह 10:00 अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत। प्रस्तुति कल्पना शेट्टी की है। रंग तरंग कार्यक्रम का प्रसारण समय 11:00। 12:05 पर सुनिएगा यादों की महफिल। 1:00 सुरीला सफर। दोपहर 2:15 पर

समाचारों के बाद आप सुनेंगे 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे सखी सहेली के अंतर्गत बातचीत होगी सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस पर। कहानी पद्मश्री की अंतर्गत बात होगी बसंती देवी बिष्ट उत्तराखंड की पहली जागर लोक गायिका के बारे में। मुझे कुछ कहना है इसमें आप बात सुनेंगे आज ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा, उपयोगी टिप्स जिसमें कि आपको टिप्स दिए जाते हैं खाना बनाते समय कुछ काम के टिप्स। संवादक चंचल वर्मा और आरती श्रीवास्तव रहेंगे। शाम 4 बजे हेलो फरमाइश सुनिएगा संवादक ममता सिंह। शाम 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:30 पर सुनिएगा झरोखा, 6:35 पर संध्या रंजन। फौजी भाइयों का कार्यक्रम जयमाला, इसका प्रसारण समय रहता है 7 बजे। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा इनसे मिलिए में विग मेकर अनवर पावस्कर से, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिएगा हास्य नाटिका मशीन का चक्कर, लेखन शांति स्वरूप प्रधान का है, निर्देशन विनोद रस्तोगी का। 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। 10 बजे छाया गीत, आलेख एवं स्वर नेहा आगरकर देसाई का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 10:30 जाए रात, ये कार्यक्रम आप सुनते हैं रोज रात

30 मिनट पर, और 11 बजे सुनिएगा रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोका के अंतर्गत। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस पाठ, आज इसका भाग 223 आप सुनेंगे।

राजा जनक के दूत चित्रकूट आ पहुंचे हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे राजा जनक का कुशल क्षेम पूछा तो दूत आदर तथा संकोच से नतमस्तक होकर बोले, आपका आदर के साथ पूछना ही कुशल हो गया मुनिवर, नहीं तो कुशल क्षेम तो अयोध्यापति के साथ ही लुप्त हो गए थे। उनके जाने के साथ ही सारा जगत, विशेष रूप से कोशल और मिथिला अनाथ हो गए थे। भरत को राज्य और श्री राम को वनवास, ये सुनकर मिथिलापति का दुख और भी अधिक हो गया। जनक जी ने भरत जी की वास्तविकता जानने के लिए अपने गुप्तचर अयोध्या भेजे। लौटकर गुप्तचरों ने अपनी बुद्धि के अनुरूप स्थिति का वर्णन किया, जिसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच तथा स्नेहवश व्याकुल हो गए हैं। और अब जनक जी अपने सभासद तथा कुटुंबियों समेत चित्रकूट पधार रहे हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं, वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। तो आइए सुनते हैं वॉयलिन का विहंगम संसार, इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं का हृदय से स्वागत है। मित्रों, वायोलिन एक ऐसा वाद्य जो पश्चिम से आया और हमारे यहाँ हमारे संगीत में बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से रच बस गया। पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत में चेम्बर म्यूजिक से लेकर फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा तक इस्तेमाल किए जाने वाला ये वाद्य, इसका आगमन हमारे यहाँ कैसे हुआ और किस तरह से इसका इस्तेमाल यहाँ संगीत में किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए, इसकी शास्त्रीयता के बारे में हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए विविध भारती के स्टूडियोज में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित एसएल कंडारा जी। कंडारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में।
2: शुक्रिया आप विविध भारती का और श्रोताओं का।
1: आपका अपने ही घर में स्वागत करते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। श्रोताओं, अपने घर में मैंने इसलिए कहा क्योंकि पंडित एसएल कंडारा साहब आकाशवाणी में कार्यक्रम निष्पादक से लेकर सहायक केंद्र निदेशक और उसके बाद दूरदर्शन में चीफ प्रोड्यूसर यानी प्रमुख निर्माता के पद पर कार्य कर चुके हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड कलाकार हैं। कंडारा साहब, वायलिन के बारे में हम तफसील से जानना चाहेंगे, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि वायलिन का जन्म कहाँ हुआ और कैसे इसे पश्चिम में संगीत में इसे स्थान मिला।
2: जयंत जी, वायलिन अपने आप में एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट के रूप में मुझे नजर आया और परिपूर्ण साज, परिपूर्ण वाद्य की तरह इस इंस्ट्रूमेंट को मैंने पाया और देखा। जहाँ तक इसके जन्म का या इसके उद्भव का प्रश्न है, भारत में कुछ भ्रांतियां हैं। हिंदुस्तान में कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ रावण हत्ता करके एक इंस्ट्रूमेंट था, उसका एक ये इनकार्नेशन और मॉडिफाइड रूप है, पर मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। जैसा वायलिन मैंने देखा है, वो वायलिन पाश्चात्य देशों का ही प्रोडक्ट मुझे लगता है। 16th century में
1: जी
2: इस वाद्य को पहली बार 1530 में फेरारी साहब की पेंटिंग में, एक बहुत बड़े पेंटर थे फेरारी, ग्रैंडियाजियो फेरारी, ये फ्रांस के पेंटर थे, उनकी पेंटिंग में ये परिलक्षित हुआ 1530 में। और 1530 में इस साज के तीन तार उसके साथ बंधे हुए थे, 3 wires इंस्ट्रूमेंट। अब विविध भारती में तो अपने लिमिटेशन है, नहीं तो श्रोताओं को हम लोग वो साज की पेंटिंग बताते थे। तो कोई बात नहीं, श्रोताओं की जानकारी के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि इस बाजे का जो ओवरऑल पैटर्न जो अभी एक्सेप्टेबल है और वर्तमान में उपलब्ध है, वो एस्टेब्लिश हुआ अमाटी फैमिली के जेकब

0: स्टेनर और एंटोनियो स्टेडिवेरी, ये दो लोगों ने इसका जो वर्तमान स्वरूप उसके जिम्मेदार वो लोग हैं, वो उन लोगों ने इसको वर्तमान शेप दिया।
1: जी जी।
0: अब स्टेडिवेरिस के नाम से तो बाजा ये प्रचलित है और मेरे पास भी जो वायलिन एक है
1: जी।
0: वो स्टेडिवेरिस मैक है और ये वर्ल्ड ओवर ये जो मैक है बड़ा ऊंचे दर्जे पे देखा जाता है।
1: हाँ जी।
0: बड़े बड़े वायलिनिस्ट इस मैक के वायलिन बजाते हैं। ये मान लेने में हमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि ये बाजा पश्चिमी बाजा है।
1: इसका आगमन हमारे देश में किस तरह से हुआ?
0: ये अच्छा सवाल आपने पूछा। इनफैक्ट हमारे यहाँ जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिग्रहण यूं कहिए कि वो निवेशवाद के कारण आना शुरू हुआ
1: जी,
0: तो मद्रास में सबसे पहले बैंड के साथ ये बाजा वहाँ पे उपस्थित था।
1: अच्छा।
0: ईस्ट इंडिया कंपनी के बैंड मास्टर्स लोग जो थे
1: हाँ हाँ हाँ।
0: वो इसका उपयोग बैंड में करते थे और मद्रास में जो बालू स्वामी दीक्षितर साहब थे, ये बहुत बड़े कंपोजर थे, मुथु स्वामी दीक्षितर
1: जी
0: उनके भाई थे, तो उन्होंने इस बाजे को देखा और बैंड वाले जो एक्सपर्ट्स थे उनसे उन्होंने सीखने की कोशिश की।
1: हाँ हाँ।
0: और सबसे पहले उन्होंने उस बाजे को सीखा और उसको अपने हिसाब से बजाने की कोशिश की।
1: वाह।
0: ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये लगभग 17 सेंचुरी में शुरू हुआ और उस जमाने में शुरुआत के बाद साउथ इंडिया में वायलिन इतना छा गया
1: जी
0: कि आज हर फंक्शन में, हर प्रोग्राम में, हर गायक के साथ, हर वादक के साथ वायलिन आप बजता हुआ देखेंगे।
1: जी जी। कंडारा जी, ये मैं जानना चाह रहा था कि पश्चिम में इसे जिस तरह से बजाया जाता है, इसके तारों की ट्यूनिंग जो की जाती है उसमें, और भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा है इसे अपना लिया गया, मगर इसकी ट्यूनिंग में फर्क है दोनों जगह जो बजता है
0: जी,
1: वो क्या खास फर्क है?
0: देखिए, पश्चिम में जो ट्यून करते हैं बड़े बड़े लोग, यहूदी मेनन साहब, लोकासस वगैरह
1: जी,
0: ये मसा परे का एक स्केल हमारे यहाँ कहते हैं।
1: हाँ हाँ।
0: मंद्र तार जो है मिलाते मध्यम में, फिर सा हो गया, फिर पंचम, फिर आखिरी तार जो है वो रिखव तार सप्तक की, और ये स्केल कुछ दिनों तक हमारे यहाँ चला, फिर उसके बाद में आगे जो भी इसमें परिवर्तन हुए वो बाद में बात करेंगे। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन वादकों का इस पे जो सिद्ध हस्त अधिकार है
1: हाँ हाँ हाँ,
0: वो अद्भुत है, उसकी हम लोग बराबरी नहीं कर सकते।
1: इनमें बहुत से स्टालवर्ट्स हुए हैं, बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, एक प्रमुखता से जिनका नाम लिया जा सकता है वो है यहूदी मेन्युहिन। बहुत से
0: अनडाउटेडली
1: भारतीय संगीत प्रेमी उन्हें जानते हैं क्योंकि यहूदी मेन्युहिन साहब ने पंडित रविशंकर जी के साथ मिलकर के जो काम किया है संगीत के क्षेत्र में,
0: बिल्कुल
1: वो अद्भुत है।
0: डेफिनेटली यहूदी मेन्युहिन साहब वो व्यक्ति है कि जिन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को पहचाना और उसको इज्जत दी
1: जी,
0: उसमें पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अली अकबर खान साहब और मेरे गुरुजी पंडित राम नारायण जी, और गज के बाजों को वेस्टर्न म्यूजिक में, पाश्चात्य संगीत में सबसे महान माना गया, बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तो शुरुआत में यहूदी मेनन साहब के साथ कुछ बहुत बड़ा, उनके साथ मेरे कहने से बड़े नहीं हो जाएंगे, वो तो बहुत बड़े हैं, उनका कुछ एक मैं चाहता हूँ कि एक कोई
1: यहूदी मेनन द्वारा कंपोज किया हुआ एक जो संगीत रचना है उसकी झलक सुनवाते हैं।
0: बहुत बहुत आदर की बात है एंड इट विल बी ग्रेट ट्रिब्यूट टू दैट पर्सनैलिटी, उनको आदर मिलेगा और मैं वो आदर का भागीदार बनना चाहता हूँ आपके साथ।
1: जी जी, आइए सुनते हैं।

0: इस खूबसूरत रचना को सुनने के बाद पंडित जी, भारत में आपने बताया कि दक्षिण में इसे बालू स्वामी दीक्षितर ने इसे अपनाया, सीखा और बहुत अधिक लोकप्रिय किया, इसका प्रचलन उत्तर भारत में किस तरह से हुआ और कौन इसके प्रणेता रहे हैं?
1: जैन जी, सबसे पहले जब मैंने होश संभाला तो इस बाजे को देखा, संगीत के बड़े विद्वान मनीषी ऋषि
0: जी
1: जो भी कह लें उनके लिए कम है, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, तो उनका दिनमान पे एक फोटोग्राफ था वायलिन हाथ में लिए हुए।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो इस बाजे को सबसे बड़ी इज्जत उनके हाथ में जाने से उत्तर भारत में मिली, उन्होंने इस बाजे को इज्जत बख्शी। वो कैसा बजाते थे, हमारे पास उसके कुछ रिकॉर्ड्स ही हैं मेरे ख्याल से, श्रोताओं को उनमें से कोई उपलब्ध हो तो सुनवाएं।
0: जी अवश्य। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का बजाया हुआ राग सिंदूरा की एक झलक अपने श्रोताओं को सुनवाएं।
1: बिल्कुल, बड़े आदर के साथ श्रोताओं को ये पेश करिए आप।

0: उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब की वायलिन पर बजाए राग सिंदूरा की झलक हमने सुनी और श्रोताओं इसी के साथ वायलिन का विहंगम संसार इस श्रृंखला की ये पहली कड़ी यहाँ समाप्त हो रही है। फिर भेंट होगी, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारानिया। कीजिए मेरा नमस्कार स्वीकार। लीजिए आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम की ये पहली प्रस्तुति। फिल्म का नाम है सुहागन। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में ये गीत है। हसरत जयपुरी के बोल हैं, संगीत दिया है मदन मोहन ने।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं भूले बिसरे गीत में अगला गीत। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है, रचनाकार कैफ इरफानी है, संगीत फिर से मदन मोहन का और फिल्म का नाम है शेरू।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला

0: को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
0: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
0: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: 呀！
1: 哈哈哈！
0: 嗨嗨嗨！
2: ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म शराबी से। मदन मोहन का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।
3: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
4: परेशान हूं मैं।
3: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
5: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
3: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
5: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको

0: होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, वक्त है एक अंतराल का, मिलते हैं इस अंतराल की बात।

साहिबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

0: साहिब बहादुर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी किशोर कुमार की, राजेंद्र कृष्ण के बोल, धुन बनाई थी मदन मोहन ने।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमा।

आइए अब आपको सुनवाते हैं जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये गीत था लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में सारंगा फिल्म से। भरत व्यास के बोल थे, संगीत था सरदार मलिक का, और इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

प्रिय श्रोताओं, हम लोग हाजिर हैं आपके लिए कार्यक्रम लेकर। हम हैं राही प्यार की। आइए आपको सुनवाते हैं ये पहला गीत, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, राजकुमार फिल्म से। हर्ष जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए अब आपको सुनवा रहे हैं खयाम के संगीत से सजा ये गीत। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें। फिल्म का नाम कभी कभी।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की में। और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं हम रवि के संगीत से सजा प्रेम धवन का लिखा गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत प्यार का सागर फिल्म से।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध

0: भारती पर।
1: आओ प्यार करें, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं उषा खन्ना के संगीत से सजा, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वर।

फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म का गीत सुनिए। ओपी नैयर के संगीत से सजा मर्जू सुल्तानपुरी के बोल हैं, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें।

आइए अब आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति। ये गीत हमने लिया है फिल्म कन्हैया से, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वरों में। शैलेंद्र का लिखा गीत, शंकर जयकिशन का संगीत।

लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वरों में कन्हैया फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और ये गीत है हम हेरा ही प्यार के कार्यक्रम का आखिरी गीत। इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के यहीं संपन्न हुआ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजे का समय होने जा रहा है। थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित होंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी

0: से सोती है। और हुकुम सिंह भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवेचक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
3: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
4: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
2: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
5: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनयिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
2: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
6: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
2: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
7: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी।

0: 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
3: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
4: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
2: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
5: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
2: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
6: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के

0: राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
1: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट एएफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन, फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1 रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जन्म का मतलब है एक अलग सीमित रूप में आना। जैसे हम जन्म लेते हैं, हम एक नाम, एक शरीर, एक समय और एक कहानी में बंध जाते हैं। ये आना अपने साथ एक वादा या सच्चाई लेकर आता है, वो ये कि ये देह रूप एक दिन चला जाएगा। इसीलिए जन्म के क्षण में ही मृत्यु का बीज बो दिया जाता है। जन्म मृत्यु की ओर पहला कदम है। ये जीवन का सबसे अटल और अनिवार्य सत्य है। हम सब इस हकीकत को जानते हैं, फिर भी मृत्यु के नाम से, उसके भय से ही हमें कपकपी महसूस होने लगती है। यूं देखा जाए तो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की यात्रा में अकेला ही होता है। सुख दुख साझा किए तो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें भुगतना तो अकेले ही पड़ता है। जीवन की शुरुआत और अंत तय है, इसीलिए हर पल को पूरी तरह से जीना बहुत महत्वपूर्ण है।

हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थाई हैं। जो भी इस धरती पर आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अंत में हमारे अच्छे कर्म और दूसरों को दी गई खुशी ही हमारे साथ जाती है, बाकी सब तो यही रह जाता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारे वर्तमान कार्य ही भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छा समय हमेशा नहीं रहता और बुरा समय भी एक दिन बीत ही जाता है। धैर्य और सकारात्मकता ही जीवन के पहियों को चलाते हैं। मनुष्य का धर्म केवल अपने कर्तव्य को फल की इच्छा के बिना निष्ठापूर्वक करना है। जिंदगी का असली खजाना धन दौलत नहीं बल्कि वो अनुभव और सबक होते हैं जो हमें हर अच्छे बुरे दिन से मिलते हैं। ये सच्चाई हमें सिखाती है कि दिखावे और अहंकार में जीने की बजाय

वर्तमान में रहकर अपने कर्मों को सुधारना ही वास्तविक जीवन है। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो जीवन हमें मिला है उसे किस तरह जीना है ये तो हमारे हाथ में है। इसीलिए जब तक हम जी रहे हैं और हमारे प्रियजन भी जी रहे हैं, तब तक इस जीवन के एक एक क्षण को जी लें और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं।

तो हम यही सुनते आए हैं कि इस संसार का संचालन और नियंत्रण एक सर्वोच्च शक्ति के द्वारा होता है। हर प्राणी में परमात्मा का अंश मौजूद है। संसार का नियम है कि जो इस संसार में आया है उसका अंत निश्चित है। सुख दुख, लाभ हानि और जीवन के उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। इन्हें समान भाव से स्वीकार कर लेना ही सच्चा ज्ञान है। हर एक चीज का आरंभ उसके अंत के साथ ही होता है। सूर्य का उदय होता है तो अस्त भी होता है। वसंत में नए पत्ते की कोपल फूटती हैं तो पतझड़ में पूरा पत्ता ही गिर जाता है। जब हमारा कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है तब जीवन में एक खालीपन आ जाता है जिसे कोई नहीं भर सकता। ऐसे में कई दुख हमें घेर लेते हैं और जीवन की क्षणभंगुरता को लेकर मन में कई सवाल उठ खड़े होते हैं।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

लीजिए, हम हाजिर हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। आप सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूं मैं, पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी की मंगल कामनाओं के लिए हम आपको कहते हैं गुड मॉर्निंग। और आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, आज है गुरु अर्जुन देव शहीद दिवस। सिख इतिहास में गुरु अर्जुन देव जी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। वे केवल सिख धर्म के पांचवें गुरु ही नहीं थे, बल्कि सत्य, त्याग, सेवा और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पहले शहीद गुरु भी थे। उनकी शहादत मानव इतिहास में साहस और आध्यात्मिक दृढ़ता का अद्वितीय उदाहरण मानी जाती है। हर वर्ष उनका शहीदी दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है, जिसमें उनके महान बलिदान और शिक्षाओं को याद किया जाता है। इस बार पांचवें सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस गुरुवार यानी आज 18 जून 2026 को मनाया जा रहा है। यह दिन मानवता के प्रति उनके समर्पण और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है।

केसरी फिल्म का गीत आपको हमने सुनवाया। जैजी बी इसके गायक कलाकार थे। कुंवर जुनेजा ने इस गीत को लिखा था और चितरंजन भट्ट

0: कुंवर जुनेजा ने इस गीत को लिखा था और चितरंजन भट्ट का संगीत था।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं कभी अलविदा ना कहना फिल्म का गीत। सोनू निगम और अलका याग्निक, साथ ही वसुंधरा दास की आवाजें हैं। जावेद अख्तर का लिखा गीत, शंकर एहसान लोय का संगीत।

सोल्जर फिल्म का गीत अलका याग्निक और कुमार सानू के युगल स्वरों में समीर ने इस गीत को लिखा, अनु मलिक के संगीत से सजा ये गीत था। अब कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

इस अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। मैं आपकी रेडियो दोस्त पूजा नरानिया। श्रोताओं, आज है गोवा क्रांति दिवस। 18 जून गोवा के लिए महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि इसी दिन गोवा की आजादी की नींव पड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानी और देश के बड़े सोशलिस्ट नेता राम मनोहर लोहिया का इससे खास संबंध था। उनका गोवा की आजादी में खास योगदान रहा। 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत भले ही 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन गोवा को आजाद होने में 14 साल और लगे। भारतीय सेना ने पुर्तगाल से गोवा को आजाद कराने के लिए यहां पर आक्रमण किया था। इसके बाद गोवा आजाद हुआ, लेकिन पूर्ण राज्य बनने में उसे 26 साल और लगे। इसके बाद 30 मई 1987 को गोवा को अलग राज्य का दर्जा मिला और ये देश का 25वां पूर्ण राज्य बना। भारतीय सेना ने पुर्तगाल से गोवा को आजाद कराने के लिए यहां आक्रमण किया था।

0: वी जारा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रथा मजुमदार की आवाजों में। जावेद अख्तर का लिखा गीत था, मदन मोहन का संगीत।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर

0: एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: अलका याग्निक और सोनू निगम की युगल आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं सलीम बिजनोई का लिखा गीत डब्बू मलिक के संगीत से सजा। फिल्म का नाम तुमको ना भूल पाएंगे।

आपको सुनवाते हैं जन्नत फिल्म का गीत केके की आवाज में। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने और प्रीतम ने संगीत से सजाया है।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रलोक में अब वक्त है एक अंतराल का।

0: भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: श्रोताओं, आपको बता दें कि आज है संगीतकार दान सिंह की पुण्यतिथि। उन्हीं को याद करते हुए आज की फनकार कार्यक्रम उन्हीं पर केंद्रित रहेगा। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को पुनः आप रात को 9:30 पर सुन सकते हैं और अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह की 9:30 पर यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रित रहेगा संगीतकार दान सिंह पर। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, कुछ ना कहो। इस फिल्म से उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल हैं, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
4: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
5: वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।

इस ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। श्रोताओं, आपको बता दें, आज है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, यानी सेलिब्रेटिंग फूड हेरिटेज 2026 की थीम है इस डे के लिए। ये हर साल 18 जून को मनाया जाता है। भोजन विरासत का जश्न है इसका अर्थ है। इसका उद्देश्य पारंपरिक खाद्य ज्ञान, स्थानीय सामग्री और पर्यावरण अनुकूल खान पान को बढ़ावा देना है। सतत खान पान का मतलब है ऐसा भोजन चुनना जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि भोजन कहां और कैसे उगाया जाता है तथा हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है। इसका महत्व ऐसा है कि हमें ध्यान देना होगा प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी और ऊर्जा की बचत की, और स्थानीय किसानों को समर्थन देना, यानी कि उन्हीं से मौसमी सब्जियां और फल खरीदना। भोजन की बर्बादी में कमी हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। पारंपरिक और क्षेत्रीय खाद्य संस्कृति का संरक्षण, ये भी तो हमारा कर्तव्य है। वैसे क्या करना चाहिए? स्थानीय और मौसमी फल सब्जियां ही खाना चाहिए और उन्हें किसानों से ही खरीदना चाहिए। भोजन की बर्बादी को बिल्कुल ना करें। दालें, बीन्स और हरी सब्जियां अधिक खाएं। जैविक कचरे से खाद यानी कंपोस्ट बनाएं। प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। इस दिवस का संदेश है कि छोटे छोटे टिकाऊ खाद्य विकल्प अपनाकर हम स्वस्थ जीवन और सुरक्षित पर्यावरण में योगदान दे सकें। और सुनिए ये गीत जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाज में, दावते इश्क फिल्म से। कौसर मुनीर के शब्द, साजिद वाजिद का संगीत।

0: है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?
1: कभी खुशी कभी गम में सुन का गीत अलका याग्निक, सोनू निगम और करीना कपूर की आवाजों में समीर का लिखा गीत है। धुन बनाई है संदेश सांडिल्य ने।

0: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और मैं सिर्फ यही कह पाता था,
1: आंखें खुली हो या

फिल्म मोहब्बते से ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, उद्भव और कुछ साथी कलाकारों की आवाजों में, जिसमें शाहरुख खान, उदित नारायण, मनोहर शेट्टी, प्रथा मजूमदार और साथियों के स्वर थे, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारायणिया को, नमस्कार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब।

0: बुलाया, उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दान

डांसिंग का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत डांसिंग के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन 1.5 बरस बीत गया। डांसिंग खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि डांसिंग

0: आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि दान सिंह ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में दानसिंह को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना।
1: गोरा गोरा मुंह

यहाँ आपको बता दें कि असल में बी एन शर्मा जिन्होंने भूल न जाना का निर्माण किया था वो फ्लैट में डांसिंग के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। डांसिंग ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल न जाना का।

फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964 मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त ये गाना गा रही है।

लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल ना जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारे लाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी। और सैक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माय लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की बानगी।

अफसोस 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दानसिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है?
0: आप सुन रहे हैं विविध

0: दोस्तों आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार। मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज रही है बचपन से, कहीं आपके भीतर कुछ पैदा कर देता है। वो लगता है जैसे कि आप ही के भीतर से कोई आवाज आ रही है, और मैं यहाँ पे हूँ, मैं पहली बार आया हूँ रेडियो में।
1: अच्छा,
2: तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार।
1: लेकिन रेडियो के साथ में बतौर श्रोता आपका रिश्ता पुराना रहा है।
2: मैं

0: मैं जब छोटा था तो मुझे बड़ा शौक था रेडियो का, और पैसे चूंकि होते नहीं थे तो मैंने एक दो बार पैसे इकट्ठे किए और मैं रेडियो लेके आया था, छोटा पॉकेट रेडियो 110 रुपए, जो मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी। रात को मैं सुनता था उसको और वो सुबह खर खर करता हुआ पाया जाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। स्पेशली 10 बजे कोई कार्यक्रम आता था, छाया गीत, करेक्ट
1: जी, हाँ, और उसमें हम पुराने पुराने गाने
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: विद कमेंट्री पेश करते हैं। तो ये जो उसमें आप कमेंट्री वगैरह भी, क्योंकि उन दिनों तो हॉकी और क्रिकेट की कमेंट्री के लिए रेडियो बड़ा सहारा हुआ।
0: बिल्कुल बिल्कुल हाँ।
1: और कौन कौन से रेडियो स्टेशन सुना करते थे विविध भारती के अलावा?
0: मेरे ख्याल से वही एक ज्यादा
1: पॉपुलर
0: हुआ करता था उस समय। और जो जैसे क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था तो कमेंट्री उस पर आती थी, वो सुनते थे। और टेलीविजन तो उन दिनों बहुत कम हुआ करता था, किसी के घर में पाया जाता था तो वहां इतने सारे लोग जमा हो जाते थे कि भाई चलिए टीवी देखा जाए।
1: आपके यहाँ टीवी कब आया पहली बार?
0: हमारे यहाँ आया 83 में, जब ये एशियाड हुए थे।
1: कलर आए थे ब्लैक एंड व्हाइट?
0: ब्लैक एंड व्हाइट।
1: अच्छा, चूंकि रेडियो की बात कर रहे हैं हम, और रेडियो के स्टूडियो में आए हैं आप, विविध भारती के स्टूडियो में आए, क्यों ना आपकी फरमाइश के गाने से?
0: मुझे एक्चुअली पुराने गाने यार बहुत बहुत अच्छे लगते हैं,
1: और विविध भारती के पास विजय भाई पुराने गीतों का जबरदस्त खजाना है।
0: तो मुझे एक मन्ना डे साहब का एक गाना है, ऐ मेरे प्यारे वतन, जो मन्ना डे साहब क्या क्या गाया है,
1: अद्भुत,
0: बाप रे। और
1: लेकिन जो कुछ भी गाया, कव्वालियां गाई, भजन गाए, रोमांटिक सॉन्ग्स गाए, और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने जो उन्होंने गाए हैं वो भी अद्भुत हैं। उनका गाना ये काबुली वाला फिल्म का गाना है, प्रेम धवन साहब का लिखा हुआ है और सलील चौधरी साहब का संगीत है। सुनवा दिया जाए?
0: बिल्कुल।
1: ऐ मेरे प्यारे वतन,

0: और इस समय सिर्फ वतन में ही नहीं, वतन के बाहर भी लोग आपको सुन रहे हैं। विजय भाई, ये मैं जानना चाहूंगा कि पहली विजय कब प्राप्त हुई आपको फिल्मों के लिए, काम मिला?
1: मैं दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा वहीं पे। और मेरी मतलब जैसे कहते हैं ना कि बचपन में पूछा जाता है कि भाई क्या बनेगा बच्चा बड़ा होके। तो मैं ऐसा कह लें कि मुझसे ये सवाल नहीं किया गया था कभी कि क्या बनेगा। मेरी समझ में हिंदुस्तान में इतने सारे परिवार हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है, जहां शायद ही कभी बच्चे से ये सवाल किया जाता है। इट्स अ वेरी ग्लैमराइज्ड क्वेश्चन एक्चुअली कि क्या बनेंगे आप। इस सवाल तक तो ध्यान जाता ही नहीं है, बहुत करोड़ों परिवार ऐसे हैं, वहां ध्यान कुछ और ही रहता है कि खाना आज मिलेगा कि नहीं।
0: बस ये
1: तो सवाल मेरे ख्याल से पेट भरने के बाद शुरू होते हैं।
0: और कई परिवारों में तो थोपा भी जाता है कि हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, बच्चे से कोई नहीं पूछता है।
1: हाँ, और ये अनजाना अनदेखा कर देते हैं हम कि हम ही तय करते हैं कि बच्चा क्या करेगा। जैसा आपने कहा ना कि बच्चे से पूछा नहीं जाता, और बच्चे से पूछना भी नहीं चाहिए। बच्चा भी उस मेरे ख्याल से उस जगह तक पहुंचा नहीं कि जहां वो इस सवाल को झेल पाए। इतना बड़ा सवाल है
0: जी जी।
1: और छोटा सा बच्चा नन्ना वो भी जी रहा है, और ये सवाल उन लोगों का है जो एक्चुअली जी नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है। वरना ये सवाल कभी कोई सेंसिबल आदमी नहीं पूछेगा, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना है। अभी तो जीने का समय है, अभी तो जी ले कम से कम,
0: रास्ते में है अभी तो।
1: मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या बनूंगा। मैंने ये सोचा कि यार मेरा होगा क्या। जब धीरे धीरे हम बड़े होने लगे कि यार अब तो बड़े हो गए, पढ़ाई वढ़ाई खत्म होने वाली, अब तो फ्री की रोटी मिलेगी नहीं।
0: पढ़ाई में थे कैसे आप?
1: मैं यार ठीक ठाक था, मतलब मन मेरा लगता नहीं था पढ़ाई में,
0: मन कहीं और लगता था।
1: मन मेरा खेलने कूदने में, और अकेले बहुत समय बिताया मैंने। मैं घर बहुत बाद में जाता था, कह लें कि सिर्फ सोने के लिए जाता था।
0: इस आवारगी का ताल्लुक किससे था? मतलब अपने आसपास के, कभी मौसम से बात करना, पेड़ों से बात करना, हवाओं से बात करना, कुछ ऐसी बात थी क्या?
1: जहां मैं पैदा हुआ पूसा इंस्टीट्यूट, वो खेत खलियान वहां बहुत है, हालांकि है दिल्ली के अंदर, बट आप वहां अगर गए हो कभी या जाने का मौका मिले आपको तो आपको लगेगा नहीं कि आप दिल्ली में। बड़ी शांति है वहां, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे मतलब अमरूद, आम, जामुन और पता नहीं क्या क्या, मतलब बाग बगीचे वहां पे हैं। लोगों की संख्या बहुत कम है। उस माहौल में मेरी पैदाइश हुई, और पूरी जो सराउंडिंग थी वो नेचर से पूरी भरी हुई थी। उसने शायद कह लें आप, या मैं पीछे से कुछ लाया होऊंगा। मुझे एकांत बड़ा पसंद था हमेशा ही।
0: जिस तरह से आप आए हैं और आपकी शख्सियत को देख रहा हूं, मैंने पर्दे पर तो आपको कई फिल्मों में देखा, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक मलंग पना जो है वो आपको बड़ा पसंद है। वो
1: हाँ वो है।

0: कड़पन वही जिंदगी की जो होती है, अलमस्त जो एक स्वभाव सा होता है। और आपने अभी कुछ देर पहले कहा भी कि इस वक्त जो है उसे हम जी लें।
1: बिल्कुल, मतलब इससे बड़ा सच मेरे ख्याल से है नहीं। जैसा कहा भी आता ना, इस सच को हम उसका सामना करने में बड़ा कतराते हैं कि हमेशा आगे कुछ तय हो जाए, हम पहले तय कर लेना चाहते हैं, जबकि वो हो नहीं पाता कभी। ये अजीब सा भ्रम है जो हमेशा बना रहता है हमारे हमको कि हो जाएगा तय, जबकि होता नहीं। तो मैं खुद वैसी प्रवृत्ति का आदमी हूं, वैसी प्रकृति है मेरी, मुझे अच्छा लगता है। जब भी समय होता है मैं निकल जाता हूँ गाड़ी वाड़ी लेके हाईवे पे, कहीं गाड़ी रुक के फिर खेत वेत में थोड़ा घूम लिए, वहाँ चेयर डाल के बैठ गए, मुझे बड़ा मजा आता है।
0: ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी भी आपको अपनी वो जो जड़ें हैं उनसे जुड़े रहना बहुत पसंद है। आपने अभी कहा कि ये पल जो है वो जी लें, और इस पल में मैं समझता हूँ कि जब हम पल की बात करते हैं तो संगीत हमारे बहुत सारे पलों को सुरीला बनाता है, उसके साथ जीना भी बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम उसके उसकी नदी में बस बहते चले जाएं। तो आपने कहा कि पुराने गानों का बड़ा शौक है आपको।
1: हाँ, चूंकि बात अब चल रही है पलों की, हाँ, तो एक गाना तो बन गया।
0: कौन सा?
1: पल पल दिल के पास तुम रहते हो।
0: क्या बात, बहुत खूबसूरत गाना है। और धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया है, है ना, ब्लैकमेल फिल्माया गया है।
1: फिल्मों के बगैर मुझे नाम नहीं मालूम है, बट गाना वाकई बड़ा खूबसूरत।
0: आइए सुनते हैं।

0: अपने श्रोताओं से कहेंगे कि पल पल विविध भारती के साथ बने रहिए। इस समय हमारे साथ हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता विजय राजे। विजय भाई, परिवार की आपने बात की और अपनी तबीयत के बारे में भी बताया, लेकिन एक्टिंग जो होती है वो सबकी तबीयत में नहीं होती, और उसके लिए वो भी एक साधना है, बहुत बड़ी कला है। मैं समझता हूं कि तरह तरह के चरित्र जो आपके आसपास रहते हैं जिंदगी में, उनको पर्दे पर जीना, इतना विश्वसनीय बना देना कि लोग डूब जाएं उसमें, वो सच में एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है। तो एक्टिंग जो थी, इसका आपके बचपन से कहीं कोई रिश्ता है, या बड़े जब आप हुए तब आपके भीतर कहीं ना कहीं उसका अंकुरण हुआ?
1: मैं बड़ा शर्मीला किस्म का व्यक्ति रहा हूं बचपन से, अब शायद नहीं हूं, थोड़ा बेशरम हो गया। तो मैंने कभी नहीं सोचा था एक्चुअली कि मैं अभिनेता बनूं, ऐसा मैंने पहले कहा कि मैंने तो खैर कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं क्या बनूंगा।
0: घर में भी कोई नहीं था इस फील्ड में?
1: नहीं, घर में पिताजी सरकारी नौकरी में थे, मम्मी हमारी हाउसवाइफ। पिताजी से बड़े जो हमारे दादा थे उनका संग मुझे बहुत ज्यादा मिला नहीं, इनफैक्ट मुझे बुजुर्गों का संग मिला ही नहीं बहुत ज्यादा। मैं शायद 8-10 साल का रहा हूंगा जब दादाजी हमारे चले गए, और चूंकि वो गांव में रहते थे तो उनसे मुलाकात तभी हो पाती थी जब हम गांव समर वेकेशन में जाते थे। तो उन 10 सालों में भी बहुत ज्यादा संग रहा नहीं, सुना है मैंने बस कि वो थोड़े मलंग टाइप थे, तो हो सकता है वहां से मुझे ये मलंगपना मिल गया हो, मेरी तबीयत में वहां से आ गया हो। कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था तब ये घटना अचानक घट गई मेरे साथ कि वहां पे थिएटर करते थे लोग, और मैंने उनसे पूछ लिया यूं ही कि हमको भी यार कोई रोल वोल दे दो यार, क्या है। तो उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया, वो मैंने पढ़ दिया। अच्छा ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं ना, ये इंस्पेक्टर जहां यहां लिखा है, सारी याद करके लाना। जब उन्होंने ये बात कही कि याद करके लाना, वहां से मुझे थोड़ा दिल एकदम टूट गया। मेरे यार ये मैंने गलत पंगा ले लिया, ये अगर मैं ये याद करूं तो यार मैं पढ़ पढ़ा के थोड़ा कुछ थोड़े ठीक ठाक नंबर ले आऊं, 40-42 नंबर आते हैं 100 में से, तो थोड़े बेहतर हो जाएं, पिताजी खुश हो जाएं। लेकिन जवान थे आप, 18-19 साल की उम्र में, तो उस समय होता ना कि आपकी जुबान से जो बात निकल गई अब तो पत्थर की लकीर हो गई। लेकिन घर आके वापस मैं आया और मैं सोचता रहा खाना खाने में, यार अब तक की बहुत बड़ी गलती की लाइफ में, ये मुझे प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी मुझे नहीं करनी चाहिए थी, कैसे मना करूं मैं अब। और अगले दिन शाम को हम लोग गए, तो मैं अब ढूंढ रहा हूं जगह कि कहां मैं कोई बहाना ऐसा मिले कि मैं मना कर दूं।
0: कोई नर्वसनेस नहीं थी?
1: नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी, मुझे सिर्फ ये था यार मैं क्यों
0: कहां फंस गया,
1: ये बात इतनी लंबी चली जाएगी मुझे नहीं मालूम था। वो बस ऐसी मजाक था कि यार हमें रोल दे दो और बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, बट हुई नहीं, ये मेरे लिए अभी समस्या का कारण हो गई। खैर वो रिहर्सल होने लगी एक दिन दो दिन, और मैं फिर ये सवाल भूल गया पूछना या उनको कहना कि यार मैं नहीं करूंगा। मुझे अचानक एक रस पैदा हो गया और मुझे मजा आने लगा, और फिर 1-1.5 महीने के बाद शो हुआ उसका, और कैसा हुआ होगा, हमने कैसा किया होगा वो तो खैर हम समझ सकते हैं क्योंकि बड़ी पुरानी बात है, बिल्कुल पहला नाटक। लेकिन जब वापस आए तो कॉलेज में मतलब कि अरे विजय यार क्या बात है यार मैंने कहा यार कुछ तो हुआ है तो वहां से वो कब पैदा हो गया, उस रस की वजह से
0: कुछ कुछ होने लगा,
1: कुछ होने मैंने यार नहीं इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है।

0: तो खेलने में मुझे बहुत मजा आता था कि कोई मुझे ना रो, मुझे रात को भी बॉल दिखाई देती थी मतलब सब लोग चले जाते थे, यार अभी कहाँ जा रहे हो यार, खेलते ना। मैं थकता नहीं था, मुझे इतना मजा आता था खेलने में। या फिर मैं अकेला रहता था, अकेला घूमता था। हमको एक छोटी जमीन मिली हुई थी जहाँ पे हम सब्जियां उगाया करते थे, मैंने बहुत सारी सब्जियां, हर तरह की सब्जियां उगाई हैं बचपन में। वहीं पे कुआं था, वहां से पानी निकाल के उसमें देते थे, या वो काम करता था। इतना कहें स्वाद मुझे किसी भी चीज में, मेरे इतिहास में आया नहीं था। और सिर्फ इसी बात ने, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बात मुझे एक दिन बॉम्बे ले आएगी, यहां तक जा सकते हैं इस बात से, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था। और मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं था।
1: तो बॉम्बे हम आएंगे थोड़ी देर के बाद में, लेकिन उसके पहले एक गाने को छेड़ा जाए, आपकी पसंद के गाने को।
0: गाना मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है, आप भी सुना दीजिए अपनी पसंद का।

0: कभी तो हंसाए।
1: विजय भाई और कैसे आना हुआ आपका मुंबई?
2: वो भी बड़ा एक अजीब सा किस्सा है। मैं एनएसटी रिपेट्री में था और किसी बात को लेकर तनातनी हो गई आपस में, हो जाती है। बिना तनातनी के कुछ मजा भी नहीं रह जाता कई बार, ऐसा लगता है। अच्छे पैसे मिलते थे, थिएटर करने को मिल रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, बहुत अच्छा काम मिल रहा था मुझे। रिपेट्री ने बहुत काम दिया मुझे करने के लिए, मैं बड़ा आभारी हूँ उसके लिए, एनएसटी रिपेट्री का। जब वो बात वाक्या हो गया तो वो उसके बाद फिर एक ही चाह रहा था कि आप बम्बई चले आए। तो 98 में मैं बॉम्बे आया। पिछले सितंबर की 13 तारीख को मुझे पूरे 11 साल हो गए। जब नए नए आया तो एकदम समझ में नहीं आया यार यहाँ पे करें क्या मतलब करें क्या, कैसे जाएं और काम मांगे, और जाएं कहाँ, सड़क पे तो कोई घूमता नहीं है। तो पड़े रहे मतलब घर में और सिर्फ यही सवाल कि यार कैसे, मतलब करें कैसे, क्या करें। तो कुछ पुराने दोस्त थे यहाँ पे, उनसे पूछा गया भाई कैसे होता है।

0: कि होता कुछ नहीं, फोटो खिंचाओ, फोटो खिंचा के बांटो। मैंने हाँ ये तो अच्छा तरीका है यार। तो फोटो वोटो खिंचवाई गई, शक्ल आपकी चाहे जैसी भी हो, फोटो चाहिए, फोटो वोटो खिंचवाई। और जो है उसके बाद फोन करके लोगों से एड्रेस मांगे और एड्रेस जाके वहां फोटो वोटो बांट दी गई, हो गया जैसा होना था। मेरी समझ में मैं ऐसा मानता हूं कि किस्मत बड़ी चीज है। कहां पे आपका क्या होगा, आप अपनी तरफ से चीजें करते जरूर हैं क्योंकि वो करनी होती हैं, बट तमाम चीजें मेरे ख्याल में हर चीज किस्मत एक वर्ड है, एक नाम दे दिया, एक ऐसी शक्ति को नाम कह लें, उसके बिना कुछ होता नहीं।
1: डेस्टिनी को आप मानते हैं?
0: बिल्कुल मानता हूं। और टैलेंट एक बड़ी अजीब सी चीज है, एक अजीब सी बहस का मुद्दा भी हो सकता है अगर हम बात करें तो, अगर आप टैलेंट के हिसाब से बात करते हैं। और मैं अपनी ही बात को काटूंगा कि हमको वो बहस नहीं छेड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम बिना अपने जाने पैदा हो जाते हैं तो बिना वो जो टैलेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिना वो हुए भी हम बहुत बड़े कलाकार कहे जा सकते हैं, क्योंकि हम ही तय कर रहे हैं कि आप बड़े हैं आप छोटे हैं, और हम तय कर रहे हैं जो हम ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी किस्मत की बात कह लीजिए कि चीजें बन गई, वरना ऐसा आपने कहा कि जाने माने कलाकार हैं वो सब, यार मुझे नहीं लगता कि वो उस बहस में हमको पढ़ना चाहिए। किस्मत थी मेरी, मुझे काम मिल गया, और किस्मत ही कह लें उसे कि लोगों को वो अच्छा लगता है।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान, और आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई, बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया, एक अलग पहचान भी है आपकी, लोग देखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं आपका काम देख करके, बड़े प्रभावित होते हैं। रेपर्टरी का आपने जिक्र किया, मैं ये बात पीछे छूट गई थी, थोड़ा सा फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं जरा। वहां कैसे, किसने, किसी ने प्रेरित किया आपको, या कहीं से आपको जानकारी मिली?
0: कॉलेज में जब शुरू हो गया सब कुछ, तो उसके बाद हम लोग मंडी हाउस आ गए। मंडी हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्कूल भी है और थिएटर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो साक्षी कला मंच एक अमेच्योर थिएटर ग्रुप वहाँ पे है, और वहाँ पे मैं कॉलेज से, आप वहाँ एक थोड़े से प्रोफेशनल तरह के लोगों के बीच में एंट्री हो गई, तो उनकी बातें समझ में ना आए, कह रहे बात क्या कर रहे हैं यार, पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे हैं वो विदेशी नाम, जो हमारी समझ से और हमारी जानकारी के हिसाब से बड़े दूर के कोई हैं, और इसका ये एक्चुअली आदमी का नाम ले रहे हैं या किसी चीज का नाम ले रहे हैं, उतना तक समझ में नहीं आता था। एक्चुअली जब मैं थिएटर मैंने ज्वाइन किया, तो थिएटर का मुझे आज भी मतलब नहीं मालूम, एक्चुअली पहले भी नहीं मालूम था, मुझे तो बस मजा आता था यार, मैं एक्टिंग कर रहा हूं मुझे मजा आ रहा है, इतना ही मेरे लिए था। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, क्या होता है ये, क्या करना है, और हम कौन है, ऐसा कुछ मेरे ये सब, मुझे इससे कोई लेना देना था नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है बस, बात खत्म हो गई। छोटा छोटा रोल मिलने लगा, फिर एक प्ले हुआ रोमियो एंड जेनेट, एक बाहर का प्ले है, जिसमें मुझे अचानक एक बड़ा रोल मिल गया। अचानक यूं कि पहले कोई और कर रहा था जो बड़ा एक्टर था, पुराना एक्टर था, तो उन्होंने दे दिया, तो मैंने यार चलो, तो हम करने लगे, और वो मेन रोल था मतलब उस नाटक में। बाकी जितने भी लोग थे वो सब सीनियर लोग थे, तो मैं ही एक था जो सबसे छोट भैया इसको कह लें, तो इतने सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिला पहली बार, और प्ले बड़ा बढ़िया हो गया, और मुझसे बड़ा बढ़िया हो गया काम। मतलब ऐसा कहा लोगों ने। जे एन कौशल एक व्यक्ति रहे हैं जिनका, जो रेपर्टरी चीफ हुआ करते थे उन दोनों, बड़े ही प्यारे इंसान, उन्होंने वो प्ले देखा था, दो तीन बार देखा था, और उनको बड़ा पसंद आया, तो मुझे उन बुलाया रेपेट्री में कि सुनो तुम रेपेट्री ज्वाइन करना चाहोगे, 3,000 रुपये मिलेंगे। और तो 3,000 सुन के मैं बाकी सुनना ही बंद कर दिया मेरे कानों ने शटर डाउन कर लिया कि 3,000 के बाद मैं 3,000 के हिसाब लगाने लगे, 6 महीने के लिए बुलाया है तो 6 × 18 = 18,000 में इतना इतना इतना, तो मैं वो आंकड़े में चला गया बाकी वो क्या बोल रहे मुझे कुछ नहीं मालूम फिर ये था कि यार ये क्यों पूछ रहे हो, करोगे क्या हाँ मैं करूंगा। ऐसे वहां मेरी एंट्री हो गई, तो मुझे गेस्ट आर्टिस्ट उन्होंने ले लिया। उसके बाद उन्होंने ही मुझसे कहा कि आप परमानेंट होने के लिए यहां पे अप्लाई करें, क्योंकि मेरे लिए तो उतना काफी हो गया था कि 6 महीने उन्होंने मुझे रख लिया, बड़ी मेहरबानी, 18,000 रुपये मिल गए, बस 1-1.5 साल लाइफ का और कट जाएगा, बाकी अपना घूमते रहेंगे। क्योंकि मैंने कभी माना ही नहीं अपने आप को कि मैं, जो टैलेंट की आप अभी जिक्र कर रहे थे, कि वो मुझे समझ में कभी आया नहीं क्या अच्छा हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया है, मुझे पता नहीं, अगर इसी को कहते होंगे टैलेंट तो ठीक है। तो कौशल साहब ने, आखिरी समय था, आखिरी दिन था कि आप भर दें, मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे बुला लिया।

0: लिया इंटरव्यू के लिए, मुझे कुछ आता नहीं था, जो थिएटर मैंने पढ़ा नहीं था, क्या क्या इतिहास में किसने किया मुझे कुछ नहीं मालूम था, जो आज भी नहीं मालूम है, और जो मुझे समझ में आता था वैसा मैंने एक इंटरव्यू दे दिया और मुझे सेलेक्ट कर लिया उन लोगों ने यार पता नहीं कैसे। तो पहले वो लोग एक साल के लिए रहते हैं, एक साल के बाद दो साल का रिन्यूअल होता है, फिर दो साल के बाद तीन साल का, तो मैक्सिमम आप छह साल तक रह सकते हैं वहां पर। तो एक साल के लिए जैसे उन्होंने लिया तो मैंने फट से फिर तनख्वाह हो गई 4,000, तो 1248 मैंने 48,000 का हिसाब लगा लिया। मैं यार आगे रखे नहीं रखे निकाल देंगे, और ऐसा हुआ नहीं। फिर दो साल के लिए मिल गया और फिर मुझे कुछ कुछ छोटा छोटा काम उन्होंने दिया जो इत्तेफाक से वापस ठीक हो गया। फिर उन्होंने बड़े रोल देना मुझे शुरू किया और उसके बाद एक समय ऐसा था कि काफी इंपॉर्टेंट काम रिपेटरी ने मुझे दिया और इत्तेफाक से वो सभी अच्छा हो गया और लोग पसंद करने लगे।
1: किन किन कलाकारों के साथ में, निर्देशकों के साथ में, खासतौर से थिएटर की जो पर्सनालिटी की हम बात करें, आपको काम करने का मौका मिला?
0: एम के रैना साहब, रंजीत कपूर साहब, डी आर अंकुर साहब, बजाज साहब, बी एम शाह, मोहन उप्रीति साहब, बापी बोस, कई सारे नाम हैं जिनका सानिध्य मिल पाया मुझे। काबिलियत थी नहीं, लेकिन होता है कई बार चलता है कि आप नहीं हैं काबिल, लेकिन होता ना कि गेहूं में घुन भी पिस जाता है और टेस्ट गेहूं का ही आता है। तो
1: विजय भाई, अभी मौका है एक और गाना अपने सुनने वालों के लिए पेश करने का, आपकी तरफ से आपकी पसंद का गाना, वो सुनवाएंगे और उसके बाद में फिर किस्सों पे फिर चलेंगे।
0: अभी किशोर साहब का गाना है शराबी फिल्म का, हालांकि फिल्म बहुत ज्यादा पुरानी है, बट बहुत अच्छा गाना है वो।

0: किशोरदा भी कुछ ऐसी ही जिंदगी में मलंग जैसे, उनका भी बड़ा स्वभाव वैसे ही रहा। उन्होंने खास उससे सिंगिंग के करियर को तो बहुत बाद में सीरियसली लिया, शुरू में थे वो एक्टिंग पे ही जोर देते थे। उनकी फिल्में आपने देखी?
1: मैंने एक्चुअली फिल्में बहुत कम देखी हैं, मतलब ओवरऑल एक आध दो, जैसे जिसमें एक गाना है एक लड़की भीगी भागी सी
0: चलती का नाम,
1: हाँ वो फिल्म देखी है मैंने, लेकिन वो सब बचपन की बात है। बचपन में मैं काफी फिल्में देखा करता था, जब टीवी किसी किसी घर में पाया जाता था तो आप लटक के खिड़कियों से लटक के बड़ा मजा आता था। रात रात तक घर से बाहर रहने की परमिशन है भाई, 10-11 बजे रामलीला खत्म होगी, थोड़ा जो आवारगी थी उसको थोड़ा और वक्त मिलेगा, तो उस वजह से ज्यादा वो समय बड़ा अच्छा लगता था जो अब चल रहा है दिवाली के आसपास का समय।
0: विजय भाई आपने कहा, हालांकि बहुत ही हल्के ढंग से आपने उसको मजाक में कह दिया, लेकिन मुझे लगा कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई गंभीर बात भी है। पैसे की आपने कहा कि बात जब से पहली बार बताया कि 3,000 रुपये महीने के मिलेंगे, मैंने हिसाब लगाया फिर पता चला कि 4,000। मतलब कैसी थी जिंदगी, हालात कैसे थे?
1: जब थिएटर कर रहा था मैं तब वाकई हालात बड़े गड़बड़ थे, क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, इवनिंग कॉलेज में पढ़ता था, मैं दिन में एक नौकरी किया करता था अकाउंट्स की पार्ट टाइम।
0: ये जरूरत थी एक?
1: हाँ जरूरत थी, क्योंकि मैं एक मतलब बहुत पैसे वाले परिवार से बिलोंग करता नहीं, पिताजी सरकारी नौकर थे और एक मॉडेस्ट सी तनख्वाह की, जिसमें एक 2-3 बच्चों का परिवार सिर्फ पल सकता है और एक्टिविटीज नहीं हो सकते हैं। ख्वाहिश नहीं थी मेरी कभी भी कि ऐसा ऐसा हो, पैसों से पूरे हों ऐसे सपने मैंने कभी देखे नहीं।
0: अभी भी?
1: अब भी वैसा ही है ऑलमोस्ट, हालांकि कुछ जरूरतें जो होती हैं बेसिक वो सारी हैं आसपास, ये कर दूंगा मैं जो पैसे के बल पे जो चीजें होती वो ख्याल नहीं आते हैं कि यार इतना मिल गया काफी है, तो कई बार देने में बड़ा मजा आता है मुझे, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। अब थोड़ा एक्स्ट्रा जब आता है तो मुझे लगता है यार ये अगर यहां चला जाए तो ज्यादा मजा आएगा।
0: विजय भाई वापस मुंबई हम लौटते हैं,
1: कुछ कुछ काम मुझे मिला, कैरियर में मोड़ आया कहें कि ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई वो मॉनसून वेडिंग पिक्चर का बहुत बड़ा हाथ है, और वो फिल्म नसीर साहब मुझे कहा था कि आप मीरा जी से जाके मिल लें, और नसीर साहब से हमारी मुलाकात रेपिट्री के दौरान हुई, एक प्ले वो देखने आए थे अग्नि और बरखा, एक प्ले था जो प्रसन्ना जी ने डायरेक्ट किया था
0: जी,
1: वो उनको बड़ा पसंद आया और वो हमसे मिले भी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि नसीर साहब मतलब आपका इंतजार कर रहे हैं मिलने।

0: वो हमारी पहली मुलाकात वहां पे हुई और वहीं से पता नहीं क्यों हमको लगा कि यार हम इस व्यक्ति को जानते हैं। दूरी नहीं थी कोई, मुझे लगा कि मैं इस व्यक्ति के पास बैठा रहा हूं जो मैंने शेयर की पिछले समय में एक फिल्म में। दोबारा हमको मौका मिला काम करने का बारह आना, तो मैंने नसीर साहब को बताया। मॉनसून वेडिंग और बारह आने के बीच में ऑलमोस्ट आठ नौ साल का अंतर है। इस दौरान हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, न फोन पे न मुलाकात हुई। और मैंने ये बात शेयर की उनसे कि सर आठ साल हो गए लेकिन मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं
1: आपसे दूर हूं,
0: आपसे मिला नहीं। और उन्होंने कहा एकदम जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं भी कह सकता हूं। तो मीरा जी को उन्होंने कहा था कि हालांकि कास्टिंग वो कर चुकी थी पहले उस रोल में किसी को, जो बात उन्होंने मुझे बताई कि भाई मैं कास्ट ऑलरेडी कर चुकी हूं और बट वहां से मुझे जवाब आना है, लेकिन आप जब आए तो ऑडिशन दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है।
1: कहां दिया था आपने? बॉम्बे में।
0: बॉम्बे में।
1: मुझे बड़ी इसकी इच्छा है जानने की कि वो कैसी रही वो मुलाकात, उन्होंने बुलाया आपसे फिर वो।
0: मैं गुवाहाटी में था उस समय जब मुझे फोन आया था। मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी, उसके लिए मैं वहां पे था। और जब मैं लौट के आया तो मुझे जिस पर्टिकुलर डेट में आना था मैं उस समय नहीं आ पाया। तो नेक्स्ट डे मैं आया तो मैंने उस दिन फोन किया कि मैं अभी यहां हूं और ऐसे ऐसे हो गया है तो मैं तो आ नहीं पाऊंगा आज, मैं तो कल है मुझे आना है। कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, शाम का टाइम था तो वो ऑलमोस्ट सबसे मिल चुकी थी या मैं ही आखिरी था जिससे मिलना था। और होटल में मुलाकात होनी थी तो मैं नीचे बैठा रहा काफी देर तक कि मैं कैसे पूछूं, मतलब किससे यार कि क्या। तो मैंने कहा मीरा नायर जी ओ आया तो ऐसे उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा शायद इनको पता हो गया मैं आने वाला हूं, तो मैं बैठ गया कि भाई यही बुलाएंगे अब मिलने के लिए। बुलाया नहीं किसी ने, तो काफी समय बीत गया, मतलब आधा पौना घंटा। मैंने यार इतना तो देर नहीं लगना चाहिए। तो मीरा जी ने ही नीचे फोन किया कि कोई आया है क्या। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने फिर मुझे भेजा। तो मुझे कहा यार तुम इतना वेट करवा दिया तुमने, मैं मतलब वेट कर रही हूँ 45 मिनट हो गए कि नहीं नहीं। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मुझे लगा कि बुलाया जाएगा समथिंग क्या। एनीवे तो थक गई थी काफी, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं था, ऐसा ऐसा किस्सा हो गया कि ओह सॉरी, चाय पियेंगे। मैंने हाँ बिल्कुल। हम करीबन एक डेढ़ घंटे रहे साथ में। उस दौरान मतलब कैमरे में इंटरव्यू भी ले लिया उन्होंने, मतलब जो इंटरव्यू कर रहा हूँ मतलब ऑडिशन। और
1: आपसे कौन सा वही जो जिस करेक्टर को आपने
0: हाँ, हाँ, उसी के उनके पास थी और मैंने कर दिया। बैठे रहे, बात बात होती रही, तो एक डेढ़ घंटा उनके साथ रहना हुआ।
1: कुछ ब्रीफ किया था उन्होंने कि इस तरह का करेक्टर है और ये
0: हाँ ये सब बताया, तो मैंने कर दिया जैसा जितना मैं समझ पाता हूँ जैसा हुआ। और ये सारी बातें भी बताई कि भाई ऐसा ऐसा है, हो चुकी है, एक आदमी से बात चल रही है और ऑलमोस्ट फाइनल है, तो लेकिन ठीक है। जब मैं कमरे से निकला बाहर तो पता नहीं क्यों मुझे लगा यार ये रोल तो मैं मेरे अलावा बड़ा कठिन है किसी और के लिए। ऐसे ही होता है ना, आप मन में कई चीजें उठती हैं, कई बार आपको मन में उठता है मैं उड़ जाऊं, कई बार आप प्लेन में सफर कर रहे हो तो मुझे कई बार लगता है यार मैं प्लेन के ऊपर लेट जाऊं। तो वैसे ही एक ये ख्याल था कि यार ये तो मुश्किल है यार मेरे अलावा। खैर मैं आ गया।
1: कभी कभी ये भी होता है ना कि कई कोई ऐसा लगता है कि कोई सवाल हमें उसका हल मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि शायद वो कैरेक्टर आपके अंदर पढ़ते ही समा गया।
0: हाँ, जिसको हम इंस्टिंक्ट जो एक वर्ड ईजाद किया है मेरे ख्याल से वो वही है कि तमाम चीजें आपके कंट्रोल में होती नहीं, हमको लगता रहता है ऐसा कि कंट्रोल में है, वहीं से वो आपके भीतर टपकती हैं चीजें और वो एक ख्याल पैदा करती हैं, वो पकड़ना कई बार बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना यार आपने मेरे बारे में सोचा उस समय, टेलीपैथी इसको बोलते हैं। तो खैर वो समय चला गया, जितना समय उन्होंने दिया यार उन्होंने मुझसे समय मांगा है 7 दिन का, उसके बाद वो बताएंगे मुझे, अगर वो नहीं होते हैं तो हम बात करेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद वो समय पीरियड चला गया, मैं भूल भी गया बात। उसके बाद एक दोस्त था मेरा उस पिक्चर में, जो मेरे साथ तीन लोग जो काम करते हैं उनमें से एक, वो आया रिहर्सल के लिए बंबई, तो मेरे घर पे ठहरा। उसने कहा यार ऐसे मीरा जी की फिल्म कर रहा हूं। मैंने अरे वाली फिल्म? हाँ। तो मैंने वो रोल कौन कर रहा है? कि वो परेश रावल साहब कर रहे हैं। मैंने अरे यार तो कमाल हो जाएगा यार, बड़ा मजा आ जाएगा वो तो। मैं ये सोच रहा हूं, रिहर्सल हो गई, वो लोग वापस चले गए। मुझे एक फोन आता है कुछ समय के बाद, मतलब कुछ दिनों के बाद मोबाइल पे, और नंबर पहले कोड 011। मैंने यार ये तो दिल्ली का फोन है और ये मीरा जी का फोन है, लैंडलाइन से नंबर है। जबकि मैं फोन उठाता हूँ और एक लड़की कहती है कि मीरा जी आपसे बात करना चाहते हैं। और मीरा जी फोन पे आते हैं और कहते हैं विजय हाय कैसे हो ये सब और करके कि मैं चाहती हूँ कि आप वो रोल करें। मैंने नहीं मैडम, परेश जी बहुत अच्छी कास्टिंग है।
1: क्योंकि उन्होंने तो बताया नहीं था आपको
0: कि नहीं नहीं नहीं दैट आई नो बट या मैं चाहती हूँ आप करें। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। रोल हो गया, हम दिल्ली चले गए।
1: शूटिंग कहाँ हुई इसकी?
0: दिल्ली में। और
1: उसी में आपने पहली बार कैमरा फिल्म कैमरा फेस किया?
0: नहीं,

0: उससे पहले मैं फिल्म कर चुका था, उससे पहले मैं जंगल फिल्म कर चुका था, अक्स भी कर चुका था, भोपाल एक्सप्रेस मेरी पहली फिल्म थी,
1: भोपाल एक्सप्रेस
0: ये मेरी चौथी फिल्म थी। फिर शूटिंग शुरू हो गई और कब शूटिंग खत्म हो गई कब क्या हो गया पता ही नहीं चला।
1: लेकिन वो रोल आपका बड़ा चर्चित हो गया दुबे जी वाला।
0: हाँ वो अच्छी बन पड़ी और फिल्म जब अच्छी बन जाती है तो उसमें छोटी छोटी चीजें भी काउंट हो जाती हैं
1: जी।
0: और वाकई बड़ी खूबसूरत फिल्म, मेरे ख्याल में इंडियन सिनेमा को वेस्ट में जो पहचान बननी शुरू हुई है जो अब दिख रही है आपको
1: जी,
0: उसमें दो फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है, मॉनसून वेडिंग और बैंडिट लाइक बेकम, ये ऑलमोस्ट एक साथ की फिल्म है कि वेस्ट में इंडियन सिनेमा को एक जगह दी गई, एक प्लेटफॉर्म दिया गया। उसमें काफी घुमा हूं जो फेस्टिवल सर्किट होता है उसमें, मेरी जैसे मॉनसून वेडिंग, रघु रोमियो मेरी एक फिल्म है जो फेस्टिवल्स में काफी गई, हरिओम एक फिल्म है जो भाग्य या कह लें दुर्भाग्य कह लें वो रिलीज नहीं हुई है, एक बहुत अच्छी फिल्म भरत बाला ने बनाई थी वो काफी रही है फेस्टिवल्स में,
1: उसमें आप ऑटो वाले बनते हैं।
0: हाँ तो मैंने वो सब देखा है, तो अभी वो एक स्पेस जो मिला है इंडियन सिनेमा को उसमें इन दो फिल्मों का बहुत हाथ है। मैं बड़ा आभारी हूँ मीरा जी का और नसीर साहब का कि मुझे ऐसा मौका दिया उन लोगों ने, गुजारा हो रहा है।
1: लेकिन हमारा गुजारा नहीं होगा अगर हम संगीत नहीं सुनवाएंगे। तो गाना सुनाना बड़ा जरूरी है। आपकी पसंद का गाना है?
0: गुलजार साहब मुझे बहुत पसंद है, गुलजार साहब ने कमाल लिखा है, मतलब उनके लिए मैं अगर तारीफ करूं मेरे जैसा व्यक्ति तो वो बड़ी अजीब सी बात होगी।
1: गुलजार साहब की एक फिल्म है खामोशी, बहुत पहले आई थी, उसमें हेमंत कुमार साहब ने संगीत दिया है, लता जी ने उसमें एक बढ़िया गाना गाया, हमने देखी है उन आंखों की महक
0: क्या बात
1: कही हो बजाय।

0: मॉनसून वेडिंग के बाद क्या चेंज आया, उससे क्या फर्क पड़ा?
1: फर्क अभिनेता के तौर पर, चूंकि फिल्म चल पड़ी, लोग जाने लगे, थोड़ा काम देने लगे, और एक मेरे ख्याल से जिस फील्ड में आप हैं वहाँ ये आपके लिए काफी अहम होता है कि आपको काम मिले, तभी आप चीजें आगे कर पाएंगे। और चूंकि आपकी रोजी रोटी भी यही है, आप का प्रोफेशन भी यही है, तो वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जीने के लिए भी। उस पिक्चर ने बड़ा, मतलब वो सिनेरियो थोड़ा सा बदला, थोड़ा काम मुझे मिलने लगा और मैं थोड़ा ज्यादा काम करने लगा।
0: लेकिन जो आपने अरसा बताया, उस अरसे में आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन ये सारी जितनी फिल्में मैं देख रहा हूं, इनमें जितने भी नाम मैं देख रहा हूं, उनके टाइटल जो है पर्सनल, बड़ा ऑफ बीट सी हैं सब।
1: हाँ, कमर्शियल जो फिल्में आती हैं वो फिल्में कम हैं, उनकी तादाद कम है। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है जब कुछ ऐसा करने के लिए मिलता है जहां पे मैं कुछ कह सकूं।
0: ये तो आप मानिएगा कि ये सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सारी के सारे धारा से हट करके बनी फिल्में हैं, और जाहिर है कि इसमें बहुत सारी फिल्में, बहुत अच्छी फिल्में हैं, क्योंकि सिनेमा में इस बीच हम देखते हैं एक बहुत बदलाव सा आया है। मुख्य धारा का सिनेमा तो है, उस मुख्य धारा की सिनेमा में भी रहते हुए लोगों ने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया है, और अब नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, कहानी को नए आयाम दे रहे हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे आए हैं, कहानी कहने की कला जो है खासतौर से सिनेमा की, वो बदल रही है। पहले जैसे एक कन्वेंशनल तरीका था, कुछ चीजें तय थी कि ये रहेगा, ये सारी चीजें फिक्स थी, अब नई तरह की कहानियां जो है उनको भी कहने का खतरा मोल ले रहे हैं लोग, बेशक कि भाई फिल्में चले ना चले, लेकिन अच्छा सिनेमा इस बहाने कम से कम आते रहा हमारे सामने। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं?
1: अभी एक फिल्म है जो ईस्ट इज ईस्ट, एक फिल्म आई थी
0: जी जी
1: उसकी,
0: जी
1: उसका सीक्वल बन रहा है वेस्ट इज वेस्ट, जो अगले महीने मैं उसके लिए जा रहा हूँ। इंग्लिश फिल्म है, चंडीगढ़।
0: अच्छा, इसको कौन निर्देशित कर रहा है?
1: एंडी डायरेक्टर का नाम है, चूंकि फिल्म जिन्होंने पहले प्रोड्यूस की थी वही प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को दोबारा। फैमिली ड्रामा है, रिलेशनशिप की कहानी है, तो एक बार दोबारा मौका मिलेगा बाहर के लोगों के काम करने के तरीके के साथ, दोबारा काम करने का मौका, मजा आएगा।
0: क्या फर्क कुछ महसूस किया है? इतनी सारी फिल्में की हैं और बाहर के लोगों के साथ में भी काम किया है।
1: फर्क तो है, फर्क ये है काम करने का तरीका अलग है, उनकी जो स्क्रिप्ट पे जो वो लोग काम करते हैं उस पर काफी समय वो लोग लगाते हैं, तमाम चीजें, वो ऐसा तो नहीं कह सकते कि 100% आप पहले से तय कर लेते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है, बट 90% चीजें तय होती हैं, स्क्रिप्ट तैयार होती है उनकी, उस पर काफी काम वो लोग कर चुके होते हैं, बट कुछ चीजें इंप्रोवाइज हो जाती हैं सेट पे, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। हमारे यहाँ उस तरह के सिनेमा की संख्या अब होने लगी है, अब बढ़ने लगा है वैसा, कि अब स्क्रिप्ट पे काम करने लगे हैं लोग, वरना सेट पे ही लिखा जाता है सब कुछ। कई बार एक आइडिया होता है किसी दिमाग में, जो कि कमर्शियल सिनेमा की जो बात करें वहां पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहानी से, कि आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं, तो 50 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि कहानी इंपॉर्टेंट। पब्लिक जिन लोगों को देखने जाती है वो लोग बड़े इंपॉर्टेंट है ना कि कहानी इंपॉर्टेंट है। कपड़े वो क्या पहनेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि वो कपड़े क्या कहते हैं या क्यों पहने गए हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उस सिनेमा से क्या कहना चाहते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो एक इट्स अ बिजनेस, व्यवसाय है, और वहां कि कैसे बेचना है, बेचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब बदल रहा है।
0: विजय भाई, आपके लिए भी तो ये एक रोजी रोटी का जरिया है, लेकिन थिएटर भी आपको संयोग से मिला, सिनेमा में भी काम संयोग से ही आया।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इस सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सिनेमा आपके लिए क्या है, कितनी गंभीरता से आप उसे लेते?
1: मैं ऐसा मानता हूं कि बड़ा स्ट्रांग मीडियम है, असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है ये बड़ा मुश्किल है इसके बारे में बता पाना। कुछ मुद्दों को लेकर इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये नहीं दिखा सकते, ये नहीं दिखा सकते, बट वो बेचा जा सकता है। उसको बेचना ही क्यों बंद नहीं किया है, उसको बनाना ही बंद क्यों नहीं किया जाता है? अगर आप इतनी सीरियसली लेते हैं इस बात को, समाज के लिए आप एक एक विचार हैं, आप एक सोच, आप हैं जो सोचते हैं समाज के लिए, तो ये क्यों नहीं सोचते हैं आप? वो क्या चीज है जो रोकती है आप?
0: आपने असर की बात की, अगर असर नहीं होता तो लोग, सिनेमा हमारे यहां तो बहुत बड़ा आकर्षण है आज भी।
1: हाँ,
0: शायद वो आकर्षण ही उसे सिनेमा हॉल तक खींच करके लाता है। सिनेमा का जादू, उसका तिलस्म तो मैं समझता हूं कि लगातार बढ़ता चला गया है, टिकटें महंगी हुई बावजूद इसके लोग
1: नहीं, लोगों ने जैसे कहा ना कि जैसा मैं कह रहा था कि

0: जो बुरी चीजें हैं वो सिनेमा ने सिखाई हैं समाज को, ऐसा मानते हैं लोग, बड़ा फिल्में उठाए हैं, बुराई को कभी जीतते हुए दिखाया नहीं, अंत में सच की ही जीत होती है, हर सारे मुद्दे उठाए, वो चाहे राजनीति का हो, चाहे वो भूख का हो, प्यास का हो, रिलेशंस का हो, वहां से तो सोसाइटी ने कुछ नहीं सीखा।
1: विजय भाई, कुछ और आने वाले प्रोजेक्ट्स के नाम जानना चाहेंगे?
0: एक फिल्म है डोंट वरी जस्ट बी हैप्पी, जो बन रही है, अभी आएगी, रिलीज होगी। एक है फिल्म अता पता लाप, इसकी शूटिंग चल रही है, बेस्ट इज बेस्ट, जो शूटिंग करूंगा मैं। और रिलीज होने वाली दो तीन फिल्में हैं, द फ्लैग एक फिल्म है जो अगले साल जनवरी में रिलीज होगी, बड़ी प्यारी सी कहानी है, प्री इंडिपेंडेंट की कहानी है। फितरत चूंकि मलंग है मेरी, इसलिए मैं भूल जाता हूँ करने के बाद चीजें, बहुत ज्यादा मैं याद रखता नहीं हूँ, और उनको चूंकि बहुत बोझा हो जाता है यार।
1: शुभकामना देते हैं कि लोग हमेशा याद रखें, और आपका तो नाम ही ऐसा है, मैं तो यही कहूंगा कि विजय भाई आपको जीवन में हर समय विजय मिले और पर्दे पर राज करें। आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत
1: शुक्रिया।
2: आज के मेहमान कार्यक्रम के अंतर्गत ये थी फिल्म अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत। इस कार्यक्रम में सहयोग PKA नायर ने दिया, संयोजन शकुंतला पंडित ने किया, कार्यक्रम के लिए विशेष सहयोग विजय दीपक छिब्बर ने दिया, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है, नमस्कार।
3: आज के

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: प्रस्तुति कार्यक्रम रंग तरंग
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की गाई इस भक्ति गीत के साथ।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना, और आइए अब सुनते हैं बेगम अख्तर का गाया मिर्जा गालिब का ये कलाम।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं मिर्जा गालिब का ये कलाम।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम में अब सुनिए आयुष्मान खुराना की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। इसे लिखा है रोचक कोहली ने।

ये स्वर था आयुष्मान खुराना का और आइए अब सुनते हैं तनिष्क बागची का लिखा और संगीतबद्ध किया हुआ ये गैर फिल्मी गीत, आवाजें गुरु रंधावा और निकिता गांधी की।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अरमान मलिक की आवाज में कुणाल वर्मा का ये गीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। यह आवाज है असलम सावरी की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंध गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर मिस्ताल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित। पेरिस, फ्रांस से महेश सोपड़े।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबाझारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय

0: भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस सभा में, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है दोस्तों। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं मशहूर यानी जाने माने संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम
1: that we have to deal with the root cause of the problem.
2: Yes.
1: I think terrorist attack on CRPF convoy on 14th February
2: 2019
1: near Pulwama.
2: Correct.
1: That was also, I think, something which further steeled Prime Minister Modi's resolve.
2: Correct.
1: To, you know, address the problem root stock and...
2: Once and for all, yeah. One of the most successful... aspects of internal security has been the demolition of the left-wing extremism. I want to straight away jump to that because that again is not spoken about in very much detail.

0: कीमती है उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

अवधि लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोकरंग में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है और आपके लिए लाए हैं कार्यक्रम के आरंभ में अभिनंदन शुक्ला और साथियों के स्वर में ये किसानी।

0: श्रोताओं, अपने इस कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
1: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
3: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ है धरती की जान, वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें, पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के

0: प्रदूषण से मुक्त रखे ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आपकी बात कार्यक्रम में,
3: अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें भेज सकते हैं।
0: और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से।
3: व्हाट्सएप मैसेज में सबसे पहले कैपिटल लेटर में AKB टाइप करें।
4: इसके बाद अपना नाम और पता लिखते हुए
3: कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रिया लिखकर
4: 830-321-9911 पर भेज दें।
5: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है लोक रंग। और अब आपके लिए लाए हैं शशिकांत मिश्रा और साथियों के स्वर में ये चैती।

0: अंजू मिश्रा और सखियों के गाय से सोहर के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: एक सौ एक दशमलव नौ मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: स्वागत है सभी सुनने वालों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में, और हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो साथी तबस्सुम जहां आपके इस कार्यक्रम को लेकर। साथियों, इस कार्यक्रम में आप शामिल होते हैं अपने सुविचार, अपनी पसंद की हुई शायरी के साथ, अपने पसंद किए हुए गीतों के साथ। तो हमें आज भी हर दिन की तरह बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं आपके, तो शामिल करते हैं आप सभी के कमेंट्स को। हमारे आज के पहले श्रोता हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से हैं हमारे साथी श्रोता अरुण कुमार मालवीय, बेरडी मध्य प्रदेश से हैं हुकुम करमरकर। अगले श्रोता हैं शेरवानी स्कूल गंज ढुंडवारा से आफताब अंसारी, आपके विचार हैं कि पेड़ लगाइए जीवन बचाइए। भागलपुर बिहार से हमारे श्रोता हैं विनोद कुमार यादव, जवाहर नगर दुर्ग से हैं आरसी कांबड़े, चंडीगढ़ से शामिल हो रहे हैं श्रोता सतीश आनेजा, गुलबालो तहसील आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से हैं विक्रम मालवीय, सहारनपुर से हमारे श्रोता हैं राधा नामदेव, रघुवीर नगर से शामिल हो रहे हैं दिलावर खां, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से हैं श्रोता

मोहम्मद यासीन अनजान अनारकली बाजार जगराव पंजाब से हैं सुनील पाठक। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से हैं निसार सलमानी। सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से हैं गजानन येले। जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी। बाजार रोड मुंगेसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी। हयात कॉलोनी अरिया बिहार से हैं फैसल इमाम। संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव। और कस्बा बराडा जिला अंबाला हरियाणा से हैं रवि कुमार राहुल। आप सबके लिए कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म त्रिशूल से है। इस गीत को अपनी सुमधुर आवाज दी है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यसुदास ने। गीत को लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत है खयाम का। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म त्रिशूल से।

0: आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। और श्रोताओं अब शामिल करते हैं अपने और श्रोताओं को। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हैं उमा सिंह, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा, बागपत से हैं संजय ढिंगिया, हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं रजाक मोहम्मद, राजधानी रायपुर से हैं नीलू मेघ, भेरूलाल वाकत्रिया धाकड़ हैं उन्हेल जिला उज्जैन से, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से हैं मोहम्मद इसहाक, लाहौरडा जिला बागपत से हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं विनोद वंडलकर, नागपुर महाराष्ट्र से हैं कमल शाहड़े, कंवर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हैं प्रवीण शिमाली, पन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, बोटसरा नैला छत्तीसगढ़ से हैं प्रमोद कुमार साहू, धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से हैं श्री कृष्ण बाठे, जमानिया जिला गाजीपुर से हैं सुरेश जायसवाल, रावर करनाल से हैं विनोद लखनपाल, रावर करनाल से हैं ज्ञान भूषण शर्मा, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से हैं दातार सिंह शेखावत। आप सबके लिए हम लाए हैं कार्यक्रम में अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में फिल्म डॉन से। गीत है अनजान का और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। तो आइए सुनते हैं ये गीत।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा, अरे

0: श्रोता अपने इस कार्यक्रम में हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
4: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
3: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकती है अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकती है फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
4: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
5: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
6: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।

एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके ही कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में। और शामिल होने वाले हमारे अगले श्रोता हैं पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, गांव बांडीवाला फाजिलका से श्रोता हैं ओम बगड़िया, कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, मेरठ से हैं दिग्दर्शन, गाड़ी खाना चाईबासा झारखंड से हैं जीवन विश्वकर्मा, आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से हैं सैयद यूनुस, बांदा यूपी से हैं फहीम मंसूरी, पद्मा टॉकेज नेपानगर से हैं सुदर्शन शाह, हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं मास्टर खिल्लू परवेज। आप लिखते हैं सेफ वाटर सेफ लाइफ, बिल्कुल पानी बचाइए, पानी की सुरक्षा करिए, हम सब सुरक्षित रहेंगे। और अगले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबिये, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन, पंचकुला चंडीगढ़ से हैं तुलसीदास चोग।

स्कीन। गंज टुंडवारा से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी। चनौरा जिला फिरोजाबाद से हैं बनवारी लाल कुशवाहा। जिला पटियाला पंजाब से हैं सोमदत्त नाभा। चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश गौतम। कस्बा उगहती बदायूं से हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसामा जिला बदायूं से हैं सोमेंद्र यादव। गंज डुंडवारा से हैं शमशुल कमर राही। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से हैं पुखराज बटगुजर। आप सबके लिए कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म सौदागर से। आवाज है कविता कृष्णमूर्ति मनहर और साथियों की। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म सौदागर से।

आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुमने कहा, और अब शामिल करते हैं अपने और श्रोताओं को। शामिल होने वाले हमारे अगले श्रोता हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं चंद्रकांत साहू, बाबा कुटीर रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान, अक्षय कॉलोनी गोंदूर रोड धुलिया महाराष्ट्र से हैं मनोहर मगर, रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, ग्राम लसुडिया पाता तहसील नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं गोविंद वैष्णव दिव्या, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, सादुल शहर राजस्थान से हैं रामकुमार रेवाड़, ग्राम बिडोरा तहसील सेबड़ा जिला दतिया से हैं लोकेंद्र गुर्जर, आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से हैं कुंवर कृपाल सिंह, भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश शर्मा, गुजरात गांधीग्राम से हमारे श्रोता शामिल हो रहे हैं प्रवीण सोनी, रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा। अगले श्रोता हैं लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी। आप लिखते हैं, अगर हम अपने परिवार का सही से परवरिश करें, हर सदस्य का सम्मान करें, माता पिता को खुश रखें, स्वयं भी खुश रहें, हर किसी की जरूरत को पूरा करें जितना हो सके, तो इससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं हो सकता। सारे तीर्थ घर में ही हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है, और हमें सेवा भाव रखना चाहिए अपनों के लिए भी और औरों के लिए भी। अगले श्रोता हैं हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र भगत, पहाड़गंज मुल्तानी ठाणा से हैं अनिल मोहन, मुरादाबाद से हैं अजीत कसाना। आप सबके लिए कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के स्वर में फिल्म फर्ज से। गीत है आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म फर्ज से।

0: श्रोताओं, आपके इस कार्यक्रम में अभी पूरे आधे घंटे का सफर बाकी है, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद।
1: किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।
2: मुझे 9 लाख मांगा दे रे ओ सैया दीवाने।
3: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
2: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
3: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
4: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
4: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
6: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
7: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
6: दिन में 3 से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके ही कार्यक्रम में, जिसका नाम है कुछ तुमने कहा।

और अब शामिल करते हैं अपने और श्रोताओं को। हमारे अगले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भिलाई से प्रताप पांडे। आप लिखते हैं, पानी की बूंद धरती को करती है शांत, वैसे ही गाने की धुन मन को शांत करती है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने लिखी है। और अगले श्रोता हैं कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से राहुल भाभिस्टे। हमारे अगले श्रोता हैं कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल। आपके विचार कुछ इस तरह से हैं कि पहली बारिश की बूंदें केवल धरती को ही नहीं, मन को भी ताजगी और नई उम्मीदों से भर देती है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है और वाकई उम्मीदें और हसरतें तो जागती हैं। और आप सब याद कर रहे हैं बारिश को और हम भी याद कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी लगती है। तो देखते हैं अगले श्रोता कौन है। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से है चंदूलाल सिंगरौल। गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से है लक्ष्मण राव लोखंडे। अडार नाथगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं माखन वर्मा। वाराणसी से हैं आजन कुमार सिंह। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से हैं विजय महोबिया। खोखरा वाली से हैं विनोद बारासा। जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं अशोक सिंह। बीड शहर महाराष्ट्र से हैं नंदकिशोर घटे। बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकरण वर्मा। टोरोवाल नवाशहर पंजाब से हैं गगनदीप थांदी। लगान पंडिया छत्तीसगढ़ से हैं राघव बघेल। किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहन दास। पुरानी भिलाई तीन चरौदा छत्तीसगढ़ से हैं डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी। उदयपुर राजस्थान से हैं बाबू भाई। और अगले श्रोता हैं ग्राम देगांव तहसील पूर्णा महाराष्ट्र से सदाशिव धोरात। आप सबके लिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मोहरा से। इस गीत में आवाज है अलका याग्निक और उदित नारायण की। गीत है आनंद बख्शी का और संगीत वीजू शाह का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फेसबुक पर आधारित हमारा कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। और श्रोताओं, हमें रहता है आपके सुविचारों का भी इंतजार, तो अपने सुविचारों से भी हमें जरूर अवगत कराएं। और आप इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं अपनी पसंद की हुई शायरी और या कोई भी ऐसी बात जो आपको पसंद आती है, वो आप लिखकर भेज सकते हैं और हम शामिल करते हैं हर रोज आपके इस कार्यक्रम में। तो अब और श्रोताओं को भी शामिल कर लिया जाए। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से हमारे श्रोता हैं सुभाष गोदारा। गनगोला दातागंज से हैं इसरत खां। कलानौर से हैं नरेंद्र शर्मा। झज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया। और अगले श्रोता हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरा मणि वर्मा। सेक्टर 67 मोहाली।

और श्रोताओं को भी शामिल कर लिया जाए। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से हमारे श्रोता हैं सुभाष गोदारा, गनगोला दातागंज से हैं इसरत खां, कलानौर से हैं नरेंद्र शर्मा, झज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया। और अगले श्रोता हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरा मणि वर्मा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, आसाम से हमारे श्रोता हैं हितेंद्र दास, छुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से हैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर, छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश साबले पाटिल, आप सबके लिए लाए हैं कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म हिना से, आवाज है लता मंगेशकर सुरेश वाडकर और साथियों की, गीत और संगीत दोनों ही है रविंद्र जैन का। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म हिना से।

0: बिल्कुल भी देर नहीं होगी, बस थोड़ी ही देर में हम हाजिर हो जाएंगे आपके इस कार्यक्रम को लेकर। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: गर्मी का कहर बढ़ रहा है और इसके साथ ही खतरा बढ़ रहा है लू का, लेकिन घबराएं नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें।
2: जब भी बाहर निकलें, कुछ खा पी कर निकलें, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें।
1: और हाँ, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर को गमछे, टोपी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर कदम रखें।
2: चक्कर आए, सिर में तेज दर्द हो या बहुत कमजोरी लगे तो इसे मामूली थकान न समझें, ये लू के लक्षण हो सकते हैं।
1: तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ORS या नींबू पानी का घोल पिएं और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें।
2: याद रखिए, आपकी सतर्कता ही आपको इस तपती गर्मी से सुरक्षित रख सकती है।
1: खुद भी बचें और दूसरों को भी जागरूक करें।
3: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
4: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
3: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
4: जी हाँ, और वो है योग।
3: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
4: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
3: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
4: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
3: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
5: योग करिए, निरोग रहिए।
6: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान, पीएम किसान।
7: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक

एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके ही कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में। श्रोताओं, जैसे कि आपको पता ही है कि ये कार्यक्रम सिर्फ गीतों पर ही आधारित नहीं है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने सुविचार, शायरी और जो भी लाइनें आपको पसंद हो वो भेज सकते हैं। तो बता देते हैं कि किस तरह से भेजना। वैसे हमारे रेगुलर श्रोताओं को तो पता ही है, लेकिन जो हमारे नए श्रोता जुड़ना चाहते हैं और फेसबुक के माध्यम से इसमें कमेंट्स लिखना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, तो उनके लिए बता देते हैं कि आपको कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको आकाशवाणी के फेसबुक पेज पर आकाशवाणी अयोध्या पर जाना पड़ेगा और वहाँ आपको कार्यक्रम कुछ तुमने कहा का पोस्टर मिलेगा। आपको इस पोस्टर के कमेंट बॉक्स में अपने सुविचार, अपना नाम पता लिखकर भेज देते हैं और पसंद किया हुआ गीत भी आप भेज सकते हैं जो हम शामिल करते हैं हर रोज़ आपके इस कार्यक्रम में। और अब अपने और श्रोताओं को भी शामिल करने लेते हैं क्योंकि उन्हें भी होगा इंतज़ार। तो अगले श्रोता हैं हमारे दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मस्कीन, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नावकर, सदर बाजार कुरावली से हैं हमारे श्रोता अनिल कुमार वर्मा, आलोट रतलाम एमपी से हैं जगदीश धाकड़, मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से हैं रमेश कुमार कंबोज, मजनू का टीला से हैं कमल बालूजा, गांव फरासी हिसार से हैं राजकुमार डूडी, उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, परभणी महाराष्ट्र से हैं रुपेश संग

गई। दुर्गा कॉलोनी हांसी से हैं राजू मिकलानी। गांधी चौक बाड़मेर से हैं बबलेश पवार। गुरमीत सिंह मीता हैं साउथ दिल्ली से। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी। नई बस्ती गंज डुंडवारा से हैं मोहम्मद यासीन हाशमी। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग। मालियान सरधना मेरठ से हैं अनिल जैन। आप लिखते हैं खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी आशीष दी है हम सभी को। और अगले हैं श्रोता हमारे कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी। पुराना तालाब डुमराव से हैं वलीउल्लाह अंसारी। मदरसा गेट भाऊपुर मड़ियाऊ जौनपुर से हैं इरशाद अहमद अंसारी। आप सबके लिए कार्यक्रम में अगला गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज में फिल्म आवारगी से। गीत है आनंद बख्शी का और संगीत अनु मलिक का। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में शामिल होने वाले हमारे श्रोता हैं पीतमपुरा न्यू दिल्ली से उमेश कुमार गौड़, गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से हैं राधेश्याम शर्मा, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं नारायण लाल साहू, मुबारकपुर ऊंची तकिया

से आजमगढ़ से हैं दिलशाद हुसैन, कोल सिटी बरकाकाना से हैं अफजाल ताज, कस्बा उगहती बदायूं से हैं धीरज गुप्ता, कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जौड़ा, तीव्रता छत्तीसगढ़ से हैं महेंद्र प्रताप मरकाम, भोजपुर तगा सहारनपुर से हैं मोहम्मद इंतजार, ग्राम पजौनिया जिला जालौन से हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, रोहासी पलारी छत्तीसगढ़ से हैं चेतन साहू, तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श, गनगोला दातागंज से हैं इसरत खां, आकोट से हैं विनायक बेंडे, जेल रोड दिल्ली से हैं लाल बाबू दीवाना, मुगलपुरा बागपत से हैं अब्दुल सत्तार अब्बासी, सफीदो सिटी हरियाणा से हैं नानक खन्ना, रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड से हैं गंगा सिंह रावत, लोहारू हरियाणा से हैं बिल्लू सिंह चिंडालिया, और गांव जाखोद राजस्थान से हैं शंभू दयाल खटक, जिला खरगोन सनावद से हैं मास्टर अशोक वर्मा। आप लिखते हैं आपका हर पल खुशियों से भरा हो, तो हम भी यही आरजू करते हैं कि आपका भी हर पल खुशियों से भरा हो। डाबकी अकोल रोड अकोला से हैं सदानंद मंदूरकर, पंजाब से हैं मोहम्मद हफीजुर रहमान, शाहजी नगर देगलूर नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे। आप सबके लिए कार्यक्रम में अंतिम गीत है फिल्म एक दूजे के लिए से, आवाज है एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की, गीत है आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: चलते चलते श्रोताओं इतना ही कहेंगे कि सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में कमेंट्स भेजे और शामिल हुए अपने पसंद किए हुए गीतों के साथ। तो अभी दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से तबस्सुम को और मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। अभी आप सुन रहे थे फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है गैर फिल्मी भजन गीत गजल पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के हृदय रोग विशेषज्ञ डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर सोमिल वर्मा अब अयोध्या के यशरोग हॉस्पिटल में मिलेंगे हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। कॉल करें 94532211909।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: सभी सुनने वालों का बहुत स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गीतांजलि, और इस कार्यक्रम की पहली पेशकश है भूपेंद्र की आवाज में।

आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों गजलों पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि, और अब आपके लिए लाए हैं तानिया की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत।

तानिया के गाए इसी गीत के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं तक। श्रोताओं, गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए हमें ज़रूरत है अपने बचाव की, ताकि हम इसके दुष्प्रभाव से बच सकें। इस मौसम में हीट स्ट्रोक होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं, इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। गर्म, लाल, शुष्क त्वचा का होना, पसीना न आना, पल्स तेज होना, व्यवहार में परिवर्तन, भ्रम की स्थिति, सिरदर्द, मितली, थकान और कमजोरी होने पर हमें उस लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। साथियों, बताते हैं कि हीट स्ट्रोक से शरीर पर कैसा प्रभाव पड़ता है। उच्च तापमान से शरीर के आंतरिक अंगों, विशेष रूप से मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है और शरीर में उच्च रक्तचाप उत्पन्न करता है। मनुष्य के हृदय पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, अपनी देखभाल करनी चाहिए और कोशिश यही हमें करनी चाहिए ताकि हमें धूप में ना निकलना पड़े और इसके प्रभाव, दुष्प्रभाव से हम बच सकें।

0: 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
2: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल है, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे

0: सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहां पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाट बद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए

0: 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
1: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार

वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दिल्ली से समाचार के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। हमारी बहनें सुने अपना कार्यक्रम नारी जगत।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161873347।
2: सभी श्रोता सखियों को संध्या सक्सेना का नमस्कार। बहनों, जेठ मास की तपती दोपहरी है, तो ऐसे में क्या कर रही हैं आप? भोजन करके आराम, या फिर शाम के खाने में क्या बनाना है इसकी रूपरेखा दिमाग में चल रही है? क्योंकि आजकल मेहमानों का आना जाना लगा है, साथ ही शादी ब्याह के दिन भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में हमारी बहनें रसोई से तो फुर्सत पाने से रहीं। अधिकांश घरों में ये जिम्मेदारी हम महिलाओं की ही है। अच्छी बात है, परिवार की सेहत का जिम्मा हमारा है। हमारी बहनें इस बात का पूरा ध्यान भी रखती हैं और ये पीढ़ियों से हमारे भारतीय घरों में होता भी आ रहा है। इसीलिए गृहिणी का ऋणी पूरा परिवार होता है। और आज ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 18 जून को सतत पाक कला दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य ऐसी भोजन पद्धतियों को बढ़ावा देना है जो पर्यावरण, स्थानीय कृषि, यानी जो हमारे आसपास खेती किसानी में उगता है उसका सही उपयोग करना, साथ ही पारंपरिक खाद्य पदार्थ है और खाद्य संस्कृति और उसकी प्राकृतिक संसाधनों की जो समर्थन हो सकती है हम लोगों से, वो सब करना। इस दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशन द्वारा की गई। ये दिन हमें स्वस्थ भोजन, किसानों के सम्मान, जैव विविधता और उसका संरक्षण, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित खाद्य व्यवस्था को समझाता है जो प्रकृति और समाज दोनों के लिए लाभकारी हो। इस तरह से हमारे और आपके लिए ये सेहतमंद भी है और फायदेमंद भी है, होगा क्यों नहीं। एक बात और भी है, जब हम अपने जीवन में योग को जोड़ लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा लाभकारी हो जाता है। मैंने आज पूरी दुनिया भर के लोग भारत की प्राचीन योग परंपरा से जुड़ रहे हैं। स्वस्थ जीवन के लिए दैनिक जीवन की आदत बन जाए, इसीलिए योग 365 अभियान भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत और स्वस्थ रह सकते हैं। साथ ही ये रोजमर्रा के जीवन में तनाव, चिंता और बहुत सारे जीवन शैली संबंधी रोगों को कम करने में भी सहायक है, जिससे शरीर में स्फूर्ति, शांति और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। लेकिन श्रोता सखियों, ये सब वही महसूस कर सकता है जो योग को अपनी आदतों में शामिल करता है। तो चलिए इसी पर सुनाते हैं आपको कहानी मुस्कान। अपने ऑफिस के केबिन में कुमकुम फाइलों के बीच उलझी हुई थी। लंच का समय हो गया था। नेहा ने कुमकुम को व्यस्त देखा तो बोली, अरे कब तक काम करती रहोगी, टिफिन कर लो, नहीं तो

समय यूं ही बीत जाएगा। कुमकुम ने बहुत ठंडे अंदाज में कहा, नहीं भूख नहीं है मुझे, तुम लोग जाओ खा पी लो। ओ हेलो, ये क्या चल रहा है मैडम, अक्सर तुम यूं ही कह देती हो, कोई बात है क्या, कोई दुख मुसीबत परेशानी हो तो शेयर कर लो, मन हल्का हो जाएगा। ना तो चेहरे पे वो पहले वाली हंसी रह गई, मुस्कान रह गई, ना ही मुखड़े पे चमक, कुछ बात जरूर है, बता ना बता तेरी मर्जी, कहकर वो चली गई। शाम हुई, ऑफिस से बाहर निकली कुमकुम, कुछ घरेलू सामान लिए, फिर टैक्सी की और घर के लिए चल दी। टैक्सी आगे बढ़ी तभी ड्राइवर ने उसमें बज रहे रेडियो के वॉल्यूम को बढ़ा दिया।

कुमकुम घर पहुंची। थोड़ी ही देर में ऋषभ आ गए। चेंज करने के बाद ऋषभ ने चाय बनाने को कहा। कुमकुम बोली, मैं भी तो अभी आ रही हूँ, देख रहे हो सामान व्यवस्थित कर रही हूँ, मैं नहीं करूंगी तो ये 3 दिन तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। क्या 2 कप चाय बनाने का फर्ज तुम्हारा नहीं है? ओहो, जब देखो तब लड़ने के मूड में रहती हो, ऐसा क्या कह दिया मैंने? और देखते ही देखते आपस की बहस तकरार में बदल गई। ऋषभ ने भी बेडरूम से अपना तकिया बगल में दबाया और लैपटॉप लेकर दूसरे कमरे में सोने के लिए आ गया। कुमकुम अपने बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी, क्यों नहीं ऋषभ को समझ में आता मेरी परेशानी, जरूरत, मेरा तनाव। रोज रोज ऐसी किचकिच से मैं बीमार हो जाऊंगी। उधर ऋषभ भी अपने कमरे में यही सोच रहा था कि बात बात पर इतनी चिड़चिड़ और किचकिचाहट हमारे रिश्तों में दूरी बढ़ा देगी। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बात ज्यादा बिगड़ जाएगी। जबकि हमने तो एक दूसरे से बहुत पहले ये वादा किया था जिसे निभाना हम दोनों का ही फर्ज है।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटा पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: अपने वाहन को भीड़भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
5: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
4: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
5: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
4: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, ये आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
5: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
6: अगली सुबह जब ऋषभ ऑफिस पहुंचा तो योग संस्था से कुछ लोग आए थे जो सभी को प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कितना स्ट्रेस है, जिसकी वजह से लोगों के मन की शांति छिन रही है, इसीलिए बीमारियां भी बढ़ रही हैं और साथ ही मानसिक अशांति, आपसी रिश्तों में तनाव और टकराहट के कारण अपनापन कहीं गुम होने लगा है, जो कि बदलते मौसम की तरह भले ही दिखाई ना देता हो, लेकिन अहम और वहम के साथ रिश्तों का दरकना असल कारण है। इसलिए फासले बढ़ें, इससे पहले सही फैसला लीजिए। सही स्वास्थ्य तन मन और जीवन के लिए जरूरी है योग। शरीर की जरूरत ही सक्रियता है। दौड़, जिम, ये सब खून और ऑक्सीजन का संचार बढ़ाते हैं, जिससे विषैले तत्व जो होते हैं शरीर में उनका जमाव रुकता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मजबूत होती है, सांसों की लय से तनाव मुक्त होते हैं। आप लोग शुरुआत में सुबह के 10-15 मिनट के योग करिए। एक कार्ड दिया और कहा कि आप सभी लोग हमारे योग शिविर में अपने परिवार संग आइए, हम आपसे केवल 90 दिन यानी 3 महीने मांग रहे हैं। इतने दिन आप नियमित रूप से हमारे साथ योग करिए, अगर आपको फर्क दिखे तो इसे आगे अपने जीवन का हिस्सा अवश्य बनाइएगा। ऐसा होगा जरूर, ऐसा मेरा अनुभव है, परंतु एक बार मेरी बात आजमाइए। ऋषभ सारी बातों को ध्यान से सुनता रहा। बीती रात घर की और कुमकुम के व्यवहार से चिंतित था ही, इसलिए उसने निर्णय लिया कि एक बार इस तरफ कदम बढ़ाने से कोई बुराई नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ करना ही होगा। हो सकता है कि वाकई हमारे घर में, हम लोगों के बीच में बदलाव आ ही जाए। ऑफिस का समय समाप्त हुआ, उसने कुमकुम को कहा, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, आज खाना बाहर खाएंगे। फिर रात को लौटते समय कार में बजता मधुर गीत ऋषभ को गुनगुनाने पर मजबूर कर गया।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

कुमकुम का चेहरा यूं ही बुझा बुझा तनाव में अभी भी था। ऋषभ ने कहा, कुमकुम जानती हो, ये जो तुम हर समय त्योरी चढ़ाए रहती हो ना, इसके लिए 62 मांसपेशियों को मेहनत करनी होती है, जबकि चेहरे पर मुस्कान बिखेरने के लिए मात्र 26 मांसपेशियां अपना कमाल दिखाती हैं। और बताऊं, हंसना मुस्कुराना हमारे चेहरे का व्यायाम और मन का आराम है। अरे, आज ये ज्ञान आपको कहां से प्राप्त हुआ, किसने दिया? कुमकुम ने कहा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है। उसने योग शिविर का कार्ड सामने रखा और कहा, इसे पढ़ लो, सुबह 5 बजे उठकर चलना है, इसलिए जाओ और सो जाओ। लेकिन घर का सारा काम, ये सब कैसे होगा, मेरे बस का नहीं है, कुमकुम बोली। अच्छा चलो, सुबह का सुबह देखेंगे, तुम जितना काम कर पाना करना, बाकी मुझ पर छोड़ देना, मैं कर लूंगा, लेकिन चलना है तो है। सुबह सुबह शिविर में पहुंचकर लोगों को प्राकृतिक नजारों का आनंद लेते, खुली और ठंडी ताजी हवा में सांस लेते योगा अभ्यास करता देख दोनों को वाकई बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि कितनी अद्भुत बातों को हमने अपने आलस्य के कारण महत्व नहीं दिया अभी तक। अपने योग गुरु के पास गए, अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने भी समझाया कि जब हम 50 लोगों को बताते हैं तो उसमें से 20 लोग ही हमारे तक आ पाते हैं अपना आराम और आलस्य छोड़कर, जबकि आज का दौर सुविधाओं का है, साथ ही भय, असुरक्षा, तनाव और कहीं कहीं मूल्यहीनता का भी है। दुनिया जीत ली हमने, अपने भीतर के अंधकार को नहीं जीता। हमारी संपन्नता बढ़ी पर संतोष घटा, संपर्क बढ़े लेकिन संबंधी छूट गए, सूचना की जानकारी हुई परंतु आत्मबोध कम हो गया। हमें सही गलत, शाश्वत क्षणिक, आवश्यक अनावश्यक के बीच अंतर समझना है, साथ ही ये स्वीकार करना है कि जीवन भोग नहीं बल्कि योग है। भारत भूमि उपलब्धि से ज्यादा अनुभूति को महत्व देती है, अधिकार से पहले उत्तरदायित्व समझाती है। अच्छा हुआ आप दोनों ने सही समय पर सही निर्णय लिया, जो शुरुआती योगासन है वहां से आपकी शुरुआत की जाएगी, सरल से जटिल की ओर बढ़ेंगे। 2 मिनट गहरी सांस लेंगे, फिर ताड़ासन, वृक्षासन, धनुरासन, भुजंगासन सीखेंगे, वज्रासन और भी कई आसन उन्होंने समय के साथ धीरे धीरे सीख लिया। दिनों दिन के अभ्यास से दोनों ने ही बहुत फर्क महसूस किया। प्राणायाम सीखने के बाद उन्होंने योग को 90 दिन यानी 3 महीने नहीं बल्कि 365

68 दिन का हिस्सा बनाने की पूरी तरह से ठान ली। महीनों बीत गए, योगासन ने कुमकुम और ऋषभ के जीवन में मुस्कान लौटा दी। वो दोनों ही अपने संगी साथियों के बीच एक अनोखा उदाहरण बन गए। ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ ऋषभ हर किसी को अपनी कहानी गाते गुनगुनाते सुनाने लगे।

0: बहनों अब चलते हैं रसोई की ओर। अगर आपको तांबे के बर्तन चमकदार बनाने हैं तो उसके लिए आधा टुकड़ा नींबू लीजिए और उस पर नमक छिड़किए और फिर बर्तन को रगड़ के साफ करिए, बर्तन बिल्कुल चमकने लगेंगे। इसी तरह से पीतल और चांदी के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू के रस में मीठा सोडा नमक डालिए और जूने से उसको मांज लीजिए। अगर बर्तन नक्काशीदार हैं तो उनको टूथब्रश से साफ कर सकती हैं। और बहनों इसी के साथ दे दीजिए संध्या सक्सेना को इजाजत। नमस्कार।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
1: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
2: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।

कार्यक्रम नारी जगत 101.9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: नंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खीरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
3: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोता, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओ, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं जो समुद्र के रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बताए देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में

0: कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओ, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओ, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम। तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्योहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओ, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओ हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओ आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए

ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है,

0: मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो?
0: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
1: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
2: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
0: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
1: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
0: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
1: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
0: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है। तब मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
0: तुम सेठ

0: मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा मालामाल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
0: वो सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
0: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं। पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
1: ठहर ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह।
0: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूं

0: देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना।
1: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
2: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
2: सेठ मुझे देर हो रही है।
0: देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
2: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
3: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
4: जी मालिक।
1: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
0: हाथ से निकल गई।
1: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
2: माँ
1: ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा,
5: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
1: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही।
5: बड़ी
1: देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार, नमस्कार।
8: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
9: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 101.9 मेगाहर्ट्ज FM बैंड और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। अब आइए एक बार पुनः आपको लिए चलते हैं केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों की ओर।

0: केवल प्रतिष्ठित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना है। यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के मुख्य पछतावे से बचना हमें होगा।
1: बिल्कुल। और चंचल देखो, एक अंतराल का समय हो गया
0: जी,

विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली चल रहा है और हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। कमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, बातें और भी हैं, लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं।

0: याद रखोगे कि भूल जाओगे नजराने। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के विषय में ही हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी फरवरी में छोटी बेटी की शादी थी, बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का कुछ ज्यादा ही शौक होता है। शादी के कपड़े, बिंदिया, गहने, ड्रेस मटेरियल और भी बहुत कुछ उसने देखा और मंगवाया भी। इसमें से कुछ सामान ऐसा भी आया जो कि दिखाया गया वो नहीं भेजा गया, वापस करने की कोई सुविधा नहीं थी। कुछ कपड़े भी जिस साइज के मंगवाए थे उसे साइज में आए ही नहीं। जूते चप्पलों का भी यही हाल था। इसे नुकसान भी हुआ क्योंकि वापस भेजने की सुविधा नहीं थी। कुछ कंपनियों ने जैसा कहा था वैसा ही भिजवाया तब अच्छा लगा। तो मेरा तो अनुभव ये रहा कि सामान वही मंगवाना चाहिए जिसमें वापस भेजने की सुविधा हो, नहीं तो हमें धोखा हो सकता है।
1: हमारे एक श्रोता का कमेंट है, उफ ये ऑनलाइन शॉपिंग कभी खुशी कभी गम। अभी हाल ही ऑर्डर किया गया एक सामान है, उम्मीद है जो मंगवाया गया वही आइटम मिलेगा। मतलब इन्हें अभी तक उस सामान की डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में लिख रही हैं। और तब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए। पिछली बार पछतावा मिला जब गोल्डन और व्हाइट पर्ल का ऑर्डर दिया था, मगर ड्रेस एक धुलाई में ही ऐसी निकली कि मेरे सारे अरमान भी धुल गए।
0: तो वैसे एक हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि मैंने भी सभी बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी करें, और मैं भी सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं।
1: आगे श्रोता लिखते हैं कि बेटे ने एक बार लैपटॉप, टैबलेट, स्क्रीन पर काम करने वाली स्टाइलिश पेन, इस तरह की कुछ चीजें मंगवाई थी जिनमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, और जैसे ही इन चीजों को उपयोग में लाया तो पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तुरंत संपर्क किया और बहुत तकलीफ हुई इन चीजों को रिटर्न करने में और अमाउंट को वापस अपने प्राप्त करने में। इसीलिए मैंने बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी किया करें, और जैसा कि आपने बताया था कि इनकी पत्नी है वो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं करती है, बच्चे हैं वो कर लेते हैं।
0: बहुत सारी चीजें अच्छी भी आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीजें खराब ही आती हैं,
1: लेकिन आज हम फिलहाल वही अनुभव ले रहे हैं जो कभी पछतावा हो।
0: और एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि शॉपिंग की कहूं तो भतीजे की शादी में बिटिया रानी ने कुछ कपड़े मंगवाए, सब गड़बड़ हो गया एन समय पर, फिर आखिर बाजार से तुरंत फुर्ती से दूसरे खरीदने पड़े तो पैसे गए और जो बुलाए वो भी नहीं आए। इससे अच्छा बाजार से अपनी पसंद के ही खरीदें, यही बेहतर होगा कि उनको दो बार पैसे खर्च करने पड़े।
1: बिल्कुल, आप बहुत सारे अति उत्साहित होकर ऐसे कोई चीजें ना खरीदें, ध्यान रखिएगा। और आज बता दें कि गुरु अर्जुन देव शहीद जो है, गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस है, और ये सिख धर्म के 5वें गुरु माने जाते हैं, और इनका बलिदान दिवस ज्येष्ठ माह की 24वें दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह किया तो लाहौर की तरफ वो चल पड़ा, और रास्ते में गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सहायता भी की, और जहांगीर ने इसे राजद्रोह मानकर उन्हें सजा सुना दी, और उन्हें बहुत सारी यातनाएं देकर शहीद किया गया था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता करने से मना कर दिया था, और सिख धर्म के इतिहास में उन्हें पहला शहीद माना जाता है।
0: जी, बहुत ही बड़ी बात है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
1: और आज ये जो दिन होता है ना, इस पर बहुत सारे जो गुरुद्वारे होते हैं वहां पर शब्द कीर्तन होते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और छबील यानी कि मीठे प्याऊ, मीठे पानी की जो प्याऊ होते हैं वो लगाई जाती है, और लंगर यानी कि जो भोजन प्रसाद होता है उसकी व्यवस्था की
0: जाती है। और लंगर का खाना चंचली इतना अच्छा, इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है ना कि मन करता है कि आप वहाँ रोज जाके खाएं, क्योंकि लंगर की सेवा वो हमेशा करते हैं,
1: और वो बहुत श्रद्धा से पकाया गया भोजन होता है, वो सिर्फ भोजन नहीं होता, वो प्रसाद।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम एक और दिवस है इसके बारे में बात करें कि गीत सुनने पहले
1: गीत सुन लेते
0: बिल्कुल गीत सुन लेते हैं।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो भाई खाना बनाते समय कुछ जरूरी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे पास, हमारे श्रोताओं ने हमें लिखकर
4: बहुत कुछ लिख डाला है भाई
3: जी।
4: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, इससे गैस की भी बचत होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं। और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना जरूरी है और उसके लिए विविध भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है? बना कर देगी, स्वाद में अंतर जरूर नजर आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे।
3: और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने को बनाने के लिए, बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं, तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है,
4: चंचल जी ऐसा मत कहिए क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं,
3: लेकिन मैंने कहा अमूमन ही।
4: हाँ, ये तो है,
3: है ना। तो हमारे जो पुरुष होता है कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश मैं पढ़कर सुना रही
4: हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
3: मैं खाना नहीं बनाता इसलिए कोई खास टिप्स नहीं है मेरे पास।
4: अच्छा।
3: पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ, तो एक टिप है मेरे पास
4: जी। बिल्कुल।
3: चाय की एक बूंद भी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ, यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी टिप है,
4: बहुत जरूरी
3: है। ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं, अगर किचन में खाना बनाया तो वो क्या करते हैं, बस खाने

0: में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वही पूरी फैली पसरी छोड़कर वो आते हैं। तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि भाई चाय की बूंदी गिरी है तो वो ना हो,
1: एकदम साफ सुथरा किचन मिले। बहुत अच्छी बात है। और एक और श्वेता है जो लिखते हैं कि अनाज दाल और बेकिंग के टिप्स बता रहे हैं वो, तो इसमें चावल के बारे में बता रहे हैं। तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदे नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं। और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है। और आटा गूंथते समय गुनगुने पानी या थोड़े से दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं।
0: इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जियों का रंग, जैसे मटर पालक इस तरह की जो भी होती हैं सब्जियां, उनका रंग बरकरार रखने के लिए चुटकी भर चीनी डालने से उनका हरा रंग बना रहता है। विटामिन का अगर संरक्षण करना है तो सब्जियों को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काटने की बजाय या पानी में उबालने की बजाय बड़ा थोड़ा मोटा काटें, और पानी में उबालने के लिए उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं तो ऐसा ना करें। इसीलिए इन्हें मध्यम आकार के आकार में काटें। और आलू बैंगन अक्सर काले पड़ जाते हैं तो इन्हें जैसे ही काटें तुरंत नमक वाले पानी में रखें, इससे वो काले नहीं पड़ेंगे। और लहसुन की कलियों को कुछ देर गर्म पानी में भिगोकर रखने से छिलका बड़े आसानी से निकाला जा सकता है।
1: वाह क्या बात है। और एक हमारी श्रोता है जो बहुत ही, इन्होंने तो बहुत ही मजेदार सा कमेंट किया है, गाना ही लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि खाने बनाने का समय का टिप्स हम क्या दे सकते हैं भला, जिसे खाना बनाना ना आया, ना गाना आया, ना बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ दिलबर के हाथों का खाना खाना आया। तो मतलब ये इन्होंने खाना खाना सीखा है, खाना बनाना नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, आप अभी भी आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं,
0: नहीं भी खाना बनाते तो सिर्फ अगर मदद भी करेंगे ना अपनी बहन की, माताजी की, श्रीमती जी की, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, ये भी बहुत बड़ी बात।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी तैयारियां करा दीजिए, सामान ले आइए या उनके लिए कुछ अच्छा ले आइए जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा अच्छा खाना खिला पाए।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है। खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए जिससे समय की बचत हो जाती है। मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए ताकि कोई चीज कम या ज्यादा ना हो जाए।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि प्याज को अच्छी तरह सुनहरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है। सब्जी या दाल में ज्यादा नमक अगर हो गया है तो करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी। गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं। और ग्रेवी में दही मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इससे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं।
0: अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं तो उस पर थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए, इससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है। मलाई को 8 दिन, अगर मलाई से निकाल रहे हैं तो उसे 8 दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें। मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ डालकर मक्खन को तुरंत रखें और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है उसमें बड़ा स्वाद होता है।
1: बिल्कुल। और चंचल जी, हम एक संदेश को सुन लेते हैं, इसके बाद हम बात करें आगे।
0: जी
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है, उन्हें छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं है तो पूरे हाथ पर सूखा आटा लपेट ले और उसके बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती तुम्हें ध्यान है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि आज है 18 जून जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है।
1: बिल्कुल, और गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन है जिसे अच्छे खान पान की कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। इसे किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली या फिर स्थानीय भोजन के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी कार्य जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए।
0: बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं और कई तरह के जो व्यंजन है उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और अब एक गाना सुन लें।
1: बिल्कुल,
2: मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत।

0: भाई ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत और समय हो चला है सखियों से विदा लेने का।
1: तो आरती श्रीवास्तव को और
0: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों, गर्मी की इस चिलचिलाती दोपहरिया में कोई चीज सुकून देता है तो वो है पानी या फिर शरबत या फिर आइसक्रीम। लेकिन इसके अलावा इन सब से परे जो सुकून और ठंडी छांव देता है वो है सुरीले गीतों की सौगात। सुरीले गीतों की फरमाइश करते हैं आप सभी श्रोता, मीठी और दिलचस्प बातें करते हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातों और गीतों का। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं ठाणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद चौहान है।
0: रामेश्वर जी, क्या काम काज करते हैं आप ठाणे में?
1: मेरा काम है, छोटा मोटा दुकान है, घर के अंदर ही है, हॉल और अस्तर ये सब है।
0: अच्छी बात है, ठीक है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी काम अच्छे होते हैं, काम करना चाहिए, कोई काम छोटा नहीं।
1: हाँ, जिंदगी तो इसी में निकल गई हमारी, पिछले 32 साल से ही कर रहा हूँ।
0: तो आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रमेश जी?
1: एक कुल दो मालिक का है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा,
0: तुझे दीप कहूँ या तारा। तो किसके लिए सुनना चाहते हैं? कभी बच्चे को गाकर सुनाया है ये गाना आपने?
1: बच्चे लोग को मैं बहुत सुनाता हूँ, लेकिन आजकल पुराना गाना सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता है इन लोग।
0: अच्छा, नए गाने पसंद करते हैं बच्चे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत करते हैं खत्म। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूं मैम, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से।
0: तो आपका गांव कैसा है, जरा गांव की कुछ विशेषता बताइए अपने।
1: गांव बहुत बड़ा है मैम, यहाँ की मतलब आबादी 5000 की समथिंग है मैम।
0: और पैदावार क्या होती है?
1: यहाँ पे सोयाबीन मुख्य खेती, मतलब बोनी होती है सोयाबीन की।
0: और सोयाबीन बहुत पौष्टिक होता है खाने के लिए, बहुत रिच प्रोटीन होता है।
1: जी जी मैम।
0: तो व्यापार भी करते हैं, मतलब बिकता भी है सोयाबीन या फिर खाने भर का?
1: हाँ मैम, मंडी के लिए भी ले जाते हैं।
0: अच्छा, और बाकी चीजों में जैसे दाल चावल और गेहूँ धान, इन सब में क्या होता है ज्यादा पैदावार?
1: अरहर होती है मैम यहाँ पे, मूंग भी होती है, उड़द भी होता है, मूंगफली भी होती है मैम।
0: भाई देखिए, गांव मतलब जब आम का मौसम है, गर्मी का मौसम यानी आम का मौसम, और इस समय आम जो लोग गांव में रहते हैं उनको आम खाने का बड़ा सुख मिलता है। तो बाग आपके पास भी है?
1: 4-5 पेड़ लगे हैं मैम हमारे खेत पे।
0: अच्छा, सिर्फ 4-5 पेड़? भाई हमने तो
1: 4-5
0: बाग देखे हैं, वो बड़े बड़े बाग दूर दूर तक फैले, आम के पेड़, जामुन के पेड़। संख्या पेड़ों की कम हो रही है ऐसा लगता है आपको?
1: नहीं नहीं मैम, गांव में तो बहुत है, लेकिन हम खेत पे लगाए हैं इसके 5-6 पेड़।
0: अच्छा अच्छा जी, बताएं कौन सा गाना आपको सुनवाए?
1: देवफा सनम का सुनना है मैम।
0: कौन सा?
1: अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार के, ये गीत की बोल है मैम।
0: अच्छा, क्या कभी दिल टूटने की बात आई थी क्या जीवन में, ऐसा गाने?
1: नहीं मैम, नहीं नहीं, पसंद नहीं है मैम।
0: अच्छा अच्छा जी, एक समय जब फिल्म आई थी ना तो ये गाना बहुत मशहूर हुआ था, हर किसी की जबान पर ये गाना होता था। तो चलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, आपने हमें फोन किया, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मेरा नाम नई मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कश्मीर की किस जगह से?
1: जी मैं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है बड़गाम, ये खूबसूरत एरिया में पड़ता है, एक टूरिस्ट एरिया में ये पड़ता है।
0: वाह भाई वाह। तो श्रीनगर से कितनी दूर है आपका गाँव?
1: हम 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से।
0: अच्छी बात है। तो अगर पर्यटक वहाँ जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या सुविधा है, गाड़ी से या घोड़े से, कैसे जाया जाता है?
1: बस गाड़ी से आते हैं। और जो कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे बड़गाम में ही मौजूद है। और अब तरह तरह की सड़कें भी है और गाड़ी से भी आते हैं, और जो हमारा जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पर कोई सैलानी घोड़े को भी पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या काम काज है वहाँ?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, टेल मार्बल और सिटी की सामान बेचता हूँ, जैसे दीवार पर पेंट पेंट लगाते हैं वही मैं बिजनेस करता हूँ।
0: अच्छी बात है। तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है गर्म है?
1: थोड़ी गर्मी भी है, तो जून का महीना चले गर्मी भी है, लेकिन साथ साथ कभी कभी बारिश भी होती है, और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में भी बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे सैलानी भी आते हैं, हमारे कश्मीर के अंदर बहुत सारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं।
0: क्या बात है। गर्मी तो आपके लिए होगी क्योंकि आपकी आदत ज्यादा ठंड की है, जो सैलानी आते होंगे उनके लिए ज्यादा गर्म नहीं लगता होगा?
1: यहाँ पर ज्यादा 35-35 डिग्री यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के कई शहरों में 40 से भी ऊपर डिग्री गर्मी,
0: 48
1: नॉर्मल सी लगती
0: जी। तो बहुत ज्यादा गर्मी से जूझते हुए जब वहाँ लोग पहुँचते होंगे तो ठंडक महसूस होती होगी। वहाँ की कुछ नदियों, वहाँ की झील के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए, अगर आपको जानकारी है तो।
1: हमारे इलाके में सबसे एक मशहूर झील है, उसको दूध गंगा कहते हैं। उनका जो पानी बिल्कुल साफ और नेचुरल पानी होता है, और अगर आप हम जंगल के उस पार जाएंगे या जंगल के उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पर टूरिस्ट है, वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ है। जय अगर आप पहलगाम की बात करेंगे, सोनमार्ग, गुलमार्ग या दूध पथर की तरह की नदियाँ हैं, जो बहुत ही उनका पानी भी मीठा है और साफ भी है। और अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर का आपको ऐसा पानी मिलेगा।
0: पहलगाम और गुलमर्ग के पास तो लिद्दर नदी भी बहती है, हमें याद है कि
1: आपको सबसे मान
0: वो
1: जी आपको पता है ये पहलगाम कश्मीर में पड़ता।
0: उस नदी का पानी हमने छुआ भी, बहुत ठंडा पानी था क्योंकि हम ठंड के मौसम में गए थे। अच्छी बात ये है कि पानी बिल्कुल पारदर्शी लगता है। बताइए इस समय गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: ये साजन फिल्म का नगमा है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फोन किया और कश्मीर के बारे में इतनी उम्दा बातें आपने शेयर की श्रोताओं के साथ। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं मध्य प्रदेश से देवास जिले से गोविंद प्रसाद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: तो गोविंद जी, देवास मध्य प्रदेश किसी खास व्यक्ति के लिए संगीत के लिए मशहूर है, शास्त्रीय संगीत के एक मर्मज्ञ, वहाँ के मूर्धन्य संगीतज्ञ पंडित कुमार गंधर्व जी, जो उनका निवास है, देखा है आपने, बाहर से देखा होगा बहुत सुंदर बना हुआ है।
1: वो क्या है, वैसे खातेगांव से देवास की दूरी 100 किलोमीटर है करीब।
0: अच्छा, तो गए हैं आप
1: देवास, आना जाना रहता ही रहता है।
0: जी बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले वहाँ तक जाते हैं, पंडित कुमार गंधर्व के दरवाजे तक मत्था टेक कर आते हैं। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सर वो बरसात का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल का।
0: क्या बात है, बहुत सुरीला गाना चुना है आपने। तो क्या पुराने गाने ज्यादा पसंद आते हैं आपको?
1: हाँ, वो क्या है, पुराने गाने ही पसंद करता हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि वो शुरू से ही मेरे को लगाव है ये गाने पिक्चर से। क्या है कि मेरे रेडियो का बहुत शौकीन था शुरू से ही, 1967-68 से ही।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो घर वालों ने मेरे को रेडियो ट्रेनिंग में भेज दिया था। पहले बाल वाले रेडियो चलते थे,
0: हाँ,
1: लगती थी ये, उसकी ट्रेनिंग होती थी।
0: अच्छा।
1: सीखने के लिए तो मेरे को इंदौर में भेज दिया था सीखने के लिए। तो फिर मैंने इंदौर में भी काम किया, फिर खातेगांव में दुकान खोल दी रेडियो की, बाल वाले रेडियो।
0: क्या बात है, तो अभी भी है रेडियो वाली दुकान आपके पास?
1: अब तो मैंने बंद कर दी, अब तो मेरे से बनता नहीं है।
0: तो क्या करते थे, रिपेयरिंग करते थे?
1: हाँ, रिपेयरिंग करता था और वॉल वाले रेडियो बनाते ही थे।
0: अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। वॉल वाले रेडियो अब मिलते नहीं है?
1: हाँ, 5 बार 3 बार 2 बैंड 3 बैंड ऐसे चलते थे वो।
0: जी जी, तो अभी लोग आपसे कहते हैं कि मेरा रेडियो खराब हो गया, जरा रिपेयरिंग करके दे दो?
1: नहीं, अब तो अपने से बनता भी नहीं है, अब रेडियो का जमाना है ही नहीं। अब रेडियो का जमाना खत्म हो गया, धीरे धीरे करके फिर ट्रांजिस्टर शुरू हो गए, सेल वाले।

0: अब सेल वाले से अब मोबाइल पे आ गए।
1: लेकिन सुनना कहाँ बंद हुआ, रेडियो से प्यार तो वैसे ही है।
0: सुनना तो नहीं रहा, अब तो सुनना तो और ज्यादा हो गया थी, क्योंकि पहले आजकल तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से देश भारती आकाशवाणी लगता था, और आजकल तो क्या है कि घर बैठे ही मतलब घर में मिल रहे हैं सभी स्टेशन में,
1: मोबाइल पे भी सुन सकते हैं आप।
0: हाँ मोबाइल,
1: पहले वो जो रेडियो बड़ा वाला होता था उसमें आप वो जो बटन होता था बटन को घुमाते रहो, कई बार विविध भारती पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, मुश्किल होती थी,
0: दिक्कत होती थी, हाँ इधर से उधर तक नहीं लगता था
1: जी। लेकिन उसका एक अलग आनंद था उस रेडियो का।
0: हाँ वो तो अलग ही था, उसकी उस प्रकार की उसकी बाडी भी इतनी अच्छी बनती थी कि संगीत में मजा आ जाता था, और इतने उतने सारंगी वगैरह इतने भी उसका उस टाइम समान मतलब उसका जमाना नहीं था संगीत का, बिल्कुल हारमोनियम भी इतने अच्छे लगते।
1: बहुत सारे कलाकारों को रेडियो ने मंच दिया, बहुत सारे कलाकार को रेडियो ने गढ़ा, तो रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है जीवन में हम सबके। तो बरसात फिल्म का गाना आपने पसंद किया है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम, और अब आपको सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैडम जी नमस्कार। जी
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: हाँ जी मैडम जी, मैं करणवीर सिंह पॉल जलंधर पंजाब से।
0: करणवीर सिंह जलंधर पंजाब के बारे में बताइए, क्या हाल चाल है जी?
1: बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। अभी तो थोड़ी दो दिन बारिश हुई है तो मौसम अभी ठंडा हो गया है। पहले तो बहुत ज्यादा तपिश थी, तो अभी फिर वैसे बारिश होने के चाहते शाम तक बारिश हुई।
0: और गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो राहत बहुत मिलती है, लेकिन उसके बाद जब बारिश रुक जाती है
1: राहत मिलती है। इधर तो पहले तो 45 टेम्परेचर हो गया पंजाब में, अभी कुछ राहत मिली है पहले से। तो आप सुनाओ, मुंबई का कैसा हाल है?
0: बस मुंबई में भी गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, बारिश का इंतजार है हम सबको, और बारिश के छींटे आप अपनी बातचीत के जरिए और गानों के जरिए बता दीजिए। वैसे भी पंजाब का लोकगीत बहुत समृद्ध है।
1: बिल्कुल जी, हम तो विविध भारती से, हम प्रसार भारती से 1970 से लेकर जुड़े हुए हैं।
0: क्या बात है,
1: आज तक बहुत हमें हमारा इन्होंने

0: साथ दिया है तो 90 वर्ष भी पूरे हो गए हैं, तो हम तो कहते हैं अभी 10 साल और बाकी है, सेंचुरी हो जाएगी पूरी तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, और सेंचुरी होगी वो तो सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद भी विविध भारती चलती रहेगी, रेडियो चलता रहेगा।
0: बिल्कुल चलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी, लेकिन हमें बहुत लगेगी हमें देखो इतना साल हो गया छूटे।
1: तो कोई पंजाबी लोकगीत वगैरह याद है आपको?
0: पंजाबी लोग हमारे सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर ने बहुत लोकगीत गाए हैं, लेकिन मेरे को उनका तो याद नहीं, मेरे को गुरदास मान का एक गीत बहुत ज्यादा है।
1: गा के सुनाइए ना श्रोताओं को हमारे।
0: गुरदास मान जी का गीत है बह के वेख, वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने, वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने, बस इतनी दो लाइन बोलनी थी।
1: जी जी बढ़िया, और वहाँ का खान पान भी बड़ा मशहूर है, बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल जी, सर्दी होती है तो सर्दी में तो हमारे मक्के की और सरसों का साग,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: मक्खन घी दही सब कुछ।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह। आप अपने वहाँ के बारे में बताइए, किस चीज की पैदावार वहाँ पर होती है आपके गाँव में?
0: हमारे पंजाब में ज्यादा करके ना गेहूँ होता है, तो जैसे अभी धान की खेती शुरू हो गई है, गेहूँ होता है, गन्ना होता है, ये खास चार फसलें ये खास होती है, बाकी पशुओं के लिए चारा भी होता है। ये चार फसलें तो वैसे हमारे पॉपुलर है ना ज्यादा करके होती है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया और धान हो गया।
1: तो मक्का होता है तो मक्के की रोटी और सरसों का साग तो मशहूर है ही है। तो
0: बिल्कुल जी, मक्के की रोटी सरसों का साग, जैसे मक्के के भुट्टे भुट्टा भी बाजार में आने लग गया ना हमारे इधर, हम खा लेते हैं तो जो उसका जो तना होता है वो पशुओं का चारा बन जाता है।
1: अच्छा अच्छा, क्या बात है, ये तो बड़ी उम्दा बात बताइए भाई। हमारे श्रोता अगर सुन रहे तो इसका उपयोग कर सकते हैं कि मक्का खाने के बाद जो उसका तना होता है वो पशुओं के खाने के काम आ सकता है। बताइए कौन सा गाना आप सुनेंगे?
0: गीत मैडम सुना दीजिए, आज मुझे फिल्म का नाम है पाकिजा, गीत के बोल है चलते चलते मुझे कोई मिल गया था।
1: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है आपने। मीना कुमारी और राजकुमार है इस फिल्म में, है ना? देखी थी फिल्म?
0: जी देखी है जी मैंने।
1: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम पाकिजा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं मोहम्मद कोरा श्रीनगर से, जवान मोहम्मद ऋषि
0: जी, बताएं क्या हाल है आपका और श्रीनगर का क्या हाल है?
1: श्रीनगर का हाल तो बहुत ही अच्छा है, और कल तो मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहाना है मौसम है।
0: अच्छा, बारिश हो गई है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी के मौसम में भी सुहाना मौसम।
1: बिल्कुल, बारिश भी हो रही है और धूप अच्छी है, फिर भी मौसम बढ़िया है। और आपके प्रोग्राम सुनते हैं हम, बहुत ही मजा आता है
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन हम सभी प्रोग्राम सुनते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना, वो पश्चिम का काम, मजा आता है इसमें, रेडियो दिन भर ऑन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: पश्मीने का काम?
1: जी बिल्कुल
0: जी, पश्मीने का शॉल बहुत मशहूर है, लोग जाते हैं जब कश्मीर तो वहाँ से खरीद कर ले आते हैं।
1: जी जी,
0: तो उसकी खासियत क्या होती है, थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को, कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है?
1: जी बिल्कुल, कौनी जामा होता है ये, मतलब महंगा ही होता है, 1,50,000 1.5 लाख तक भी होता है।
0: जी जी,
1: मतलब एक थोड़ा बहुत कठिन ही काम है, धागे मतलब जैसे तीली से बनाते हैं हम, मतलब हैंड से बनाते हैं हम।
0: इसमें धागे का प्रयोग करते हैं, ऊन का प्रयोग करते हैं?
1: ऊन का होता है, उसमें फिर हम धागे बनाते हैं ना, फिर वो हम तीली पे लगा, मतलब उसमें
0: वो जो डिजाइन बनाते हैं वो धागे से बनाते हैं?
1: हाँ, वो धागे से बनाते हैं।
0: तो काफी मेहनत होती है, काफी वक्त लगता है ना। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सहेली फिल्म है, उसी में एक गाना है, इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, लता और हिम्मत कुमार।
0: क्या बात है, बेहद सुरीला गाना पसंद किया आपने, और बहुत दिनों बाद इस गाने की फरमाइश आई है। खुद भी आप गाते गुनगुनाते हैं क्या?
1: थोड़ा बहुत गाते हैं।
0: गाना चाहे तो गा के सुनाइए, हमारे श्रोता भी सुनेंगे, आप गुनगुनाएंगे तो।
1: आपने कहा तो कोशिश करेंगे। इतना तो कह दो हमसे।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा हूँ।
0: जी मनोहर लाल जी, बताइए क्या हाल है आपका और गाजियाबाद का क्या हाल है?
1: बस ठीक है जी, गाजियाबाद का तो बहुत ही अच्छा हाल हो गया क्योंकि मेरी कॉल लग गई आज विविध भारती।
0: पर गर्मी बहुत पड़ रही है ना, दिल्ली पूरा इलाका बहुत गर्म सुना है हमने।
1: गर्मी तो बहुत पड़ रहा था लेकिन आज मौसम ठीक हो गया, सुबह सुबह अपना बादल आए, थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो मौसम ठीक है आज।
0: बादलों ने सुकून दिया आपको, तो इस सुकून के बाद आप बताइए कौन सा सुकून दे गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये गाना सुनना चाहता हूँ मैं फिल्म चमत्कार का, जिसके बोले इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: जी आप तो गाते भी अच्छा खासा।
1: जी यहाँ पे हम गाते रहते हैं करोके म्यूजिक पे, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे बुजुर्ग दोस्त हैं, यहाँ अपना हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं और गीत संगीत के साथ ही हम जुड़े रहते हैं और बचपन से हम विविध भारती सुनते आए हैं, आज भी सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, ये जो सब ग्रुप में गाने वाली बात कही, हमारे बहुत सारे श्रोता इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि जब आपके पास फुर्सत के लम्हे होते हैं तो आप सब साथ में गाने गुनगुनाने का सुनने का एक अलग मजा होता है।
1: संगीत साथ होता है, विविध भारती साथ होता है तो सकारात्मक सोच भी उत्पन्न होती है और दिल भी हमारा खुश रहता है
0: और बहुत सारे झंझावात तनाव भूल जाते हैं गानों के साथ जब होते हैं, है ना?
1: तनाव तो खैर होता ही नहीं है और बीमारियों से भी हम जो दूर रहते हैं क्योंकि संगीत एक थेरेपी की तरह है।
0: क्या काम काज है वैसे आपका?
1: ये मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे,
0: तो साथ में रेडियो चलता रहता है।
1: हाँ जी रेडियो चलता रहता है, ऐप के थ्रू अपना साफ आवाज में हम सुनते रहते हैं यहाँ पे।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम चमत्कार।

0: मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, धीरज दबारी
1: जी। बताए धीरज जी, क्या हाल है आपका?
0: मौसम अच्छा है, मेरा भी अच्छा हाल है, और मैं पेड़ों के नीचे से बात कर रहा हूँ। यहाँ मोर भी बहुत है, लेकिन जब हमारी बात हुई, जो अगर मोर एक दो टौके तो अच्छा रहे, लेकिन ये पक्षी है, हमारे कहने से कुछ नहीं बोलते, अपने आप में बोलते हैं।
1: अच्छा, कौन सा पक्षी है?
0: मोर है, बहुत है मोर, लेकिन अभी बादलों में कई बार बोलते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि जब बोले तब नहीं बोल पाएंगे।
1: उन्हें नहीं पता है ना कि हमें कब बोलना है, कैसे बोलना है, वो किसी के डिसिप्लिन वाले नहीं है ना, वो तो आजाद हैं और उन्हें आजाद रखना भी चाहिए। तो आपके तो दिन बन जाता होगा, बड़ा खुशगवार दिन होता होगा।
0: ममता जी, हम प्रकृति के अंदर में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
1: कहाँ काम करते हैं?
0: हम एक फार्म में नौकरी करते हैं, और फार्म में पेड़ों की संख्या बहुत है, और मोर है।

0: है और
1: अच्छा।
0: सामने पेड़ों की संख्या बहुत है और मोर है, कबूतर है और पक्षी है, बहुत अच्छा लगता है। और जो पक्षियों का जो प्रेम होता है ना, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो उसको जो दाना डालते रोटी डालते है मोर को, तो मोर बिल्कुल नजदीक आ जाता है, तो वो दृश्य बिल्कुल अच्छा लगता है।
1: क्या बात है, तो मोर का नृत्य भी देखा होगा फिर तो आपने, मोर का नाचना बड़ा सुंदर लगता है।
0: मोरों के बीच में गाँव में भी रहते थे और यहाँ भी रहते हैं।
1: विशेष रूप से क्या खिलाया जाता है मोर को?
0: मोर को देखा जाए तो उसको दाना, यानी दाने में जुआर है, बाजरी है, लेकिन हम रोटी डालते हैं तो बाजरे की, गेहूं की, तो वो खा जाते हैं।
1: अच्छा।
0: और वैसे देखा जाए तो जीव जंतु भी खाते हैं, लेकिन दाने भी खाते हैं और मकई का दाना भी खाते हैं, बाजरी, जुआर, गेहूं, लेकिन रोटी का उनको बहुत अच्छा रहता है अगर कोई डालता है।
1: तो बाकी पक्षी भी आते हैं, गोरैया आती है?
0: बिल्कुल आते हैं, चकली का या गोरैया का प्रमाण बहुत है अहमदाबाद सिटी में। मेरा गाँव डेर है, तहसील जिला पाटन, वहाँ गोरैया बहुत है, अहमदाबाद में कम है।
1: तो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो पक्षियों के पानी के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? क्योंकि
0: ममता जी बहुत भले लोग है, अहमदाबाद हो गए, मुंबई हो, बहुत भले लोग है, पानी पक्षियों के लिए भी रखते है, पशुओं के, प्राणियों के लिए और इंसानों के लिए, यानी मानवता अभी भी है और ये मानवता के लिए हम जी रहे और हमारा जीवन यानी एक अच्छा जीवन जी रहा है, तो हमें अच्छा लगता है कि ऐसे इंसानों के बीच हम रहते हैं।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये जानकर। और पक्षियों की बात की है आपने, तो जितने श्रोता सुन रहे हैं इससे आपकी बात से प्रेरणा लेंगे कि जो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पर जगह नहीं होती है पानी रखने के लिए, लेकिन एक छोटा सा बर्तन, मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं जिसमें पानी रख दिया तो बहुत गर्म भी नहीं होता है, तो पक्षी आकर वहाँ पानी पी सकते हैं।
0: खुला पानी ममता जी ठंडा ही रहता है, जैसे झील है, तालाब है, वो पानी ठंडा ही रहता है क्योंकि पवन रहता है और पानी ऊपर ऊपर से लगे हमें गर्म है लेकिन नीचे से ठंडा रहता है। ऊपर वाले की देन है, वो भी रखवाली करता है सब जीव जंतु की।
1: लगता है आपके आसपास नदी और झील भी है?
0: घर में नदी तो साबरमती नदी है और तालाब देखा जाए तो यहाँ कॉर्पोरेशन ने बनाए हुए वही तालाब है
1: जी। और नदी साबरमती नदी का नामकरण हुआ है कैसे, वो भी आपको पता ही होगा ना?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी साबर एक नदी है और इसके पर एक जिला भी है साबरकांठा, और जैसे बनासकांठा है वो भी बनास की नदी पर ही है, लेकिन हमारा जो जिला है वो नदी है सरस्वती, उसको कुवारिका बोलते है, जो दरिया में नहीं जाती है, रण में जाती, रेगिस्तान में चली जाती।
1: क्या बात है, बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो अब गाना आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
0: फकीरा फिल्म का दिल में तुझे बिठा कर लता मंगेशकर के आवाज में गाना सुनना है।
1: तो अब बातचीत करते हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है फकीरा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं यशवंत साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारडिया जिला के विधान छत्तीसगढ़ से।
0: जी बताइए, क्या हाल है आपका और छत्तीसगढ़ का?
1: जी ममता दीदी बहुत अच्छे हैं हम।
0: जी क्या कर रहे हैं?
1: हम आम के बगीचे में अभी आम खाने आए, मैं अपने बेटे को लेकर।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, कौन से आम है, कौन कौन से आम वहाँ पर?
1: अब आम के नाम तो मालूम, लेकिन देसी आम है अपना खुद का, इधर हमारे पूर्वज जो है ना वहाँ पर लगाए हुए हैं आज से 100 साल पहले आम।
0: वही खा रहे हैं?
1: हाँ, लकड़ी के सहारे से पेड़ में मार रहे हैं, उसके हिसाब से आम गिर रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं। मतलब अभी 10 आम खा चुके हैं दोनों बाप बेटे।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, 10 आम। अब यहाँ महानगरों में, शहरों में तो लोग एक आम खा लेते हैं, उसी से पेट भर जाता है।
1: जी मैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 2 साल तक वहाँ पर रुका हूँ।
0: जी
1: आम खाने के लिए वहाँ तरसते थे हम आम खाने के लिए।
0: जी और बाग से तोड़कर बाल्टी में भिगो के आम खाने का मजा अलग ही है। ये बताइए कि आपने कहा कि आपने के पूर्वजों ने आम लगाया और वो खा रहे हैं, तो आपने भी कोई पेड़ पौधा लगाया है, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी खाए?
1: हाँ बाड़ी तो लगाया हूँ और खेतों में भी एक दो पेड़ लगाया हूँ।
0: आम का जो बाग है, बाग में ही एक दो पौधा रोप दीजिए, पेड़ बन जाएगा कुछ महीनों में।
1: हाँ लोगों को कहना चाहूंगा कि जैसे कि आम की गुठलियाँ होती हैं, जामुन की गुठलियाँ होती हैं, आप वहाँ पर कहीं भी टूर मतलब रास्ते पार करते हैं, अपने घूमने जाते हैं ना, तो अपने बाइक के डिग्गी में रख ले और कहीं कहीं अपने डाल दे, ताकि वहाँ पर जो बारिश होगी उसके बाद ना अंगूर होकर एक पौधा बन जाएगा, जिसे कोई कोई आम खाएगा तो कम से कम ऊपर वाला देखेंगे।
0: जी बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है साजन की घर और कुमार सानू सरगम सरगम जी की आवाज है, गीत के बोल है सावन आया बादल छाए।
0: ठीक है जी, सावन आए बादल छाए, बस इसी उम्मीद के साथ भेज रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ में आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट तक। सावन आ...

0: हेलो फरमाइश
1: जी। दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: रंजीता जी बताइए, अपने बारे में बताइए, क्या काम काज है?
1: जी दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ और मेरे बच्चे हैं और ऐसे परिवार में है। फिर गर्मी का सीजन है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, जैसे कि जैसे पानी वानी पीना है या कहीं जाना है तो जैसे तावेल लेके जाए, पानी की बॉटल लेके जाए, और साथ साथ में जैसे हमको पता है कि मैं पानी की वैसी पक्षी हैं, गाय हैं, इन सभी का जैसे पक्षियों के लिए छोटे छोटे पोला होते हैं मिट्टी के, या फिर मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें जाके छत के ऊपर पानी रखना ताकि पक्षी लोग आए और वो भी अपना प्यास बुझा सके।
0: लेकिन आप खुद ये काम करती हैं?
1: जी करते भी हैं, और जैसे बालकनी वगैरह है तो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनमें भी पानी डालते हैं ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं।
0: और पेड़ पौधों की देखभाल के लिए और घरेलू स्तर पर भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है, सब्जी के जो छिलके होते हैं उसके माध्यम से खाद बनाया जाता है, तो घर पे भी कुछ खाद बनाया जा सकते हैं ना, अगर आप बागवानी करती हैं तो।
1: और हमारे इधर तो हम लोग गाँव में है तो घर में जैसे की गाय है भैंस है तो उन लोग का जो गोबर होते हैं उनको भी जैसे की ढाकन की मिट्टी में दबा के उनका भी खाद बनाते हैं और उनको भी सब्जी के लिए खेतों के लिए डालते हैं।
0: ये तो बहुत बढ़िया खाद होता है, गोबर की खाद तो सबसे अच्छी होती है, और जो घरेलू पौधे होते हैं उनमें तो इस खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है। तो आपके गांव में और क्या क्या है, क्या खासियत है गांव की बताइए, कौन से पेड़ पौधे हैं वहाँ पर, ज्यादातर खेती किस चीज की होती है?
1: हमारे तरफ धान की खेती होती है दीदी, और अभी पानी का इंतजार है, जैसे पानी गिरेगा तो धान की फसल डालेंगे हम लोग।
0: तो आपके यहाँ धान कूटने के लिए ओखली भी है, मूसल और ओखली?
1: नहीं अभी तो नहीं है, बहुत पहले
0: हुआ करता था
1: दादी लोग, हाँ हुआ करता था दादी लोग के समय में। ओखली वगैरह का तो नहीं पता दीदी, लेकिन वो ढेकी वगैरह बोलते हैं ना, उस टाइप का था,
0: चक्की जात वगैरह, चक्री है ना।
1: जी जी,
0: अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: जी जी जी, मैं खुद गर्ज फिल्म का दिल बहलता है मेरा आप क्या जाने।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपके पसंद का यही गाना।

तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक हमें फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभाग का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का STD कोड 022। एक टेलीफोन नंबर और है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 400-24662, मुंबई का STD कोड वही 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 2867-0288 और दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। और हाँ, चलने से पहले आपको ये भी बता दें आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रम FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हुए हैं, युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युव वाणी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम।

0: जरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज है थॉटफुल थर्सडे, तो मैं आपकी रेडियो दोस्त मंजली सिंह लेकर आ चुकी हूँ आपका पसंदीदा थर्सडे स्पेशल प्रोग्राम युवा संवाद, जिसमें हम और आप करते हैं आपस में बातचीत। और जब बात करते हैं हम, तो हम किसी विषय पे बात करते हैं, और आज का हमारा विषय है हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनता योग। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और डायल कर दीजिए 7376804090 और जुड़ जाइए हमारे साथ और बताइए हमें कि किस तरीके से आपकी दिनचर्या का हिस्सा है योग। तो दोस्तों, आज की जो हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी है ना, इसमें स्ट्रेस और कुछ बीमारियां तो जैसे हमारी परछाई बन गई है। ऐसे में जरूरी है कि हम ऐसे अभ्यासों को बिल्कुल ना छोड़ें जो हमें बीमार पड़ने ही नहीं देंगे। और दोस्तों, अब जरा सोचिए, सुबह आपकी आंख खुलती है तो आंख खुलते ही आप सबसे पहले क्या देखते हैं? मोबाइल फोन। और रात को सोने से पहले आखिरी चीज क्या देखते हैं? फिर से वही मोबाइल फोन। और दिन भर भाग दौड़, तनाव, कॉम्पिटिशन, जिम्मेदारियां, और इन सब के बीच कहीं ना कहीं हम अपने शरीर और मन दोनों को नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, हमें लगता है हमारे दोस्त जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार।
2: नमस्ते, चांदनी बोल रही हूँ।
1: हाँ जी चांदनी जी, कैसी हैं आप?
2: हम ठीक है, और आप कैसी हैं?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ। और चांदनी जी, योग कर रही हैं क्या आजकल?
2: नहीं, मैं अब तो योग नहीं करते, पर बट मम्मी करती है।
1: अच्छा, मम्मी करती है, आप क्यों नहीं करती है चांदनी जी? टाइम नहीं मिलता या फिर आपका मन नहीं करता? हेलो हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी चांदनी जी,
2: हम कह रहे हैं सुबह सुबह घूमने निकलते हैं।
1: तो आप भी चांदनी जी सोच लीजिए, अब 21 तारीख आने वाली है, 21 जून को है इंटरनेशनल योगा डे।

0: आप भी चांदनी जी सोच लीजिए, अब 21 तारीख आने वाली है, 21 जून को है इंटरनेशनल योगा डे, तो आप भी शुरू कर दीजिए अब योग करना, है ना? बिल्कुल, रेजोल्यूशन बना लीजिए कि 21 जून से आप भी शुरू कर दीजिए योग, ठीक है चांदनी जी? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, ऐसे ही कॉल करती रहा कीजिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनता है योग, और किस तरीके से हमारे जीवन का हिस्सा बना हुआ है योग। चलिए अपने अगले दोस्त से बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: रुपेश बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत टिकरी, नवाबगंज, गोंडा से।
0: रुपेश जी गोंडा से बात कर रहे हैं, कैसे हैं रुपेश जी आप?
1: बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मंजू जी, बहुत दिनों के बाद आज आपसे बात हो रही है, मुझे लगता है 2.5 महीने बीत गए होंगे।
0: जी जी बिल्कुल सही बात है, 2.5 महीने तो नहीं पर हाँ 1 महीने कह सकते हैं।
1: हाँ, आप... मुझे लगता है आपका एग्जाम इत्यादि लगा था बीच में, इसीलिए नहीं बात हो पा रही थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो अब रुपेश जी ये बताइए कि आपकी दिनचर्या से किस तरीके से जुड़ा हुआ है योग?
1: दिनचर्या का हिस्सा तो नहीं है मंजली, लेकिन क्या है योग, ये मतलब सोच के गर्व होता है ना कि योग भारत की देन है और पूरी दुनिया ने इसको अपने उपयोग में ले लिया है, मान लिया है, सोच के गर्व होता है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें गर्व करना भी चाहिए, पर इसके साथ साथ योग भी करना चाहिए।
1: हाँ हाँ बिल्कुल करना चाहिए।
0: तो आपकी दिनचर्या का हिस्सा क्यों नहीं है योग?
1: आज के पेशेंट नहीं होते लोग जी।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, बेनिफिट्स तो हमें पता है कि अच्छी बात है कि हमें बेनिफिट्स पता भी होने चाहिए, पर आप ये बताइए आप योग क्यों नहीं करते?
1: क्या मेरे पास नहीं था यही अवसर है ना कि लगातार करेंगे कुछ दिन तक तो ये हमारी आदत बन जाएगी, तो
0: बिल्कुल
1: इस तरह हमारी दिनचर्या बन जाए, हो सकता है कि अब 21 तारीख से शुरू ही कर दें।
0: बिल्कुल 21 तारीख से शुरू कीजिए, या फिर हम तो कहते हैं आज से ही शुरू कर दीजिए, आज से ही सोच लीजिए और कल सुबह उठते ही योग करिए।
1: बिल्कुल
0: जी। और आपको क्या लगता है, आप अगर दिनचर्या में जब योग अपने ऐड करेंगे तो क्या क्या फायदे होंगे आपको?
1: मुझे लगता है कि पॉजिटिव सा फील करेंगे पूरा दिन, चुस्त।
0: हेलो दोस्तों, हमें लगता है कॉल कट हो चुकी है, तो आप भी योग कीजिए, देखिए किसी दिन और तारीख का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए और कीजिए योग, और अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए योग। अगले दोस्त जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार।
2: नमस्कार मैम,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका?
2: मैम मेरा नाम संदीप कुमार भारती, ग्राम बंजेरिया पोस्ट, जिला ही मनकापुर, गोंडा से बात कर रहे हैं।
0: संदीप जी बात कर रहे हैं, और संदीप जी योग वगैरह कर रहे हैं आप?
2: नहीं मैम, मैम तो नहीं करते, बट योग के बारे में हम जानते हैं और लोगों को मतलब बताते हैं मैम।
0: देखिए जानना अच्छी बात है, मानना भी अच्छी बात है, पर करना भी तो चाहिए।
2: यस मैम, करना बहुत जरूरी है, योग करने से बहुत सारे फायदे हैं।
0: क्या क्या फायदे होते हैं?
2: शरीर में फुर्तीबाजी और हर रोग से मतलब बहुत आराम मिलता है मैम।
0: और
2: मैम बहुत सारे फायदे हैं, मैं बता नहीं सकता मैम।
0: बहुत सारे फायदे हैं, यानी हम मेंटली स्ट्रांग बनते हैं ना, मानसिक स्थिति अच्छी रहती है, हम अच्छा फील करते हैं, कंसंट्रेशन रहता है, फोकस रहता है,
2: आलस दूर होता है मैम, बहुत सारे
0: आलस दूर होता है। बिल्कुल हमें योग करना चाहिए। देखिए फायदे हमें हर चीज के पता होते हैं, पर हमें उसे जीवन में भी लाना चाहिए।
2: यस मैम, और 21 तारीख को एक दिवस भी आने वाला है, इसीलिए सब लोग कहना चाहूंगा कि योग अपने जीवन में जरूर लाए मैम, योग करना बहुत
0: योग बिल्कुल लिखे। और संदीप जी हम भी आपसे गुजारिश करेंगे कि या तो 21 तारीख से
2: बिल्कुल हम करेंगे मैम।
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आज से
2: अगर हम आज योग करेंगे तो ये इसका फायदा हमें बुढ़ापे में भी दिखेगा मैम, जब हमारा उम्र बढ़ने लगेगा मैम तब भी असर दिखेगा मैम,
0: इसीलिए तो सबको योग करना चाहिए। और आज से आप भी सोच लीजिए योग जरूर करेंगे, ठीक है?
2: यस मैम, यस मैम।
0: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमसे बात करने के लिए, ऐसे ही कॉल करते रहा कीजिए। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनता योग पर, और किस तरीके से हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है योग, इस पे बात कर रहे हैं। दोस्तों हमारे अगले साथी जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार।
3: हेलो मैम नमस्ते।
0: नमस्कार, कहाँ से बात कर रही है, क्या नाम है आपका?
3: मैं मोना साली में ग्राम पिथौरा को श्रृंगीनाथ जिला बस्ती से बात कर रही
0: हूँ। बस्ती से बात कर रही है मोना जी?
3: जी नहीं शालिनी।
0: अच्छा शालिनी जी बात कर रही हैं। तो शालिनी जी ये बताइए, अभी 21 तारीख को हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है
3: जी,
0: तो आप क्या योग करती हैं?
3: जी मैम करते हैं, कभी कभी कर लेते हैं, मेरी छोटी बहन भी करती है, पापा अच्छा।

0: करते हैं।
1: आपके घर में सब लोग करते हैं मतलब? तो आप लोग क्या सारे एक साथ बैठ के योग करते हैं?
0: जी मैम।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कौन कौन से आसन या प्राणायाम करते हैं आप लोग?
0: जी मैम, पहले तो सूर्य नमस्कार करते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, सूर्य नमस्कार करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको कुछ आसन प्राणायाम पता है और आप उनको करती हैं। अपने जीवन में आपने जोड़ रखा है, तो क्या क्या फायदे मिलते हैं आपको आप सूर्य नमस्कार जब करती हैं तो?
0: मैम, योग करने से हमारा मोटापा घटता है, जो आजकल मोटापा भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तनाव मुक्त रहते हैं, स्फूर्ति आती है शरीर में।
1: जी बिल्कुल सही बात है शालिनी जी। और साथ ही आपको ना जब यहाँ कॉल करना चाहिए तो अपने रेडियो की आवाज थोड़ी सी स्लो कर लेनी चाहिए, जिससे क्या होता है ना आवाज आपकी दो बार तीन बार हमें मिलती है।
0: जी मैम।
1: है ना, तो रेडियो की आवाज कम कीजिए, तब आप हमसे बात करेंगी तो हमें और अच्छा लगेगा, और साथ ही आप योग करेंगी तो हमें और ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा सूर्य नमस्कार करती है योग, इसके अलावा क्या क्या फायदे मिलते हैं आपको जो आप बाकी के आसन करती हैं इनसे? क्या क्या आपको फायदे मिलते हैं?
0: सही रहता है।
1: हाँ, और
0: भूख लगती है।
1: हाँ, और नींद अच्छी आती होगी। हाँ, और जोड़ों में दर्द नहीं होता मान लीजिए, जैसे नॉर्मली क्या होता है ना बैक पेन वगैरह होता है।
0: योग ऐसा चीज है जिसे करने से जोड़ों में दर्द कुछ भी नहीं होता।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है, और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है ना, लचीलापन रहता होगा शरीर में, एनर्जी आती होगी, और जो लोग योग करते हैं उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है, उनको बीमारी कम होती है।
0: जी मैम।
1: हाँ बिल्कुल सही बात है शालिनी जी, ऐसे ही आप योग करते रहिए और बाकी लोगों को भी कराते रहिए। हमारे पास कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनता योग, तो हमारे अगले दोस्त जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे भी बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार, हेलो जी नमस्कार।
2: जी नमस्कार,
1: कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका?
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: राकेश जी शिमला से बात कर रहे हैं, कैसा मौसम है?
2: शिमला का मौसम साफ है और बहुत अच्छा मौसम है, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, और इस ठंडी ठंडी हवा में आपका प्रोग्राम भी चल रहा है।
1: बहुत अच्छी बात है कि आप ठंडी ठंडी हवा में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, साथ ही अगर आप इसी ठंडी ठंडी हवा में योग भी करें तो और अच्छा लगेगा, है ना?
2: जी जी जी, वो तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि 21 जून को जब योग दिवस आएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो योग दिवस मनाया जाता है तो ये बहुत अच्छा है, जब 2014 के बाद जो है मोदी जी ने जो योग का शुरुआत किया था 2021 में।
1: जी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत,
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 में घोषित किया था। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सिर्फ ये हमारे लिए त्योहार नहीं है, इसको हम ये नहीं कि जो नहीं कि आप 21 जून को योग करें, लेकिन योग जो है सुबह शाम करना चाहिए, और इससे क्या होता है, इससे जो है हमारा मन और तन स्वस्थ ठीक रहता है। अगर ये अगर आपका मानसिक रोग के लिए योग जो है ठीक रहता है, और शारीरिक के लिए रहता है, और मानसिक के लिए भी एक रोग रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ऋषि मुनि का ये तपस्या है, जो जब ऋषि मुनि तपस्या करते तो पर यही तपस्या करते योग जो है।
1: जी बिल्कुल, ध्यान ही तो लगाते थे वो, है ना, अपनी सांसों पे ध्यान लगाते थे, वो मेडिटेशन करते थे। जी राकेश जी, आप करते हैं क्या योग?
2: करना ईश्वर की प्राप्ति करना है, जैसे हमारे मुस्लिम समाज जब नमाज पढ़ते हैं, जिसको हम मुस्लिम समाज में नमाज बोलते हैं, और हमारे जो है वो योग की साधना है, वो भी क्या बोलते योग की, उसको भी हम योग दृष्टि से देखा जाए तो फिर हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है।
1: जी बिल्कुल, एक तरीके की प्रार्थना ही है जब हम योग भी करते हैं तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे बात करने के लिए, ऐसे ही कॉल करते राकेश जी। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनते योग पर। दोस्तों योग जो शब्द है ना, वो संस्कृत के युज धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जोड़ना, शरीर को मन से जोड़ना, मन को आत्मा से जोड़ना, और आत्मा को परम चेतना से जोड़ना। चलिए अपने अगले दोस्त से भी कर लेते हैं बात। हाँ जी नमस्कार।
3: जी नमस्ते मैम।
1: जी कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? निशांक बोल रहे हैं। जी जी निशांक जी, ये बताइए क्या आप योग करते हैं, क्या आपकी दिनचर्या में योग जुड़ा हुआ है?
3: जी जी मैम, योग सुबह करते हैं, और थोड़ा ज्यादा देर नहीं, 5 मिनट करते हैं, जिससे हमारा

0: माइंड फ्रेश हो जाए एकदम।
1: बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब से आपने योग करना शुरू किया, कब से कर रहे हैं आप ये योग?
0: योग मैम हो गया होगा मुझको लगभग 6-7 महीने हो गया होगा।
1: 6-7 महीने, तो क्या फर्क देखा आपने, क्या डिफरेंस आया जब आपने योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया उसके बाद?
0: मैम योग करने से मैम जैसे कि आप सुबह, जैसे अगर सुबह उठे और उठने के बाद थोड़ी देर, बस 5 मिनट ज्यादा नहीं, मन को एकदम शांत करके और बैठ जाए और थोड़ा सा व्यायाम करें और अपने आप को ये आँख बंद करके ध्यान अपना भगवान ईश्वर में लगाए और थोड़ा सा योग करें मैम, आप बहुत ही सुख और बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी।
1: जी बिल्कुल सही बात है, हम बहुत अच्छा, बहुत लाइट फील करते हैं ना, और लगता है जैसे एनर्जी बहुत सारी आ रही है जब हम योग करते हैं तो।
0: जी, और बाहर की जितनी भी परेशानियां, जितनी भी टेंशन, जितनी भी थकान रहती है सब भूल जाएंगे मैम।
1: जी बिल्कुल, सारी थकान खत्म हो जाती है, और किसी चीज से अगर एंग्जाइटी हो रही है, किसी चीज की चिंता सता रही है तो वो सब भी खत्म हो जाता है।
0: जी
1: जब हम मेडिटेशन करते हैं।
0: मुझे योग से बहुत ज्यादा प्यार है मैम।
1: बहुत अच्छी बात है। तो निशांक जी, आप अकेले ही अपने घर में योग करते हैं या सब लोग करते हैं?
0: मैम सब लोग करते हैं मैम, लेकिन सब एक साथ नहीं करते हैं,
1: सब अलग अलग करते हैं
0: अलग अलग।
1: अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि आपके घर में सभी योग करते हैं, अलग अलग ही करें पर करें एटलीस्ट, है ना, बहुत अच्छी बात है।
0: कोई अपना चलता है तो कोई अपना बैठ के करता है, कोई अपना अपने ढंग से, जैसे
1: जी जिसको जैसा योग करने का। और योग में तो बहुत सारे आसन हैं जिसमें आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जिसको जो योग पसंद आ रहे हैं वो वाले आसन कर सकते हैं।
0: जी
1: बहुत बहुत शुक्रिया निशांक जी हमसे बात करने के लिए, ऐसे ही कॉल करते रहा कीजिए। दोस्तों वक्त हो चला है अब छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या, आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
3: और भाई साहब क्या हाल है
4: यार? हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया, इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे, बगल में डस्टबिन है।
3: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
4: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका है।
1: दोस्तों ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं हमारे दोस्त जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार।
5: नमस्कार मैम।
1: जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका?
5: गोंडा जिला, जितेंद्र पांडे।
1: जितेंद्र जी बोल रहे हैं गोंडा से। जितेंद्र जी, तो आपकी दिनचर्या में किस तरीके से शामिल है योग, क्या आप योग करते हैं?
5: जी योग भी आज से मैं विकलांग हूँ, योग नहीं करता हूँ, लेकिन सुबह 4 बजे उठकर स्नान नहा धोकर क्रिया करके अपना पूजा पाठ करते हैं।
1: ठीक है, ये तो अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है कि आप योग नहीं कर सकते। योग, ध्यान लगाना भी एक योग है, प्राणायाम करना भी एक योग है, जो आप बैठे बैठे कर सकते हैं। आप बैठे हुए हैं, आप अपनी सांसों पे ध्यान लगा सकते हैं।
5: नाक वाला है, बंद करके करते हैं।
1: हाँ ये अच्छी बात है कि कपाल भाती है, अनुलोम विलोम है, ये सारे आप प्राणायाम कर सकते हैं।
5: जी
1: जी, तो क्या आप इन्हें रेगुलरली करने की कोशिश करते हैं, कभी किया आपने?
5: जी 4 बजे मैं उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके करता हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है जितेंद्र जी कि आप इस तरीके का काम करते हैं, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे और आपका जीवन अच्छा चलेगा आगे।
5: जी
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
5: मैं बताऊंगा कि योग करने से शरीर स्वस्थ रहेगा।
1: जी बिल्कुल सही बात है, आप खुद तो योग करें ही, साथ ही अपने आस पास वालों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को भी बोले कि आप योग करें।
5: जी
1: और सब साथ मिलकर योग करें तो बहुत अच्छा लगे।
5: जी
1: है ना जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही आप हमें कॉल करते रहा कीजिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं योग की और किस तरीके से योग हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों योग कोई भारी भरकम शब्द भी नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा कसरत करनी है, घंटों पसीना भी नहीं बहाना। चलिए अपने अगले दोस्त से पहले बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार।
6: जी नमस्कार
1: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका?
6: जी मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बोल रहा।
1: हाँ जी त्रिपुरा से बोल रहे हैं अविनाश जी।
6: जी जी जी बिल्कुल।
1: हाँ जी अविनाश जी, तो कैसा है त्रिपुरा का मौसम?
7: त्रिपुरा का मौसम तो बहुत ही सुहाना है।

0: जिम रिम जिम बारिश का आनंद उठा रहे हैं और साथ साथ आपका कार्यक्रम का भी आनंद उठाते हैं और खास करके इस कार्यक्रम में तो हिस्सा लेना मुझे लाजमी बनता है क्योंकि इसमें जिस प्रकार से हम सभी के लिए मौका मिलता है कि अपना सुझाव यहाँ पर दे पाए तो और यहाँ पर से भी जो श्रोता सुझाव देते हैं तो हम सभी अपने जीवन में उसको अगर फायदेमंद साबित कर सके तो और भी फायदा होता है हम सब।
1: जी बिल्कुल सही बात है। और आप आकाशवाणी अयोध्या को सुनते हैं त्रिपुरा में रहकर, ये और अच्छी बात है।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: और हम सब जी आप ये बताइए क्या आप योग करते हैं, क्या त्रिपुरा की बारिश के बीच में आप योग कभी करते हैं?
0: जी जी योग तो देखिए हम सबके दिनचर्या में तो हर दिन ही रहता है और मैं अगर अपनी बात करूँ तो शारीरिक चर्चा तो पूरे दिन भर ही लगा रहता है क्योंकि देखिए मैं तो जो काम करता हूँ उसमें काफी उसमें बल प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि वो मैं जो काम करता हूँ वो है लोगों के घरों की सुरक्षा यानी कि जो वेल्डिंग का काम है इसमें करते हैं। अच्छा। और खास करके सुबह उठ के देखिए क्योंकि दिन भर का जो काम करना पड़ता है इसलिए हम सभी को मैं 5 बजे सुबह उठता हूँ और आधे घंटे अपने योग के ऊपर ध्यान लगाता हूँ तो बहुत ही मतलब दिन भर का जो उसमें मन बैठता है काम करने में भी और हम सबके शारीरिक में भी शारीरिक तनाव भी दूर होता है और मानसिक हम तनाव में हम पूरी तरह मुक्त होते हैं। और सुबह करके देखिए योग करना बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें देखिए हवा का जो प्रभाव रहता है वो बिल्कुल स्वच्छ हवा हम सबको मिलता है। हाँ, और सुबह खाली पेट आते हैं तो योग करना बहुत ही फायदेमंद होता है।
1: जी बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अच्छी बात है अविनाश जी कि आप करते हैं योग और साथ ही आपको उसके बेनिफिट्स भी पता है, उसके फायदे भी पता है ना। और ये बताइए कि आपके परिवार के लोग भी करते हैं योग?
0: जी जी जी बिल्कुल करते हैं, मेरे परिवार में मैं दो ही लोग हैं, मैं और मेरे पिताजी, तो पिताजी भी करते हैं।
1: अच्छा आप दोनों लोग योग करते हैं, तो क्या आप लोग साथ में योग करते हैं या पिताजी अपने कुछ प्राणायाम कर लेते हैं, आप पूरा योग करते हैं?
0: पिताजी मुझसे भी जल्दी उठ जाते हैं, वो 4:30 बजे उनका नींद खुल जाता है।
1: अच्छा अच्छा, वो 4:30 बजे उठ के उसके बाद सबसे पहले योग ही करते हैं?
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: बहुत अच्छी बात है।
0: योग करते हैं, वो योग करने के बाद ही अब अपना जो दिनचर्या जो काम रहता है वो थोड़ा बहुत करते हैं।
1: जी बहुत अच्छी बात है, और इससे बहुत सारे फायदे रहते हैं हमें कि हमारी नींद भी बेहतर होती है। अगर जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं ना जिनको रात में सोने में दिक्कत होती है, वो योग करें बहुत अच्छा रहेगा, उनको बहुत अच्छी नींद आएगी।
0: देखिए और आजकल देखिए मैं युवा को ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए हम सब सोशल मीडिया या फिर मोबाइल जितना समय देते हैं इससे इतना समय ना देखिए, कम से कम इससे अगर हम आधे घंटे भी निकाल सके सोशल मीडिया से आधे घंटे कम करके योग के ऊपर अगर ध्यान दें तो हम सब के लिए शारीरिक और मानसिक तनाव से हम दूर यहाँ से फायदे उठा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सही बात है अविनाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमें। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं योग हमारी दिनचर्या का किस तरह हिस्सा बनते जा रहा है इस पर। दोस्तों जब योग को आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं ना तो कुछ खास नहीं करना होता है, कुछ खास मेहनत नहीं करनी होती, बस सुबह उठना होता है, 5-10 मिनट लंबी और गहरी सांसें लेनी होती है। हम करेंगे योग पर और बात, पर उससे पहले बात कर लेते हैं अपने दोस्त से। हाँ जी नमस्कार।
2: नमस्कार मैडम, मेरा नाम शशांक सिंह है।
1: हाँ जी शशांक जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ
1: जी।
2: हम लोग अभी बाहर रहते हैं।
1: अच्छा
2: प्रोग्राम सुनते रहते हैं मैडम, इसलिए आज आपका चर्चा का विषय अच्छा मुझे लगा, इसके लिए मैं सोचा फोन करता हूँ।
1: हाँ जी,
2: तो दोपहर से मैं मैडम आपका आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है।
1: हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं शशांक जी कि योग हमारी दिनचर्या का किस तरह हिस्सा है, हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनता है योग, तो आपकी दिनचर्या में किस तरह जुड़ा हुआ है योग शशांक जी?
2: योग हमारा दिनचर्या, हमारा दिनचर्या स्टार्टिंग योगा से होती है सुबह।
1: अच्छा,
2: सुबह हम लोग उठते हैं, दैनिक दिनचर्या करने के बाद थोड़ा 10-15 मिनट लाइट योगा स्ट्रेचिंग वगैरह करके ऑफिस निकल जाते हैं।
1: अच्छा,
2: उसके बाद जो भी योगा होता है शाम को मैडम मैक्सिमम टाइम। हाँ। बस 2 दिन है योगा के लिए हमारे एकदम फिक्स है, सैटरडे संडे।
1: अच्छा, वीक में आपने 2 दिन फिक्स कर रखे
2: हैं? यस मैडम, पूरा टाइम फिक्स है।
1: उसी में आप योग करते हैं
2: सुबह?
1: यस
2: मैडम, डेली।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने योग को आपने अपनी दिनचर्या में शामिल कर रखा है। और आपको क्या लगता है क्या क्या फायदे हो रहे हैं आपको, आपने जब से दिनचर्या में शामिल किया है योग को तब से?
2: डेली प्राणायाम करने से मैडम हमारा बॉडी एकदम रिलैक्स रहता है, नींद आने के लिए प्रॉपर नींद है, मेडिटेशन कुछ भी उसके लिए भी बहुत अच्छा है।
1: बहुत अच्छी बात है कि आप उन्हें कर भी रहे हैं और आपको उनके फायदे भी पता है, और आप रेगुलरली अगर करेंगे तो आपका क्या है कि वेट भी मैनेज रहेगा, है ना, पोस्चर इम्प्रूव होगा, जैसे एज के साथ लोगों के पोस्चर इधर उधर होने लगते हैं।
2: यस मैडम,
1: है ना, वेट गेन हो जाता है, तो ये सब मैनेज हो जाएगा अगर आप योग करेंगे तो।
2: मैडम डेली करते हैं, उसी से मैनेज हो रहा है।

0: है, हम लोग हमारा शेड्यूल इतना टाइट रहता है, मॉर्निंग में 4 o'clock उठ के 20-30 मिनट हो गया उसके बाद ऑफिस।
1: अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर शाम का जो आपके पास टाइम बचता है आप उस पे कर पाते हैं?
0: शाम को रूम पे मैडम 6 o'clock आने के बाद जो भी 10-15-20 मिनट योगा उसके बाद वॉकिंग निकल गया। वॉकिंग के लिए 1 hour फिक्स है।
1: बहुत अच्छी बात है कि आप 1 hour वॉकिंग कर रहे हैं, जिससे क्या है पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जा रही है आपकी।
0: यस मैडम, यस मैडम।
1: और साथ में आप जब ऑफिस पे रहते हैं तब भी आप छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकते हैं, जिसमें आप थोड़े से
0: थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह 2-2, 5-5 मिनट का, 2-2 मिनट
1: आप ये बीच बीच में ऐड करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: हम लोग ऑफिस में भी थोड़ा बीच बीच में योगा सिखाते हैं, टेबल योगा और ये चेयर योगा।
1: बिल्कुल, डेस्क जॉब में आपको ये सब करना चाहिए।
0: हर 15-20 मिनट में 10-10 मिनट का ब्रेक हो जाता है।
1: जी बहुत अच्छी
0: बात। हर 2-3 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट ब्रेक लेके अपना।
1: ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी हमसे बात करने के लिए, और ऐसे ही कॉल करते रहा कीजिए आप।
0: थैंक यू मैडम, थैंक यू।
1: तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनता योग। तो दोस्तों जब हम बहुत सारे आसन करते हैं, बहुत सारे प्राणायाम करते हैं, उससे हमें बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए अपने किसी अगले दोस्त से बात करते हैं, पर दोस्त से बात करें उससे पहले आपको हम बताते हैं कि आपको अगर दिनचर्या में शामिल करना है तो करना क्या होगा। बस काम के बीच में, पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लीजिए, 1-2 आसन कर लीजिए। हमारे अगले दोस्त जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार।
2: नमस्कार मैडम जी,
1: कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका?
2: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से।
1: फर्रुखाबाद से बात कर रहे हैं सतीश जी?
2: जी जी, धन्यवाद मैडम जी।
1: सतीश जी तो कैसे हैं आप?
2: मैं बढ़िया हूँ।
1: सब बढ़िया है,
2: आकाशवाणी विद्या केंद्र।
1: बहुत अच्छी बात है कि आप हमें सुन रहे हैं, और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं ना वो है हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनता योग। तो सतीश जी ये बताइए, क्या आप योग करते हैं?
2: अरे मैडम जी मैं तो योग करते थे, मैं जैसे स्कूल में पढ़ने जाते थे तो मैं कुछ भी जब सवाल वाल पूछे जाते नहीं बता पाते तो मास्टर भी मुझे हाथों में ईंट पकड़ा देते थे, मुर्गा बना देते थे। तो ऐसा ये बहुत कठिनाई था, और ये पर्यटक करते थे चलने के लिए दौड़ने के लिए, तो सब कुछ मास्टर ने करवाया था, बहुत मार्टर।
1: बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो आपके टीचर्स आपको सिखा रहे थे कि आपको फिजिकली स्ट्रांग बनना है ना, शरीर से शारीरिक रूप से आपको स्वस्थ बनना है, तभी आप वो सब कर पाएंगे, है ना?
2: तो मुर्गा बना देते 15-15 मिनट के लगता भी वो लेकर जाता था मेरा।
1: हाँ ये भी बात सही है, पर सतीश जी तो क्या आपने उससे सीखा, और आने वाले समय में क्या आप अभी भी फिजिकल एक्सरसाइज योग वगैरह करते हैं?
2: अरे मैडम जी मैं कम से कम 1 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, ये साइकिल 1 किलोमीटर चला लो तब एटका हो जाता है।
1: अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है।
2: सुबह उठ कर जाओ साइकिल पकड़ो
1: हाँ।
2: और कहीं भी घूम जाओ 1 किलोमीटर, शरीर की फुर्ती आ जाती है।
1: बिल्कुल सही बात है, और ये करना भी चाहिए थोड़े थोड़े समय में, कहीं ना कहीं वो आपके शिक्षकों की ही देन है कि आज भी आप अपने शरीर को लेकर के, शरीर की स्वस्थता को लेकर
2: चाहिए। तो अपना साइकिल जो बहन होगा साइकिल वगैरह होगी वो चला लो 1 किलोमीटर में
1: हाँ।
2: तब आ जाता है कि नहीं मैडम?
1: जी जी बिल्कुल सही बात है सतीश जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने ऐसे ही आप कॉल करते रहा कीजिए। जी बिल्कुल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनता योग। तो इसमें देखिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस सुबह उठना है, 5-10 मिनट लंबी गहरी सांसें लेनी है, काम के बीच में या पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेने हैं, या फिर कोई प्राणायाम ही कर लेना है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखने के लिए वक्रासन या ताड़ासन भी करना है, साथ ही दिन भर स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए रात में सोने से पहले थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेना है, और इससे जो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, साथ में डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन सब इम्प्रूव होगा, यानी ओवरऑल बॉडी का एक्सरसाइज है योग। तो दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, पर जाने से पहले बता दें कल के कार्यक्रम में क्या कुछ है खास। कल चर्चा होगी हर गोविंद सिंह जयंती पर, साथ ही स्थान सेगमेंट में है न्यूजीलैंड का वेलिंगटन शहर, उसके बाद है शब्दावली। तो इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त मंजलि सिंह को इजाजत, नमस्कार।
3: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
4: अरे मास्टर जी एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए?
3: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
4: हैं मास्टर जी ये NPS संचय क्या है?
3: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रूपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
5: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट

सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com

0: युवा साथी अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युव वाणी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं अमरनाथ और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।
4: कर जमी के पढ़ाई हमार ललना लिया या

0: है तो टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोकरंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोकरंग कार्यक्रम।
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक

कार्यक्रम लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और अब आइए सुनते हैं अरुण कुमार कोरी और साथियों की आवाज में ये किसानी गीत।

ओरिया अरे कानवा पे, अरे कानवा पे हलावा उठाई के, अरे कानवा पे हलावा।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91-61-877-347।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ेया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com, ayodhyaakashvani@gmail.com।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे। उसके पश्चात 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। समाचारों के लिए कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
1: सेंटकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मिंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमएसीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रेडल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोबरी, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस समय विवाटेक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।

0: Paris for the 10th edition of VivaTech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
1: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
2: रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई है।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया है कि 62,370 मेट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले तीन दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। बम्बई शेयर बाजार का संविधि सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब लीजिए सुनिए अलका याग्निक और शैलेंद्र सिंह की आवाज में प्रोग्राम का अगला गीत। फिल्म का नाम है सपने साजन के। गीत समीर का है, संगीत है नदीम श्रवण का।

आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः नवदेहल्यां प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इत्यस्यान्तर्गतं 2400 कोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहकाणां वितरणं करिष्यति। नवदेहल्यां योजनायाः विषये प्रसारमाध्यमान् संबोधयन् श्रम रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडवीयः अवदत् यत् गतवर्षस्य ऑगस्ट मासात् आरभ्य 63 लक्षतोधिकाः कर्मचारिणः PMBVRY इत्यस्यान्तर्गतम् औपचारिक कार्यक्षेत्रे आनीताः सन्ति। येषु प्रायः 30% महिलाः सन्ति। सः इतोपि अवोचत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं प्रोत्साहिताः 80% अधिकाः संस्थाः 25% न्यूनाः लघुद्यमाः अपि सन्ति इति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य उक्तवान् यत् भारतस्य सांस्कृतिक धरोहरस्य संरक्षणं संवर्धनं च नवोत्साहेन वर्धमानम् अस्ति। सामाजिक अन्तर्जाल माध्यमेन प्रकाशिते सन्देशे तेन उक्तं यत् विरासत भी विकास भी विरासततः अपि विकासोपि इति दृष्ट्या प्रेरिताः प्रयासाः जनान् भारतस्य सनातन परम्पराभिः पुनः संयोजयन्ति इति। आगामिषु 4-5 दिनेषु तेलंगाना ओडिशा झारखंड बिहार छत्तीसगढ़ इत्येतेषु केषुचित् भागेषु नैऋत्य प्रावृतः अग्रे गमनाय परिस्थितिः अनुकूला अस्ति इति भारतीय ऋतुविज्ञान विभागः अवदत्। ऋतुविभागानुगुणं असम मेघालय उपहिमालयीय पश्चिम बंग क्षेत्रं सिक्किम राज्येषु च अग्रिमेषु 4 दिनेषु महतीतः अतिमहती वृष्टिम् अनुवर्तितुं शक्नोति इति अनुमन्यते। प्रियाः श्रोतारः अन्ते क्रीडा वार्ताः। FIH महिला नेशंस कप हॉकी स्पर्धायां भारतदलं उरुग्वे देशं 3-2 इति अंतरालेन पराजितवत् उपांत्य चक्रं प्रविष्टं च। अयं भारतस्य निरंतरं तृतीयः विजयः अस्ति। तिसृषु स्पर्धासु विजयं प्राप्य भारतदलं पूल ए इति मध्ये शीर्षस्थानं प्राप्तवत् तथा उपांत्य चक्रं प्रविष्टवत्। उपांत्य चक्रे भारतदलस्य सामुख्यं चिली कोरिया देशयोः मध्ये भाविना स्पर्धायाः विजेतृदलेन सह भविष्यति। फीफा विश्व चषक क्रीडायाम् अद्य रात्रौ संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य अटलांटा क्रीडांगणे ग्रुप ए क्रीडायाम् चोकोस्लोवाकिया देशः दक्षिण अफ्रीका देशेन सह स्पर्धिष्यते। क्रीडा रात्रौ 9:30 आरभ्यते। पश्चात् स्विट्जरलैंड देशः संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य लॉस एंजलिस क्रीडांगणे रात्रौ 12:30 ग्रुप बी क्रीडायां बोस्निया हर्जेगोविना दले सम्मुखी भवतः। फीफा विश्व चषक स्पर्धायां कोलंबिया देशस्य विजयः इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596240042 और 7800037222।
1: कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं रत्नेश द्विवेदी और साथियों की आवाज में ये लोग।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
0: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसान वाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।
3: हे बहार, बहार।
4: और अब आइए सुनते हैं शीतला प्रसाद वर्मा और साथियों को।

0: शीतला प्रसाद वर्मा और साथियों के गाए इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव की अब यहीं पर समाप्त होता है।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के, हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल

0: भारत संतोष
1: पंचो जय हिंद। विमला हाँ, देखा आज बिफे है और बिफे के दिन होते हैं अपन सजीव फोन कार्यक्रम किसान हेल्पलाइन जेम अपन फोन करके अपने समस्या के समाधान करते हैं।
2: बिल्कुल, अपने बीच में मौजूद है प्रोफेसर सीताराम मिश्र जी।
1: हाँ, और आज बात हुई मौसम और कृषि के, लेकिन बात बत कही आगे बढ़े और डॉक्टर साहब के कार्यक्रम में स्वागत की जाए वो करे पहले पंच का ही बता दी जाए कि पंच देखो भाई पीएम किसान योजना जो है ना ये डिजिटल समाधान के जरिए किसान का सशक्त बनावत है।
2: बिल्कुल।
1: और ये योजना के 23वीं किस्त जून 2026 के आखिरी तक जारी होने की पूरी उम्मीद है।
2: और यह नहीं है भैया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दुनिया का सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जोन डेबिट आधारित आय सहायता योजना में से एक बटे, और ये किसान का के जोन आर्थिक की सुरक्षा है वो का मजबूत करता है भारत सरकार की एक अहम पहल है।
1: हाँ, और पीएम किसान के तहत पात्र किसान परिवार का सालाना 6,000 के आर्थिक मदद मिलत है, क्योंकि 2,000 के 3 बराबर किस्तन में दिन जाते है। ये मदद से हमारे जो पंच हैं किसान पंच हैं
2: सीधे लाभ
1: मिलते हैं उनका, और खाता में सीधे पैसा पहुंचते हैं।
2: बिल्कुल।

0: देखो यही मारे हमें सबका अपन जोन कागज पत्र है सही कराए रहना चाहिए। और पीएम किसान का एक खास बात ये है कि डिजिटल नियमों का जो शक्ति है वो का अपने का उसे पालन करे का है और 100% भुगतान सिर्फ वही लाभार्थी का किन जाते हैं जिनका जो ई केवाईसी है वो पूर कर लिंक बा और जिनके जगह जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक बट।
1: हाँ बराबर खाता भाई चलक चाहिए और ई केवाईसी समय समय पर ही पंच का करावे का चाहिए ताकि पता रहे कि हाँ जो पैसा जा रहा है सही जगह जा रहा है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन देखो बात जहां तक अपने सजीव फोन इन कार्यक्रम किसान हेल्पलाइन के है तो बिमला हर केहू के मन में यह शायद यही है ना कि बहुत गर्मी पड़त है,
0: बिल्कुल
1: उमस बहुत है, हर क्यों गर्मी चाहे 1-2 डिग्री के हर्थ पर्त हुए लेकिन रोज लागत है लोगन का कि आज बहुत गर्मी है।
0: बिल्कुल रहाल बेहाल।
1: और हर क्यों के मन में एक बात यू रहत है कि पानी कब बरसी, मौसम कब ठंडा हुई,
0: खास करके अपन किसान पंच।
1: हाँ तो आज हमार सब का सौभाग्य भी है कि अपने कार्यक्रम में जो मौसम विज्ञान के डॉक्टर भैया है जोन हमें सबका रोज मौसम बतावत है जोन अब हम सब बताई थे पंच का
0: वो नहीं
1: अपने कार्यक्रम में आवा है प्रोफेसर सीताराम मिश्रा भैया,
0: ये विभागाध्यक्ष हैं मौसम विज्ञान विभाग आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से अपने सबका मौसम की जानकारी वहीं से मिला था।
1: हाँ और पंच इनसे मौसम के बारे में बढ़िया जानकारी ले सकते हैं और आज के जो विषय है बदलता मौसम और हमारी कृषि, बस पंच का फोन मिलावे है। हमारा जो फोन नंबर है 73-76-80-40-90
0: यानी 7376-80-40-90 पे सीधे डॉक्टर भैया से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं पंच।
1: और हमारा फोन लाइन खुल चुकी है और 6:45 से 7:15 तक अपनी कार्यक्रम चली। तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपके स्वागत है और स्वागत के साथ साथ जैसे की हमारे सबके मन में ये है कि कब पानी बरसी, कब मौसम ठंडा हुई, कहे से गर्मी से तो हर क्यों व्याकुल है
2: जी।
1: तो ऐसा स्थिति में सबके मन में की जरूर है और हर क्यों जानना चाहत है सवेरे क्यों जैसे क्यों समाचार पढ़त है या मोबाइल में देखत है तो मौसम जरूर एकदम ही देखत है कि पानी कब बरसी, मौसम कब ठीक हुई।
2: आपने बहुत समसामयिक प्रश्न किया है क्योंकि मौसम पूर्वानुमान जो है वो फसलों के उत्पादन उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर उपाय है कि अगर हम पहले से पूर्वानुमान को जान जाते हैं तो हमें जो तात्कालिक कृषि योजनाएं बनानी है उसको बहुत मदद मिलती है और आगे की फसलों के लिए हमें क्या प्रबंध करने हैं या किस प्रकार की रणनीतियां बनानी है उसमें भी हमको काफ़ी फायदा मिलता है। तो इस बार का जो मानसून है जिसे आप जानना चाह रहे हैं अलनीनो प्रभाव के कारण प्रशांत महासागर में आपको पता है कि अलनीनो इफेक्ट है और जिस वर्ष अलनीनो होता है उस वर्ष बारिश का चक्र जो है वो डिस्टर्ब होता है।
1: अच्छा।
2: और इसका फर्क जो है यहाँ के मानसून पे डालता है, प्रभाव डालता है और इस बार भी इससे हम नकार नहीं सकते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जो अपने पूर्वानुमान जारी किया है, दो पूर्वानुमान जारी हुए हैं, दोनों पूर्वानुमान में हमारे जो मई में लास्ट में किया है उसमें भी कहा कि टोटल वर्षा का ±10% के आसपास कम होगी, 94% कहा है लेकिन ±5 मतलब जो हमारी मानसूनी वर्षा होने का क्रम है उसमें भी लगभग 5-10% की
1: कमी हो सकती है।
2: तो इसके दृष्टिगत जहां अलनीनो प्रभाव के कारण मानसून के आगमन में विलंब हो सकता है, मानसून के विड्राल भी अर्ली हो सकता है और जो इसका दूसरा स्वरूप है वो ये है कि बीच बीच में जो ड्राई स्पेल होते हैं, मानसून सीजन का मतलब होता है कि उसमें हर वीक में रेन कम या ज़्यादा जरूर होनी चाहिए
1: जी।
2: लेकिन जब अलनीनो बर्स होता है तो उसमें एक बार की बारिश के बाद दूसरी बारिश के बीच जो है ड्राई स्पेल बढ़ जाते हैं, काफ़ी अंतराल पे होता है। तो ऐसे में किसानों को बहुत ही सजग रहना है।
1: वर्षा जो है कुछ दिन अंतराल के बाद
2: खंडित वर्षा के संकेत मिल रहे हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो थोड़ा सा असामान्य हो सकता है
1: जी।
2: तो किसान भाइयों को चाहिए कि वर्षा की मात्रा में कमी और अलनीनो प्रभाव के दृष्टिगत वो प्रजातियों का चयन करते समय लंबी अवधि की प्रजातियों से थोड़ा सा दूरी बनाएं, वो कम अवधि की प्रजातियां या मध्यम अवधि की प्रजातियों का ही ध्यान के चयन करें और इसके अतिरिक्त उनको कम फसलों वाली जो हमारी फसलें हैं खेती की जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, सोवा है, सावा है, कोदो है या अरहर की फसल है मूंगफली की खेती है, सोयाबीन की खेती है, तिल की खेती है, तो इन सब की खेती को विशेष

0: ध्यान देने की आवश्यकता है।
1: जी, पानी बरसात के पानी कम मिली, सिंचाई साधन है तो पंचे अपन जो उन बो के बोल, लेकिन जहाँ पर मौसम आधारित खेती करे के ये ध्यान रखें कि जहाँ कम पानी की जरूरत हो जो उन्हें फसल का वही फसल बो है। लेकिन देखें हमारे पंच के फोन आएगा।
2: हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो, हमें लगता है कि पंच के फोन कट गया है। डॉक्टर साहब, एक बात और इमन हम जोड़ा चाहिए थे कि जैसे समय आ रहा है जो मानसून आवे वाला,
0: जी जी,
1: आप कहते हैं कि धीमा होएगा है, अब हम सब का उम्मीद करें कि कब तक पानी बरसी?
0: देखिए, जो मौसम चक्र में परिवर्तन आया है, पहले हमारे यहाँ दूसरे सप्ताह में 11 से 14 जून के बीच मानसून आ जाता था
2: जी।
0: लेकिन विगत कुछ वर्षों में जो जलवायु परिवर्तन हुआ उसका प्रभाव ये हुआ कि मानसून विलंबित हुआ, पहले 2 दिन, फिर 4 दिन, 6 दिन, अब जो हमारा कई वर्षों का ये 2000 के बाद का आकलन है कि इसमें कुछ एक वर्षों को छोड़ दिया जाए तो मानसून 20 तारीख के बाद ही आया है
1: जी, जी।
0: मतलब 21 से 24 के बीच ज़्यादातर वर्षों में मानसून का आगमन हुआ है
1: जी।
0: तो मानसून अब इसका मतलब है कि 11 से 14 के बीच अगर हम करें 21 से 14 तो लगभग 7 से 10 दिन का अंतराल बढ़ा है, देर से अनसेट हुआ है मानसून का आगमन जो है, 7 से 10 दिन लगभग विलंब हुआ है। और हमने जो जलवायु परिवर्तन का अध्ययन किया उससे पाया कि विगत इधर 20 वर्षों में हमारा लगभग 18 से 22% तक जो है वर्षा की मात्रा में भी कमी आई है। हम इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में तीन हमारी एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं, जिसमें से हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन है जो हमारा बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महराजगंज, देवरिया तक जाता है हमारा क्षेत्र। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ बारिश होती थी। यहाँ की सामान्य वर्षा अगर हम देखें कि 2000 के पहले तो लगभग 1450 मिलीमीटर थी, लेकिन अब वो 1250 रह गई है, लगभग उसमें 22 से 24% की गिरावट हुई है। और लगभग अगर हम ईस्टर्न प्लेन जोन की बात करें जो हमारा फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, बलिया तक है हमारा।
1: अच्छा, तो इससे लंबाई में चला गया।
0: जी जी, तो इधर 1250 मिलीमीटर था और जो हमने 30 सालों का औसत निकाला तो अब 1001 मिलीमीटर हो गया है। तो लगभग यहाँ भी हमारा 24-25% की इसमें भी गिरावट आई है। और लगभग यही ट्रेंड हमारा विंध्यन जोन में है जहाँ की वर्षा हमारा लगभग 1000 मिलीमीटर नॉर्मल था, लेकिन अब वहाँ भी लगभग 20% के करीब वहाँ भी गिरावट आई है, लगभग 850 मिलीमीटर ही वर्षा रह गई है। तो इस तरह से सभी क्षेत्रों में हमारा जो तीनों एग्रो क्लाइमेटिक जोन है ईस्टर्न यूपी की, तो कमोबेश यही स्थितियां पूरे प्रदेश के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में हुई हैं। तो वर्षा की मात्रा में कमी आ रही है। दूसरा, जो हमारे वर्षा के दिन थे साल में वो लगभग 71 दिन थे
2: जी।
0: अब जो वो वर्षा के दिन घट करके 46-47 दिन रह गए हैं। तो जहां एक तरफ वर्षा की मात्रा में कमी हो रही है, वर्षा के दिनों में कमी आ रही है, न केवल मात्रा में कमी आ रही, वर्षा के दिनों में भी कमी आ रही है। वर्षा के दिनों में कि इसका मतलब कि मानसून सीजन में जो फ्रीक्वेंट रेन होती थी लगातार हर वीक में सेवड़ मिलती थी, अब ऐसी स्थिति नहीं। अब जो बारिश होती है तो काफी ज्यादा हो जाती है।
1: अब डॉक्टर साहब, पहले जैसे हमने सभी बचपन में ये पता चले कि पानी भर जात रहा है, हफ्ते के एक हफ्ता बूंद नहीं टूटत रही,
0: नहीं, अभी 16-17 सितंबर 2021 में ही लगभग 285 मिलीमीटर बारिश एक ही स्ट्रोक में हो गई है। इसी तरह 10 अक्टूबर 2022 में भी लगभग 190 मिलीमीटर के आसपास बारिश हो गई है और लगातार जल प्लावित हो गए हैं जो हमारे निचले क्षेत्र थे
1: जी जी,
0: यही अयोध्या शहर में ही तमाम क्षेत्रों में नावों से लोगों को पार होना पड़ा। तो ये वर्षा चक्र के बदलाव का ही परिणाम है कि जब जरूरत है तो वर्षा नहीं मिल पा रही है, जब जरूरत नहीं है, जब विड्राल होना चाहिए तो उस समय जरूरत से ज्यादा बारिश होने
1: तो
0: रही।
1: पहले लोग नक्षत्र देखत रहे कि चिरैया है, हथिया है,
2: अब नक्षत्र में पानी बरसा,
1: अब तो कोनो ज्यादा नहीं रहेगा, मतलब कबो कबो के सीधा सर पर जात है, लेकिन कुछ न कुछ उससे संबंध तो है ही है।
2: लेकिन संबंध अपने सबके अपने जो श्रोता है उनसे भी है। तो भाई देखो, आज जो अपन विषय है बदलता मौसम और हमारी कृषि, और विशेषज्ञ भैया मौजूद है अपनी पंचायती में, प्रोफेसर सीताराम मिश्र भैया। तो भाई देखो, हमारे पंच
1: अध्यक्ष है मौसम विज्ञान विभाग आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय।

0: विद्यालय कुमारगंज अयोध्या मा और पंच फोन करके मौसम के बारे में बढ़िया से जानकारी ले सकते हैं कि मौसम जो बदलता मौसम और हमारी कृषि विषय है कि यह मौसम में हम अपन खेती कैसे करी और मौसम के बारे में भी अगर जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं।
1: लेकिन ओकरे ताई हमरे पंच का फोन लगावे के पड़ी 73-76-80-40-90 पे सीधे डॉक्टर भैया से बात हुई।
0: हाँ।
1: तो पंचे फोन लगावा।
2: देखिए अब जहाँ तक हम पूर्वानुमान की बात करें अभी तक जो पूर्वानुमान है लगभग एक सप्ताह तक जो है कोई बारिश होने की संभावना नहीं है।
0: जी जी।
2: और इससे ये होगा कि हल्के
0: 24 तक जो मौसम आवे के है ऐसे एक हफ्ता और हम जोड़ लें।
2: हाँ अब इसके बाद ही जो है हम मानसून के बारे में सोच सकते हैं। तो ये जो हमारा ट्रेंड था आने का 2000 के वर्ष के बाद से
1: जी।
2: अब तक का उससे भी विचलन हो रहा है। किन्हीं वर्षों में हुआ है कि जो जून के लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक तक मानसून आया है तो ऐसी परिस्थितियां इस वर्ष भी जो भौतिक स्थितियां हैं वातावरण की और जो मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है उसके हिसाब से अभी एक वीक तक जो है कोई खास वर्षा नहीं, कहीं स्थानीय स्तर पर कहीं छुटपुट बूंदाबांदी हो सकती है लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं है।
0: जी।
2: तो ऐसी के दृष्टिगत किसान भाइयों को चाहिए कि जब अभी मानसून के आगमन की कोई निश्चित तिथि नहीं सुनिश्चित की जा सकी है और प्री मानसून भी बारिश जो है अभी प्रारंभ नहीं हो पाई है तो हमको खरीफ फसलों की खेती, चूंकि पहले भी कहा गया है कि भारतीय कृषि मौसम का जुआ है
0: जी।
2: तो खरीफ फसलें हैं जो मुख्यतः वो वर्षा पर आधारित होती हैं
1: जी।
2: तो जहां पर हमारे पास सिंचाई के पर्याप्त साधन हैं वहां तो हम अपने हिसाब से व्यवस्था करें क्योंकि सभी किसानों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो धान की पूरी फसल को सिंचाई करके वो कर सकें। तो शुरुआती दिनों में थोड़ा सा सपोर्ट प्रकृति का रहता है, थोड़ा सहयोग मिलता है तो कुछ किसान भी अपनी सिंचाई के स्रोतों से फसल को बचा लेते हैं
1: जी।
2: तो इस तरह से हमारा फसल उत्पादन हो जाता है। तो इन परिस्थितियों में हमें लंबी अवधि की प्रजातियों को चयन नहीं करना चाहिए, हमें कम अवधि की प्रजातियां और उसमें हम बताएं कि जो असिंचित दशा है
1: जी।
2: उनके लिए भी हमारी प्रजातियां हैं जैसे साकेत 4 है, नरेंद्र 97 है, नरेंद्र 118 है, बारानी दीप है, शुष्क सम्राट है, नरेंद्र लालमती है, ये सब प्रजातियां हैं जिनका चयन जो है।
0: सब देखें हमारे पंच के फोन आएगा है
2: जी।
1: हेलो
3: हेलो।
1: हाँ भैया अपन नाम बताओ, मैं कहाँ से बोला था।
3: हेलो शिव कुमार यादव
1: भैया कहाँ से बोला था। शिव कुमार भैया कहाँ से बोला था।
3: फतेहपुरसरैया।
1: हाँ भैया पता मैं डॉक्टर भैया
3: आपको सुना
1: था। बिल्कुल भैया बताओ मैं।
3: अरे बियरन डाले है ना नर्सरी धाने के।
2: हाँ
3: क्लियर हो जाती है, पता नहीं कैसे कहा डाले हो मैं
2: क्या हो जा रही है,
3: नहीं
2: पानी तो अभी जो है थोड़ा सा विलम्ब है गिरने में।
3: हाँ पहली तारीख का डाले ना डॉक्टर साहब।
2: अच्छा अच्छा।
3: हाँ तो अब 20-22 दिन का हो गए भाई।
2: हाँ तो
3: 22 तारीख का 22 दिन का हो जाए, 22 दिन पर नर्सरी लगा चाहिए।
2: हाँ 21 दिन के बाद जो है आप उसको लगा सकते हैं।
3: लगातार पानी है ना बरसे करे।
2: नहीं पानी तो थोड़ा विलम्ब है अभी पानी बरसने में और आपकी नर्सरी अब लगाने की स्थिति में हो गई है तो आप ऐसा है कि क्योंकि जब उसमें जिंक की कमी होती है तभी पत्तियां उसकी पीली पड़ती हैं।
3: तो जिंक और यूरिया मिलाकर डाली।
2: हाँ जिंक और यूरिया अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो उससे आपको ये सुधर जाएगा। ठीक है
3: ठीक है
2: नमस्ते।
1: जी
0: जी धान के प्रजात के बात करते रहे कि कौन कौन धान हम सब यहाँ बोई।
2: जी
1: बिल्कुल। लेकिन ओकरे पहले भैया एक जो ने अपने सबके थोड़ा को रुक के बतियावा जे एक संदेश है।
4: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: जी
0: जी
1: डॉक्टर भैया बात होती रही।

0: प्रजातियों के।
1: हम बता रहे थे असिंचित दशा के लिए हमने प्रजातियों को बताया है, फिर सिंचित दशा के लिए जो शीघ्र पकने वाली प्रजातियां हैं उसमें नरेंद्र 118 है, नरेंद्र 97 है, जैसे इसका नाम है नरेंद्र 118, 118 दिन में हो जाती है
2: जी।
1: नरेंद्र 97 दिनों में, नरेंद्र 80 है, पंतधान 12 है, शुष्क सम्राट है, नरेंद्र लालमती है, ये सिंचित दशा के लिए शीघ्र पकने वाली प्रजातियां हैं, इनका चयन करना चाहिए
0: जी।
1: और मध्यम अवध की भी प्रजातियां हैं, जैसे हमारी सरजू 52 है, पंतधान 4 है, नरेंद्र 359 है, पीएनआर 381 है, नरेंद्र धान 2026 है, नरेंद्र धान 2064, नरेंद्र धान 2065, तो इस तरह से प्रजातियों का चयन करना चाहिए कि जो उनकी मध्यम अवध में हो जाए, 115 से 125 दिनों के अंदर वो पक जाए और आगे की फसल के लिए भी समय से हमारी जमीन भी खाली हो जाए, रबी फसलों के लिए समय से बुआई कर सकें। तो जो वर्तमान स्थितियां हैं उनमें इनका चयन करना चाहिए। और जान रहे हैं कि धान के लिए हम नर्सरी जो लोग डाल चुके हैं वो अपना ट्रांसप्लांटिंग के लिए अपनी तैयारी करें, जिनकी हो गई है 21 दिन के ऊपर की हो रही है, तो चूंकि अब उनकी नर्सरी तैयार है इसलिए अपना रुपाई का कार्य प्रारंभ करें।
0: बिल्कुल, हमारे पंच हैं। हेलो हेलो
3: हेलो,
0: हाँ भैया अपन नाम बताओ।
3: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते भैया, अपन नाम बताओ, कहाँ से बोला था?
3: हेलो
0: भैया, अपन नाम बताओ, कहाँ से बोला था?
3: नाम मेरा अवधेश कुमार है।
0: अवधेश भैया कहाँ से है?
3: मैं बोल रहा हूँ पूरे कट रहे
0: भैया, समस्या जो उन्हें बताओ डॉक्टर भैया सुना था।
3: मैं 1500 का बीज ला के डाला था धान का, और उसका वो बढ़िया दाम लेकिन बढ़िया हुआ था, लेकिन उसका पीला पड़ के खत्म हो गया।
1: पीला पड़ के खत्म हो गया? नहीं, एकदम सूख गया सब पूरा।
3: जी, पूरा जल गया जैसे।
1: नहीं तो क्या पानी ज्यादा गर्म हो गया, आपकी पौध मुलायम थी, किस स्टेज पे कितने दिनों पे जल गया ये?
3: नहीं, पानी ज्यादा नहीं डाला था, पानी बराबर था, जर्मिनेशन बढ़िया हुआ था, हरियाली आ गई थी, बाद में एक इंच का होके उसके बाद मर गया था।
1: नहीं तो
3: लपक लगे,
1: हाँ तो तापमान जब जरूरत से ज्यादा रहेगा, पानी कम रहेगा, पानी खोल उठेगा, तो जो मुलायम कली निकली हुई है वो उसमें जल।
3: सर पानी भी बराबर डाल रहा था, फिर क्या मालूम रोग, कुछ लोग बोल रहे थे रोग लग गया इसमें।
1: अब देखिए, रोग तो जो है खैरा रोग लगता है, अब चूंकि आपकी नर्सरी, चूंकि अब धान के आपको उपचारित किए थे कि नहीं किए थे, जो आपने नर्सरी डाली थी बीज को? अच्छा,
2: देखें नर्सरी डालने के बाद में अवधेश भैया आपके खेत में पानी रहा, भरे रात रहे हो?
3: हाँ, पानी बराबर रहता था, लेकिन जैसे पानी तो एक ही दो दिन में सूख जाता है, तो नमी रहती थी, जब तक जमीन कड़क नहीं होती थी
2: तब सिंचाई करते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, खास करके गर्मी के दिन में सिंचाई हमेशा शाम का करेगा चाहिए, और अगले दिन जब धूप निकले तो पानी न भरा रहा है खेत में, और खास करके नर्सरी में जहाँ पे मुलायम पौधा रहा था। दूसरी चीज, कहाँ से का गलती है, एक तो ये अगर गलती आप किए हो कि पानी भरा रहा हुआ दिन में
1: भरा,
2: तो दोपहर में इतना गर्म हो जाता है पानी कि उससे वो जल सकत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और अगर पानी नहीं रहा है, पानी की कमी से, पानी की वजह से नहीं हुआ है, तो आप अपने खेते के माटी की जांच करा लिए जरूर।
1: नहीं, सारी फसल जल गई है, इससे इनका सिर्फ पानी गर्म हुआ है, तापमान अधिक होने से। वो नर्सरी बहुत छोटी थी और इन्होंने पानी बदला नहीं, दो दो तीन तीन इनको प्रतिदिन सिंचाई करनी चाहिए थी, और शाम के समय सिंचाई करनी चाहिए थी, पानी भरा। हाँ, तो जहाँ तक इनसे गलती
2: भैया, फिलहाल एक आध ध्यान दिए और हमेशा सिंचाई शाम का करें।
3: हाँ
2: हाँ हाँ,
1: ठीक, हाँ वैसे करिए, पानी दिन में भरा बिल्कुल न रखिए, पानी निकाल दीजिए, पानी नहीं रहेगा तो नुकसान नहीं होगा, पानी जब भरा रहेगा छोटे रहने पे तभी नुकसान
2: नमी होगा। नमी हो चाहिए पानी नहीं,
1: हाँ नमी होनी चाहिए, पानी नहीं भरा होना चाहिए।

0: पानी जब भरा रहेगा तो गर्म करके जला देगा पूरी, उसको सरवाइव नहीं कर पाएगी। और आपकी नर्सरी जब बड़ी हो जाए और देखेंगे उसमें कि ऊपर जो है उसके जो पत्तियां हैं पीली पड़ रही हैं, तो उसमें खैरा रोग हो सकता है। अगर खैरा रोग की संभावना रहेगी तो 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 2% यूरिया के घोल के साथ जो है आप 1000 लीटर पानी में बना करके छिड़काव कर सकते हैं। प्रति हेक्टेयर के लिए है, अगर बीघा होगा तो इसके हिसाब से आप 100 लीटर पानी हो जाएगा एक बीघे के लिए। 10,000 वर्ग मीटर के लिए जो है 1000 लीटर पानी में 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 2% यूरिया के घोल में, ठीक है
1: जी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा जैसे बताओगे कि हम ध्यान दीजिए कि जब इतनी तेज धूप हो रही है बाल्टी में पानी रख दो, कहूं रख दो, देखो कितना खोल जा रहा है, और तमाम लोग घर में टंकी लगाए हैं, टंकी पानी छू के देखो हाथ नहीं लगा जाते,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो खेते में तो पानी बराबर भरा है
0: जी जी,
1: तो उसे फसल का नुकसान हो सकता है, इसलिए शाम का करें सिंचाई। डॉक्टर साहब बात जहां तक हमारे फसल के है
0: जी,
1: आप बताइए कि बरसात आपकी कम होने की संभावना है
0: जी,
1: तो बेरन जो पंच के तैयार होगी होगा तो लगाऊ
0: जी जी,
1: लेकिन आगे का आपन प्लानो बदल सकते हैं कि जैसे कि ओकरे जगह कुछ और बो दी?
2: बिल्कुल, लेकिन
0: वो तो देखिए हमें तत्कालिक योजनाएं अपनी आकस्मिक योजना जरूर बना के रखनी चाहिए
1: जी
2: जी।
1: लाउड स्पीकर पर लेकिन देखें फोन आएगा है।
2: हेलो हेलो
3: हेलो,
2: हाँ भैया अपन नाम बता मैं कहाँ से बोला था।
3: हेलो,
2: हाँ भैया अपन नाम बता मैं कहाँ से बोला था।
3: नमस्कार, संदीप यादव से बात हो रही हमारी।
2: कहाँ से बोला था भैया?
3: बस्ती से।
2: भैया बताओ मैं
3: संदीप भैया कह रहे हैं कि हम TRS 26 की नर्सरी डाले थे लगभग 30 किलो
0: जी जी।
3: ये पहला नंबर तो इसका जामिनेशन अन्य धानों की अपेक्षा कम से कम 30-35% कम जामिनेशन होगा।
0: कहाँ से लिए थे बीज?
3: ब्लॉक से
0: लिए थे। तो
3: हमने ब्लॉक से कंप्लेन पहुंचाया अभी, तो बोले कि हाँ उसका भाई जामिनेशन कम था, तो हमने कहा तुम बताया नहीं आप लोग
0: जी जी।
3: तो और फिर नर्सरी जो डाले हैं साभा प्लस ये हम दोनों की लगाने के बाद हमको 6 बीघा लगाना है
0: जी जी।
3: तो इसमें हम ये क्या नाम है सरसों की खाली की मात्रा कब डालें, इसी के लिए हमने फोन किया था। और ये जो और नर्सरियाँ थोड़ा ठीक ठाक रहे इनमें NPK का 19-19 का कितना मतलब छिड़काव करवा दें?
0: ऐसा है कि आप नर्सरी डालते समय क्या डाले हैं, कितना डाले हैं मात्रा?
3: हमने DAP का यूज किया था।
0: अच्छा,
3: नर्सरी डालने से पहले इसमें DAP लगा करके जुताई करा कर फिर उसके बाद।
0: तो आप हल्की यूरिया जो है उसी की टॉप ड्रेसिंग करिएगा जब 10 दिन से ज्यादा की हो जाए तब, और इसके बीच आप कोई भी
3: 15 दिन की हो गई लगभग।
0: हाँ, तो आप एक हल्की ट्रैप ड्रेसिंग यूरिया की कर दीजिए बस।
3: और ये जो नीम की ये सरसों की खली सर,
0: हाँ,
3: तब तक मतलब जो धान लगवाना है उसमें हम डालना चाहते हैं आपकी बात पे, कितना मात्रा कितने एरिया में डाला जाए?
0: नहीं
3: कब
0: आपके यहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र कितनी दूर है?
3: लगभग 25-30 किलोमीटर मान चलिए।
0: हाँ, तो आप एक दिन चले जाइए लगने से पहले, और वो आपको प्रैक्टिकली बता देंगे कि कैसे मिलाना है, कैसे यहाँ पे समय अभाव है कि हम आपको मात्रा कैसे तैयार करेंगे। तो आप वहाँ से चले जाएंगे, हमारे वैज्ञानिक वहाँ पर हैं, वो आपको अच्छे से समझा देंगे कि आपको कब डालना है, कितना डालना है और किस समय डालना है, ठीक है
3: जी।
0: हाँ
1: डॉक्टर साहब, देखे संदीप भैया के जो समस्या रही, हम तो ये कहे कि हर पंच का जिससे धान बोए है तो कहीं से भी ले आवे, तो अगर 2 दिन हम अंकुरण देख ले ही, चेक कर ली जाए पानी में भिगाए के और फिर दबाए के, तो कोनो बुराई नहीं है। कहे से हम अगर अंकुरण प्रभावित होते है तो हमारे आगे फसल का नुकसान हुई, कहे मतलब कि समय हमारे बर्बाद हो जाएगी और फसल साथ साथ बिया भी बर्बाद हुई, तो हमें अंकुरण चेक करके ही बोएगा चाहिए
0: जी जी
1: जी। डॉक्टर साहब हम ही कहा कि जैसन की पंच मौसम आधारित तब पहले बहुत खेती करते रहे, अब जब से सिंचाई के साधन होगा अब धीरे धीरे पंच सिंचाई पर अपने निर्भर होगे, नहर से पानी सिंचाई हो जाते, ट्यूबवेल से

0: जात है और यह तरह से पंच अपन खेती करत है। आप हमारे पंचन का अपनी तरफ से कौन राय दीन चाहिए हैं कि वो खेती अच्छी करें, कैसे समय के भी हमारे पास अभाव है।
1: देखिए, किसान को जो है वो मौसम का जो पूर्वानुमान होता है उसको ध्यान देके ही खेती करनी चाहिए। और जैसा कि पूर्वानुमान के बारे में मैंने बताया कि मानसून की स्थितियाँ बहुत मतलब अच्छी नहीं दिख रही हैं और विलम्ब से मानसून का आंसेट हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में किसान को मक्के की खेती, मक्के के बुआई का सही समय चल रहा है
0: जी,
1: तो उसकी प्रजातियों का सही चयन कर लें, आजाद, उत्तम, प्रगति, गौरव, कंचन, सूर्या या जो भी उनको प्रजातियां उपलब्ध हैं
0: जी,
1: समय से उसकी बुआई कर दें, बुआई रिज में करें। इसी तरह से अरहर की खेती पर विशेष ध्यान दें, नरेंद्र अरहर, मालवीय चमत्कार, राजेंद्र अरहर दो, इस तरह से प्रजातियों का चयन करके नरेंद्र अरहर एक, तो इस तरह की विभिन्न प्रजातियों का चयन करें। तिल की खेती, सोयाबीन की खेती, मूंगफली की खेती, इन खेती पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
0: निश्चित रूप से हम सभी मौसम का ध्यान में रखित है, और तो मोबाइल पे तुरंत आ जाते हैं मौसम की आगे का होने वाला है 24 घंटा में या 2-4 घंटा के बाद भी आ जाते हैं। और आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे पंच का मौसम के बारे में इतना बढ़िया जानकारी दिन का उम्मीद करते हैं, जैसे आप बताए ना हमारे पंच वही तरह से अपन खेती करिए और लाभ उठाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: लेकिन एक प्रस्तुति रही जयंत पटेल के, तकनीकी सहयोग रहा राजकुमार मौर्य का।
0: तो पंचन का ये बता दिन जाए कि आज जो मौसम रहा, मौसम का हाल है,
2: अधिकतम तापमान 39.0 जो उनकी सामान्य से 1.2 डिग्री,
0: न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता अधिकतम रही 78%, न्यूनतम 50% और हवा की गति रही 2.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, दिशा उत्तरी पश्चिमी।
2: पूर्वानुमान है आने वाले 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्का बादल छाया रहे, बरखा होने की संभावना नहीं बटे।
0: तो अब देखें घड़ी इशारा करते हैं कि पंचन से विदा ली जाए। पंचो ओम
2: और विमला का देवनमति
0: जय हिंद।
3: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान,
4: पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक

0: किसानवाणी कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। हमारे आज के शेष कार्यक्रमों में रात्रि 8:15 पर गीत गुंजन, 9:15 पर महफिल गजल और 9:30 पर आप सुनेंगे सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या। ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। कल प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम विवरण, 7:30 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश और 8:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या का समय होगा 8:30 पर। इसके अंतर्गत आज की बात में गुरु गोविंद सिंह जयंती के अलावा ज्ञानी नवनीत सिंह की भेंटवार्ता होगी, गुरु हरगोविंद सिंह का जीवन दर्शन। 9:00 आपके संदेश, आपके गीत, 9:30 पर हेलो अयोध्या और 1:00 सुनिएगा फेसबुक फरमाइशी कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। 11:55 पर आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल। अवधि लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग 12:30 और गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि का समय होगा 2:00 से। दोपहर 2:30 पर ग्रामीण बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम अंगना। इसके अंतर्गत चर्चा होगी संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। साथ ही योगाचार्य दीप शिखा की वार्ता होगी महिलाओं

0: के मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग। शाम 5 बजे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। इसके अंतर्गत चर्चा होगी गुरु हरगोविंद सिंह जयंती पर, साथ ही गीत शब्दावली के अलावा स्थान में जानिएगा न्यूजीलैंड के वेलिंगटन के बारे में। शाम 5:30 पर लोक संगीत, 6:10 पर शाम सुहानी और 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। कार्यक्रम कृषि जगत का समय होगा 6:45 पर। इसके अंतर्गत चर्चा होगी समय का सदुपयोग करें, साथ ही लोकगीत, बाजार भाव, मौसम का हाल के अतिरिक्त डॉक्टर शिप्रा यादव से भेंटवार्ता होगी इस क्षेत्र के लिए धान की उन्नत प्रजाति एवं उनकी विशेषताएं। रात्रि 8:15 पर गीत गुंजन, 9:15 पर महफिले गजल और 9:30 का समय होगा सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या का। ये थी हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: और मेरा बिजली बिल 0 आया, आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
4: PLI है ना?
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
6: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की 101 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विरासत की रक्षा के साथ विकास यात्रा को गति दे रही है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री ने कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को किया संबोधित। कहा, किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक कल आगरा में होगी आयोजित। चीन, रूस और ब्राजील समेत 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। और प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान का 6ठा चरण शुरू। बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूती से चलाने पर दिया जोर। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ग्राम पंचायत डीह के हिंदू खेड़ा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विरासत की रक्षा के साथ साथ विकास यात्रा को निरंतर गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री योगी ने कहा कि आज उन्नाव की कनेक्टिविटी 4 लेन की हो गई है। उन्होंने कहा कि लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे आसपास के जिलों को बेहतर आवागमन सुलभ होगा।
8: अब लखनऊ में विकास जो भी होगा वो लखनऊ तक सीमित नहीं होगा, वो सीधे उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगा। और इसके लिए जैसे दिल्ली के अंदर आप देखते होंगे, दिल्ली से देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक पहुंच गई है। एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं लखनऊ से, हम उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल के एक नए प्रस्ताव को लेकर के भी चल रहे हैं। एक रिंग रोड बनेगा पूरा चारों ओर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर।

0: ताराबंकी, रायबरेली, ये सब जिले आपस में जुड़ेंगे।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्राकृतिक खेती कृषि को अधिक लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री आज कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें सभी सुविधाएं दे रही हैं। किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से मिलने वाली फर्टिलाइजर पर सरकार सब्सिडी दे रही है।
0: प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों को फसल की गारंटी की सुरक्षा मिली, आपदा में गारंटी की सुरक्षा मिली। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की गारंटी मिली। पहली बार अन्नदाता किसान के लिए प्रक्यूरमेंट के सेंटर स्थापित हुए और पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा। यानी एक एक कड़ी को जोड़ते गए, आपको जो फर्टिलाइजर कॉपरेटिव सोसाइटी में मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस बैग की कीमत होती है 4,000 रुपए। यहाँ पे यूरिया का दाम आपको मिलता है उसका 1/4 से भी कम में। ये सारी सब्सिडी भारत सरकार भरती है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी सेक्टरों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर शामिल होंगे और आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल होंगे। आगरा में कल भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इस कार्यक्रम की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखी गई है। ब्रिक्स फोरम की बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, रूस, दक्षिण अफ्रीका और भारत सहित 21 ब्रिक्स देशों और सहयोगी देशों के नीति निर्माता, उद्योगपति और उद्यमी हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में एमएसएमई के लिए वित्त और तकनीक तक पहुंच, सतत विकास तथा वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स एसएमई फोरम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और एमएसएमई के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण विकसित करने की उम्मीद है। ये फोरम सहभागी देशों के ज्ञान का आदान प्रदान करने और उभरते अवसरों की पहचान करने और समावेशी और सतत आर्थिक विकास में योगदान देने वाली साझेदारियां बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में बहुत मजबूती से समाया हुआ है और देश की सीमाओं को पार कर चुका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे प्राचीन ग्रंथों से लेकर वैश्विक मान्यता तक योग ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में अपनी जड़ें जमाए रखते हुए सीमाओं को पार किया है। इसी क्रम में एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास और विरासत के समन्वय का एक नया प्रतिमान स्थापित किया है। इसी क्रम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और प्रदेश के राज्य मंत्री डॉ शैलेंद्र तोमर ने मेरठ में वृक्षारोपण किया और स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। आगरा में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता के संदेश के बाद समाज की सहभागिता जुड़ने से परिदृश्य बदला है।

0: प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब स्वच्छता का संदेश दिया गया था तो उसमें पूरे समाज की भागीदारी जोड़ने का आह्वान किया गया था। और उनके आह्वान के पश्चात आज हम देखते हैं कि उसके पूर्व रेलवे स्टेशनों का जो परिदृश्य हुआ करता था, प्लेटफार्म गंदगी से भरे पड़े रहते थे, लेकिन जब माननीय पंतप्रधान जी के द्वारा आह्वान किया गया, समाज की सहभागिता इसमें जुड़ी, आज रेलवे स्टेशनों का दृश्य बदला हुआ दिखाई देता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यनाथ, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान के छठवें चरण की शुरुआत आज लखनऊ में प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए देश के बच्चों का पोषित होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को और मजबूती के साथ चलाने की आवश्यकता बताई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की 101 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विरासत की रक्षा के साथ विकास यात्रा को गति दे रही है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री ने कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को किया संबोधित। कहा, किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। ब्रिक्स MSME फोरम और SME वर्किंग ग्रुप की बैठक कल आगरा में होगी आयोजित। चीन, रूस और ब्राजील समेत 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। और प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान का छठा चरण शुरू। बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूती से चलाने पर दिया जोर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: हम आकाशवाणी के अयोध्या के इंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।

0: इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों, हमारे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक हिस्सा है हमारे खूबसूरत बाल। बालों का श्रृंगार तरह तरह से किया जाता है, पर अगर किसी के या किसी वजह से आपके पास आपके कुदरती अच्छे खूबसूरत बाल नहीं है, तो आज के जमाने में आप विग लगा सकते हैं और जो आपके चेहरे को सूट करे और अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ऐसे ही एक कलाकार है अनवर पावस्कर, जो विग बनाते हैं, लोगों की पर्सनैलिटी को निखारते हैं। अनवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मुझ जैसे इंसान को आपने आज यहाँ बुलाकर मुझे बहुत बहुत बड़ा मौका दिया है लोगों से बात करने का, क्योंकि मैं हमेशा पर्दे के पीछे रहता हूँ, कभी पब्लिक से आप लोगों से मिलने का मौका ही नहीं मिलता है। और मैं आज अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि आपने मुझे यहाँ तक बुलाया है।
0: तो आपकी ये जो खूबी है कि आप विग बनाते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या मतलब आपके यहाँ ऐसा ये व्यवसाय चलता था?
1: देखिए, परिवार की जहाँ तक बात है, मैं हूँ रत्नागिरी से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम है अनवर पावस्कर। अब ऐसा है मैडम, हमारे गांव में तो इतना कोई इंडस्ट्री में या फिल्म लाइन में या ऐसे लोगों ऐसे कामों में कोई आगे नहीं था। मेरे घर के लोग भी एक छोटे से घर के कामों में रहते थे, जैसे हमारे आम के वहाँ बागात है, खेती वगैरह है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: जब मैं बॉम्बे में आया था तो मुझे स्कूल के जमाने से एक शौक था पेंटिंग का, यानी कि लोगों की शक्लों को, अगर किसी की दाढ़ी लगा दो तो उसकी शक्ल कैसी होगी, किसी के यहाँ मसाला लगा दो उसके मुंह पे तो उसकी शक्ल कैसी होगी, किसी को काणा कर दो एक आंख से तो कैसा लगेगा। ये बचपन से एक शौक सा था कि इंसानों के चेहरे को मैं बिगाड़ता था, बनाता था, बिगाड़ता था, बनाता था। जब बॉम्बे में मैं आया तो बॉम्बे में मैंने फिल्मों में देखा एक आदमी जवान आदमी को बूढ़ा बना के दिखाया जा रहा है, एक गरीब आदमी को अमीर दिखाया जा रहा है। और वो जब मैंने मालूम किया, सीखा वहाँ से, कुछ पूछा लोगों को, तो मालूम पड़ा कि एक मेकअप नाम की ऐसी चीज़ होती है जिससे इंसान इंसान की शक्ल को बदली कर सकता। अच्छा, मेकअप के अंदर सबसे बड़ा हाथ होता है नकली बालों का, दाढ़ी का, मूंछ का। तो मैंने सोचा कि इस बारे में कुछ सोचा जाए, और सोचते सोचते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। आज मैं 33 साल से फिल्म लाइन में काम कर रहा हूँ।
0: 33 साल?
1: 33 साल मेरी उम्र है, 54। और ये काम मैं आज तक, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बोलते हैं कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से लाऊं, मगर मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि बिना किसी गुरु के ज्ञान लेकर आया हूँ।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं देख देख कर अपने आप को सीख।
0: खैर, हम में अगर सीखने की कोई ललक हो तो ये तो पौराणिक कथाएं भी कहती हैं कि आप गुरु अपने मन में मान लीजिए किसी को, और सच्ची लगन से अपना काम करिए तो आपको सफलता जरूर।
1: हाँ, तो गुरु हुआ ना उसके अंदर भी।
0: हाँ।
1: आपकी जो सच्ची लगन थी वो आपका गुरु हो गया।
0: जी हाँ। तो सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री में आपने किसको संवारा?
1: अभी भट्टाचार्य।
0: अभी भट्टाचार्य।

0: बहुत पुराने एक्टर थे, बंगाल के थे, और जब मैं फर्स्ट टाइम उनके पास एक मूंछ लेकर पहुंच गया था तो मेरी उम्र उस टाइम पे बड़ी छोटी सी थी, और वो देखते रह गए, बोले बेटे किसने बनाई है, बोला मैंने बनाई है, तो उनको यकीन नहीं आया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है लगा के दिखाओ, तो जो उस वक्त एक मेकअप मैन थे जो मुझे थोड़ा सा पुश कर रहे थे, उन्होंने काफी, मैं तो बहुत डर रहा था उस टाइम पे उनके नजदीक जाते हुए, कि मैं पहली बार किसी फिल्म एक्टर के नजदीक गया था, और जब मैंने मूंछ हाथ कांपते हुए लगाई थी तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी तो लगी थी, मगर मेरे को नहीं मालूम पड़ी वो टेढ़ी मेढ़ी, मगर उनको मालूम पड़ गई थी, और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बोला नहीं कि भाई ये बराबर नहीं है, सही नहीं था, कि उनको मालूम है बच्चा है हिम्मत हार जाएगा। तो अभी बैठा जाते जिसका कहा बहुत अच्छी लगा आपने मुझे, और बहुत अच्छी बनाई आपने, जबकि बाद में उन्होंने बोला था मेरे को बेटा इसमें ये प्रॉब्लम है जो मैं आपके सामने किसी सामने बोला,
1: मतलब उन्होंने एनकरेज किया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उस आदमी का आज तक मैं एक शुक्र ऐसा मानता हूँ, बेचारे इस दुनिया में अभी है ही नहीं वो, और उन्होंने मुझे जो धक्का दिया तो मैं लड़खड़ा था वो आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। बाद में मैंने जिंदगी में पीछे मुड़ के दिखाई नहीं, समझ लीजिए आज आज इस मकाम पर हूँ कि इंडस्ट्री के दिलीप साहब से लेकर अमित जी तक मुश्किल से कोई मेरे हाथ से बचा होगा।
1: चलिए बहुत,
0: अगर किसी की विग नहीं बनी तो किसी की दाढ़ी बना दिया हूँ, किसी की दाढ़ी नहीं बनी तो किसी की मूंछ बना दिया हूँ, अगर और कुछ नहीं बनाया तो मेकअप तो कर ही लिया उनका।
1: बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि जैसे मूंछ लगाई, तो जो ये विग बनाते हैं आप या मूंछ दाढ़ी जो भी कुछ बनाते हैं, तो इसके लिए ओरिजिनल जो बाल होते हैं उनका प्रयोग करते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा,
0: वैसे नायलॉन की भी बनती है, मगर उसमें जो नेचुरलिटी आनी चाहिए वो नहीं आती है, असली बालों से जैसे विग बनती है या दाढ़ी मूंछ बनती है उसके बाद ही कुछ और आती लगता है कि बिल्कुल नेचुरल ही आपकी दाढ़ी है या नेचुरल ही आपके बाल है।
1: तो कहाँ से आपको वो नेचुरल बाल?
0: में बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर की एक खासियत है, बालाजी का मंदिर है वो, और काफी लोग मानते हैं उनको, वहाँ पर ऐसी श्रद्धा है लोगों के दिलों में कि वो अपने सारे बाल, बड़ी बड़ी जवान जवान लड़कियां अपने बाल पूरे वहां उतार के आ जाती है, फुल बॉल्ड होके फुल टकली होके वहां से आती है, और वो सारे बाल, बहुत बड़ा कारोबार है ये बालों का, ये सारे बाल वहां से एक फैक्ट्री में जाता है, साफ होता है, साइज वाइज लगता है, और इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट होता है, यहाँ पे भी मिलता है उन लोगों को।
1: अच्छा, तो आप कैसे विग बनाते हैं?
0: एक्चुअली क्या होता है, जैसे फिल्मों की अगर कोई किसी की विग बननी है तो डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट दिमाग में होता है वो हमको एक फोटोग्राफ बताएगा।
1: अच्छा,
0: कि भाई इस आदमी को हमको इस की तरह बनाना है।
1: अच्छा, ये जो बाल आपने कहा कि एक्सपोर्ट भी होते हैं, आप भी उन्हीं लोगों से बाल लेते हैं जो असली होते हैं, तो ये क्या बहुत महंगा है?
0: अभी तक तो नहीं था, मगर अभी ये 2-3 साल से इतने महंगा हो गया है कि एक्सपोर्ट चालू हो गया बाहर
1: जी,
0: उसके रेट्स बढ़ गए सब। अभी
1: आमतौर पे अगर कोई व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाना चाहे, अच्छा सा विग लगाना चाहे, तो क्या कीमत पड़ेगी एक विग की अपने इच्छा अनुसार जो आपको ऑर्डर करें?
0: अगर आप बनाना चाहें तो 5,000 की बन जाएगी, अगर आप बनाना चाहें तो 50,000 की बनती है। अच्छा, आपके ऊपर डिपेंड है, लोग कहते हैं जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा बनेगा।
1: तो उसमें क्या क्वालिटी में क्या फर्क रहता है?
0: क्वालिटी में जैसे बालों की क्वालिटी अलग अलग आती है, किसी के बाल बहुत ही सिल्की मुलायम होते हैं जो काफी महंगे मिलते हैं।
1: अच्छा,
0: किसी के बाल बहुत ही लंबे होते हैं वो काफी महंगे मिलते हैं, किसी के बाल करली होते हैं जल्दी मिलते नहीं वो भी महंगे होते हैं। तो जैसे जैसे वो उसकी जो चॉइस होगी उसके हिसाब से उसकी प्राइसेस भी बढ़ती कम होती जाएगी।
1: पर अगर कुछ नहीं होते, आप विग ऐसा बनाते हैं जिसमें करली बालों की जरूरत होती है, तो क्या करते हैं
0: उसको? हम लोग मशीन से करते हैं ना, केमिकल से वगैरह पमिंग वगैरह करते हैं, उससे करली हो जाते हैं,
1: उससे करली
0: हो। हाँ, अगर करली बाल है तो उसको स्ट्रेट हो जाते हैं, वो तो बेचारे मजबूर बाल होते हैं, उनको आप जैसे शेप दो जो बोलो बेचारे मान लेते हैं।
1: अच्छा, एक शंका मेरे मन में ये आ रही है कि आप विग तो लगा लिया, फिल्म में कई टेक होते होंगे, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि विग किसी का काम करते करते गिर गया हो, निकल गया, उसको फिक्स कैसे करते हैं?
0: वो क्या, जो हम लोग जिस मटेरियल से विग को फिक्स करते हैं वो एक गम आता है, वो हमारे इंडिया में बनता है, फिर एक फॉरेन का गम आता है, उसको हम लोग ला के जब फिक्स करते हैं तो आप उसको ऐसा पकड़ के उठा सकते हैं, इतनी उसमें ग्रिप होती है।
1: अच्छा, तो आम आदमी जिसको रोज अगर विग लगानी हो, आपसे उसने विग ली हो, तो उसको रोज ये अपने गम लगाना पड़ेगा और चिपकाना पड़ेगा?
0: यहाँ जो रोज पर्सनल यूज जो करते हैं उसमें तो एक टेप आता है जो डबल साइड टेप होता है, उससे आप लगा सकते हैं, या तो कैप की तरह पहन सकते हैं या क्लिप लगा सकते हैं, बहुत सी चीजें आज के जमाने में इतना इंप्रूवमेंट है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: अच्छा,
0: और जैसा आप बोलते हैं विग निकल जाएगा, मैं तो बोलता हूँ लगने के बाद अगर हाथ से बड़े खींचे बाल निकलेगा नहीं, वो
1: नहीं निकलेगा,
0: नहीं नहीं, इसकी गारंटी इस बात से।
1: अच्छा, जैसे आपने पुरुषों के विग की बात की, महिलाएं अगर बहुत लंबे बाल चाहें तो ऐसा भी विग बनता है?
0: हाँ बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है, जितने लंबे, जितने आपकी हाइट नहीं है उतने लंबे विग बन सकते हैं, बालों के भी और नायलॉन के भी, सिंथेटिक के भी।
1: अच्छा, और उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जो आम आदमी पर्सनल यूज के लिए विग इस्तेमाल करता है?
0: सावधानी कुछ भी नहीं है, कोई इसका तो आइटम नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स का, यहाँ की वायर वहां लग जाएगी तो आईसी उड़ जाएगा जल जाएगा, बस पेन लिए, कंघी कर लिए, तेल लगा लीजिए, अपने असली वालों में जो होता है सब वही करना है, इसमें कोई ऐसा सावधानी वाली बात नहीं है,
1: कोई सावधानी की कोई जरूरत नहीं, बस आपके पॉकेट पे निर्भर करता है कि आप किस तरह का
0: लंबे बाल अगर है तो पॉकेट भी लंबी रखनी चाहिए आपकी, ये बात है।

0: बालों की जितनी लंबाई होगी उसकी पॉकेट की लंबाई बढ़ जाएगी।
1: आप बेसिकली विग मेकर हैं या मेकअप मैन हैं?
0: बेसिकली तो प्रोफेशनल के हिसाब से विग मेकर हूँ मैं।
1: अच्छा,
0: उसके बाद मेकअप मैन हूँ, मगर इसके अलावा कुछ और भी मेरे शौक्स हैं, जैसे मैं गाने गाते रहता हूँ हमेशा।
1: अब हम फिर से आपके विग वाली बात पर आ जाते हैं। आपके अनुभव कैसे रहे विभिन्न कलाकारों के साथ जिनके आपने विग बनाए?
0: मैंने जिनके जिनके साथ काम किया है उनसे मैंने हर इंसान से एक एक चीज़ सीखी। जैसे इंडस्ट्री में बहुत बड़े सुपरस्टार हैं जिनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने मुझे कहा कि जिंदगी में हमेशा इंसान को वक्त पर चलना चाहिए।
1: कौन है वो?
0: अब सुपरस्टार तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में एक ही है, और जिनको देखकर जिन उनकी खासियत ये बताऊं मैं आपको, उनको देखकर लोग अपनी घड़ियां सीधी करते हैं।
1: अच्छा, और किन किन कलाकारों के साथ आपने काम किया?
0: एक मेरे मनचाहे कलाकार है जिनका नाम है सचिन पिलगांवकर। देखिए, वो इंसान एक्टर है, डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, सिंगर है, डांस डायरेक्टर है, एक्शन है, ना ये समझ लीजिए कि एक फिल्म के लिए जितनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो पूरा पैकेज है। उनके साथ मैंने कम से कम 12 से 13 फिल्में की है मराठी, और सचिन साहब के मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया है।
1: अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी के लिए विग बनाया हो और उसमें बहुत किसी ने मीन मेख निकाली हो?
0: ऐसा एक्ट्रेस जो होती है, एक्ट्रेस मतलब जो लेडीज स्टार्स होती है, उनके नखरे थोड़े ज्यादा होते ही है, तो हमको प्रोड्यूसर पहले बोलता है कि वो थोड़ी नखरेबाज है, तो तुमको खाली उनके सामने हाँ हाँ बोलना है, बाकी करना वही जो हम बोलेंगे। तो हम लोग भी क्या, हम लोग प्रोड्यूसर के आगे हम लोग भी कठपुतली रहते हैं कि पेमेंट हमको वहीं से मिलना है, हीरोइन तो पेमेंट करेगी नहीं, तो हमको उनके हाँ में हाँ मिलाकर इनके साथ रहना पड़ता है। तो हम लोग भी यस मैडम करते रहते हैं कि उसने बुलाओ हमको, खाली तुम्हारे खाली यस मैडम बोलना, नो बोलने का ही नहीं।
1: अनवर जी, आपसे मैं ये जानना चाहती थी कि कई बार कैंसर जैसी बीमारी की वजह से जो उसमें इलाज होता है कीमोथेरेपी, बाल चले जाते हैं।
0: ये तो भगवान का दिया हुआ एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हर आदमी को फेस करना पड़ता है। पर क्या होता है कि वो एक ऐसी चीज़ है ना मैडम कि वो जैसे इंजेक्शन बदन में जाता है, एक ही रात में तकिए पे सारे बाल रह जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या पेशेंट बहुत डर जाता है। तो मैं वीक तो बाद में बोलता हूँ, पहले पेशेंट से 2-4 घंटा बात करता हूँ। तो कैंसर से जब बाल जाते हैं तो मैं तो मोस्टली अभी आपको एक बताऊँगा बात कि मैं यहाँ से पुणे तक गया अपने खर्चे से, अपने पेट्रोल से, उनका मेजरमेंट लेने के लिए, उनको वीक देने के लिए, और मैं उनसे चार्ज नहीं करता हूँ।
1: अच्छा,
0: हाँ, ये मेरी खासियत है। जब भी
1: मतलब जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनसे आप चार्ज?
0: मैं चार्ज नहीं करता हूँ। कभी कभी कोई बोलता है नहीं इतना महंगा, हमने वहाँ पूछा था, वहाँ पे उसने 18,000 रुपये बताया था, यहाँ पूछा था उसने हमको 20,000 रुपये बताया था। मतलब उसने बताया था, आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कुछ मेरे पास रेडीमेड भी रहते हैं, जैसे हमने शूटिंग में जो शूटिंग होने के बाद में बचते हैं,
1: हाँ,
0: वापस रहते हैं मेरे पास, तो मैं उनमें से एडजस्ट कर देता हूँ उनको। कभी कभी कुछ होता है ऐसे जो बहुत पैसे वाली होती है, बोले नहीं उनको मेरे जैसे थे, ये फोटो देख के आपको ऐसा ही बनाना है, तब मैं क्या करता हूँ, मजबूरी में बोलता हूँ मैडम अगर आपको पर्टिकुलर ऐसा बनाना है तो मेरे को खाली आपके बाल के पैसे आप दे दीजिए, या तो बाल ला के दे दीजिए, आपको ये आदमी से मिला देता हूँ जो हमारे एजेंट हैं, हम लोग बाल लेते हैं, आप उनसे फोन पे बात कर लीजिए कि मेरे 300 ग्राम बाल चाहिए मेरे को, अब कितना पैसा लोगे आप, उसको उसकी पेमेंट कर दीजिए, आई विल मेक फ्री, मैं उसका जो मेकिंग चार्ज लूँगा आपसे। ऐसा भी मैं कई बार करता हूँ, क्योंकि ये ऐसी बात है ना, क्योंकि आदमी जब कैमो लेता है तो उसको 2-4 लाख रुपये ऐसे ही खर्चा हो जाता है उसका, उसके बाद उसके ऊपर मैं और एक प्रदर्शन डाल दूँ बाल का तो अच्छा लगता नहीं।
1: तो ऐसा जो करता है उसका खुद अच्छा ही होता है ना?
0: मेरा तो हमेशा अच्छा हुआ है, और जो मैं कर रहा हूँ आजकल जो हेयर वीविंग का जो चक्कर है, हेयर पेस्टिंग जिसको मैं बोलता हूँ, वो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं, वो आपकी स्किन के ऊपर खाली पेस्ट हो जाएगा मगर लगेगा बिल्कुल नेचुरल।
1: अच्छा, उसको भी निकाल के रखना पड़ता है?
0: कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं,
1: वो लगा ही रहता है, एक बार लगा।
0: हाँ, यस यस,
1: मतलब जितने बड़े लगाए वो बड़े बढ़ेंगे नहीं, बस
0: बढ़ेंगे नहीं, बस उनके हाइट मुकरी की तरह
1: धो सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: शैम्पू कर सकते हैं,
0: शैम्पू लगाइए, तेल लगाइए।
1: अच्छा, खर्चा कितना आएगा? अगर
0: 5,000 से शुरुआत ड्रामा होता है उसका तो 50 तक जाना है।
1: अच्छा, ये विग के साथ इसका भी ऐसा ही करते?
0: अभी आजकल विग कोई पहनता ही नहीं, जमाने खत्म, खाली फिल्म में यूज होती है बस,
1: मतलब थोड़ी देर के लिए।
0: बाहर जो आजकल लगाते हैं वो हेयर वीविंग करा लेते, पैच लगा लेते आजकल।
1: अच्छा,
0: इतनों के लगे हुए यू कांट, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, आपको इतने नेचुरल लगते हैं आजकल।
1: अनवर पावस्कर जी, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और सारे श्रोताओं को मैं फिर से एक बार हाथ जोड़ के उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: इनसे मिलिए कार्यक्रम में, आज हमारे साथ थे विग मेकर अनवर पावस्कर। इस कार्यक्रम को तैयार करने में प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने। अब इजाजत दीजिए निम्मी मिश्रा को, नमस्कार।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी ये किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी

0: अभिनय यात्रा की शुरुआत।
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ठेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई, डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम, अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती थी, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आज के हवा महल कार्यक्रम में हास्य नाटिका हम सुनेंगे मशीन का चक्कर, लेखिका शांति स्वरूप प्रधान, निर्देशक विनोद रस्तोगी।

0: चलती हूँ तभी एक न एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। बस कह दिया ये काम सीखो वो काम सीखो, लेकिन कहना आसान है, उसमें जो मुसीबतें आती हैं उसका आइडिया किसी को नहीं।
1: बहू जी मैं पूछूं कि आप किसको उबालना है? आलू तो उबल गए।
0: मुझको उबाल दे मुझको, तुझे भी इसी समय आना था। मैं तो वैसे ही परेशान हूँ और तू दूसरी ही प्रॉब्लम लिए चली आ रही। जा कुछ भी उबाल ले।
1: मैं पूछूं बहू जी क्या हो गया? कुछ
0: चीले एक मोहिनी मेरा सर मत खा, जाकर रसोई में अपना काम कर, मेरी लक में तो ट्रबल है।
1: लेकिन हमारा आदमी बोले है बहू जी कि तेरी भूल तो बहुत महंगा आवे है, आप कितने रुपए गजलाई हैं?
0: ओफो, जब नहीं समझती तो क्यों बोलती है? टेरिबल नहीं ट्रबल, ट्रबल मुसीबत। जा अपना काम कर।
1: अच्छा अच्छा मैं चलूं।
0: ओहो इसमें भी नहीं है, कहाँ चली गई? किस बुरी घड़ी में लेकर बैठी थी। ठीक है ना मिल, आज मैं तेरा पता लगा कर ही रहूंगी।
2: अरे ये सब क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, लाल पर कहा कि मेरे पीछे मत बोला करो।
2: मैंने कहा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, होश तो ठिकाने है।
0: अरे आप कब आए? मैंने देखा ही नहीं।
2: ये तूफान क्यों आया हुआ है? पागलों की तरह तुम ये कपड़े इधर उधर क्यों फेंक रही हो?
0: आपने कहा कि फटे कपड़े घर पर ही।

0: सी लिया करो,
1: पैसे बचेंगे। यही सोचकर मैंने दो दर्जन सुइयां भी मंगा ली। कल से तीन खो चुकी हैं, एक आज लेकर बैठी थी, जरा देर के लिए उठी यहाँ से, वो भी गायब हो गई।
2: ओहो, तो बंदरों की तरह कपड़े उछालने से तुम्हारी सुई मिल जाए
1: तो और क्या करूँ। आपसे इतनी बार कहा है कि हाथ से सीने वाली मशीन ला दीजिए, लेकिन आप सुनते ही नहीं। दूसरे की तकलीफ से आपको क्या मतलब।
2: मशीन कोई तुम्हारी बातों से तो आ नहीं जाएगी देवी जी, उसके लिए तो पैसा चाहिए, पैसा। हाँ, आप क्या है साहब, देखो जब मिल जाए।
1: मशीन आने से देखिए कितना आराम हो जाएगा, सभी कपड़े घर पर ही सी जाया करेंगे, और फिर सुइयों के खोने का भी डर नहीं रहेगा। बोलिए कब लाएंगे मशीन।
2: देखो भाई, मैं तारीख तो नहीं बता सकता, मगर वादा करता हूँ कि ला जरूर दूंगा। अरे ये क्या करी बेबी, अरे अभी तो मैं जिंदा बैठा हूँ।
3: डैडी लाने के बाद फ्रॉक पहने, देखिए सुई घुस गई।
2: अरे सुई, देखो तो। ये रही। नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है बेबी, ये घुसी नहीं, चुभी है, चुभी है। चल चल भाग जाए।
3: मैं तो इतनी जोर से, और आपके लिए।
2: क्यों भाई, तुम तो कह रहे थे कि तुमने सुई यहाँ रखी थी, और ये उसकी फ्रॉक में कैसे निकली है।
1: इसकी स्पीड कितनी अच्छी है।
2: और भाई तमाम मशीनों में मुझे यही सबसे ज्यादा पसंद आई, इसीलिए मैं इस कंपनी की मशीन लाया हूँ। चलती भी बहुत हल्की है।
1: मेरे तो इतना ही चलाने में हाथ दुखने लगे, दरअसल कभी चलाई नहीं है ना। वैसे जैसा आपने कहा, हल्की तो चलती है।
2: भाई आप चाहे हल्की चले या भारी, मैंने तुम्हारे कहने से तुम्हें मशीन ला दी। और सुन लो, अब कमीज पैंट छोड़कर कोई भी कपड़ा दर्जी के यहाँ से लेने जाएगा।
1: भाई देखिए, अभी तो जाएंगे ही, जब मैं सीना सीख लूं तब बंद कर दीजिएगा। फिर सीखूंगी भी किससे।
2: क्यों, मिसेस चोपड़ा हैं, वर्मा जी की वाइफ हैं, शीला जी हैं, किसी से भी सीख सकती हो। उन्हें घर पर बुला लेना और पूछ लेना। अरे भाई बस थोड़ी सी चाय का ही तो खर्चा है।
1: यही तो मैं भी सोच रही थी, लेकिन सिलाई इतनी इजीली तो आ नहीं
2: जाएगी। अब इजीली पिजीली मैं नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ कि आप कपड़े दर्जी के सिलने नहीं जाएंगे बस।
4: ओहो मशीन, मैं पूछूं बहू जी जो मशीन क्यों लाया है, बड़ी सुंदर लगे हैं। मैं तो कब से भगवान से प्रार्थना करूं हूं कि हे भगवान हमारे बहू जी को मशीन दे दे। चलो मुझे भी आराम हो गया, अब मैं भी बहू जी से अपना ब्लाउज और साया सिलवा लूंगी।
1: हाँ हाँ सबों के सी दूंगी, अब मुझे और कोई काम तो रही नहीं गया है ना, बस तुम लोगों के कपड़े ही सीती रहूंगी। जा रसोई में जाकर अपना काम कर, ब्लाउज सिलवा लूंगी।
4: ये तो हो गया, अब कैसे काटूं।
1: मैं बताऊं बहू जी।
4: तू क्या बताएगी, ये कोई रोटी थोड़ी है जो झट से बता देगी कि ऐसे बेली जाती है। ये पजामा है, पजामा।
1: नहीं बहू जी, जे टाइम बर्मियाइन जी आपके काटना बताए थी, हम गौर से सुने थे।
4: अच्छा बता आप कैसे काटू, बड़ा सुने थी।
1: देखिए इसको जोर से कोई ताननी।
4: अच्छा
1: फिर कैंची से यहाँ से काटने शुरू कीजिए, और ऐसा ले जाते हुए यहाँ मिलो दीजिए, तब देखिए कैसा फिट बैठे।
4: बेबी बेबी,
3: क्या है मम्मी।
4: ये कपड़ा तान कर पकड़े रहे, यहाँ से ऐसे।
3: अच्छा मम्मी।
4: अरे अरे इतना तान मत, रस्सा कशी मत कर इसके साथ, धीरे करना थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है, फिर मत खींचना।
3: अच्छा,
4: मैं काट रही हूँ।
3: काटिए। ये क्या है मम्मी।
4: ये कैसा हो गया,
3: ये तो
4: छाव गया।
3: ये पैजामा है बोला।
4: मैं तुझसे तब से कह रही थी कि ठीक से पकड़, लेकिन तुझसे तो ऐसा बैठा ही नहीं जाता, अब क्या करूं।
1: एक काम हो सके है बहू जी, सिलते वक्त बड़े में भाग को पिच्छू की ओर दबा दीजिए।
4: हाँ हाँ ये बात तूने ठीक बताई, सिलाई में दबा देती हूँ।
1: यहाँ से दबाइए। हाँ ये आओ,
4: ठीक। जरा कपड़ा बाहर निकला जा रहा है।

0: इससे नहीं मोहनी, साग से खिला। आज तूने साग में नमक बहुत कम डाला है।
1: हाँ बहू जी, मैंने जान के कम छोड़ा, रोज रोज ज्यादा हो जावे।
2: मुझे भी खिला मोहिनी, तब से बातें किए जा रही है।
1: खिलाती हूँ बेबी, खिलाती हूँ, बारी बारी से कौर दूंगी। दोनों को एक साथ जल्दी जल्दी कैसे खिला सकती हूँ। बहू जी, बाबू जी आज लौटेंगे?
0: हाँ आ जाते होंगे।
1: एक महीना तो हो गया होगा बाबू जी को गे?
0: हाँ, एक महीने से तो ऊपर हो गया। मोहिनी जरा मेरा हाथ इस पट्टी में लटका दे तो।
1: अच्छा अच्छा बहू जी।
3: बेबी, बेबी, बेबी।
0: आती हूँ। जा मोहिनी देख, वो आ गए शायद।
1: मैं जाती हूँ। बाबू जी नमस्ते। बाबू जी
3: नमस्ते। कहो भाई, सब ठीक ठाक है ना? अरे लीना, ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया?
0: अरे क्या बताऊं क्या हुआ, वो शर्मियाइन एक दिन अपनी लड़की की 3 फ्रॉक सिलवाने आई थी, तो शटल लगाते वक्त उनकी लड़की ने मशीन गिरा दी और मेरा हाथ उसके नीचे आ गया।
3: मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है नीना कि फालतू काम मत किया करो, लेकिन तुम्हें मोहल्लेदारी से ही फुर्सत नहीं। मैं क्या मोहल्ले वालों के लिए मशीन लाया हूँ?
0: अब मना भी तो नहीं किया जाता जरा से काम के लिए।
3: कौन है? मोहिनी देख तो कौन है। और हाँ बेबी, तेरे हाथ का क्या हाल है?
2: अभी पूरी तरह ठीक नहीं मारे दी, अब शायद ही इम्तहान दे पाऊँ, कलमी नहीं पकड़ी जाती।
3: अरे नहीं नहीं, पकड़ लेगी पकड़ लेगी, जरा ध्यान से पढ़ती रहो बस, इम्तहान तक सब ठीक हो जाएगा।
1: बहू जी, जिंदल बाबू की नौकरानी कपड़े देगी है, जिंदलाइन ने भेजाए हैं ब्लाउज सिलाने के लिए, और उनकी नौकरानी एक अपना भी देगी है।
3: मोहिनी नौकरानी गई?
1: हाँ बाबूजी।
3: जाओ जाओ, ये कपड़ा जिंदल बाबू के सर पर दे मारो और कह देना कि हमारा घर कोई दर्जी की दुकान नहीं है, समझी?
1: अरे सुनिए तो, मैं वापस करा दूंगी शाम को, अभी अभी ठीक नहीं है, वो बुरा मान जाएंगी।
3: मान जाए बुरा, मुझे कौन से इश्तराई थोड़ी नहीं बनी। जा जा, मेरा मुंह क्या ताक रही है?
1: जी जी जाती हूँ।
0: बेबी देख तो कौन है?
3: भाई ये तुम्हारी मोहल्लेदारी इस तरह की मुझे बिल्कुल नापसंद है।
0: देखिए आपस में ये सब करने ही पड़ता है, जरा से काम के लिए मना नहीं किया जाता।
3: बाहर वालों के लिए क्या मशीन मंगाई थी मैंने, जब से आई है घर का तो सिर्फ तुमने एक पैजामा भर सिया है, 2 महीने हो गए मशीन है।
2: डैडी, घोष बाबू की लड़की आई है।
3: क्या कह रही है?
2: कह रही है माँ ने पूछवाया है अगर मशीन खाली हो तो मैं कुछ कपड़े सी लूं।
3: सुन लिया, सुन लिया तुमने नीना? बेबी जाकर कह दे मशीन खाली नहीं है।
0: अरे नहीं नहीं, सुन बेबी, कहना कि मिसेज झा के यहाँ मशीन गई है, वहाँ से मंगा लूंगी, तब आकर सी लीजिएगा। जा।
2: अच्छा।
3: क्या क्या कहा तुमने, यानी कि मशीन घर में नहीं है, मांगे गई है?
0: अच्छा, जब से मेरे हाथ में चोट लगी है तब से मशीन खाली ही तो थी, तो मिसेज झा ने एक दिन के लिए मांग ली, यही रखे रखे क्या होता, कोई खींच तो जाएगी नहीं।
3: हाँ ठीक है ठीक है, किए जाओ परोपकार, मोहल्ले वालों को भी ऐसा परोपकारी और कहाँ मिलेगा। मैं कहता हूँ नीना एक दिन ना पछताओ तो कहना, मैं कहता हूँ वो यहाँ कर नहीं सी सकती।
0: ओ, आप तो
3: ठीक है मेरा क्या है।
2: डैडी डैडी,
3: क्या है?
2: एक मिस्त्री आया, उसने ये पर्चा दिया है।
3: क्या है दिखा। नीना ये दुकान पर मशीन क्यों गई थी?
0: दुकान पर?
2: हाँ मम्मी गई तो थी, वही जब डॉली ने उसके अंदर सला करा कर पहिया चला दिया था।
0: हाँ हाँ, जरा सी खराब हो गई थी।
3: जरा सी खराब हो गई थी, ये देखो ये देखो। मैं पूछता हूँ अब कौन देगा ये रुपए, अब मांगो जाकर मिसेज जिंदल से या मिसेज झा से, कान खोल कर सुन लो नीना, मैं नहीं दूंगा ये रुपए, देना अपने पास से।
4: बाबूजी

0: ये मशीन को क्या हुआ?
1: बहू जी ने कहा है कि बच्चों ने जरा सी छू दी थी सो थोड़ी सी खराब हो गई।
0: ये थोड़ी सी खराब हुई है?
2: क्या हुआ?
0: हुआ है हमारा सर, और क्या। देखो देखो अपनी मोहल्लेदारी, पीछे का पहिया अलग, आगे के रॉड के दो टुकड़े, बीच से बॉडी क्रैक, और उन लोगों के लिए यानी कि जरा सी खराब हुई है। और भेजो दो एक जनों के यहाँ, जो थोड़ी बहुत साबुत बची है ना वो भी किनारे लग जाए।
2: हाय, ये तो इतनी टूट गई, मुझे क्या मालूम था।
0: ठीक है, अब तो मालूम पड़ गया तुम्हें। ए, तुम कहाँ किसके जा रहे हो? उठाओ उठाओ ये मशीन, चलो मेरे साथ।
3: कहाँ बाबू?
0: जहाँ मैं कहूँ वहाँ।
2: कहाँ जा रहे हैं? सुनिए तो, उनके घर मत जाइएगा।
0: तुम चुप रहो जी, ना होगी खैरात और ना बटेगी। मशीन वाले के यहाँ जा रहा हूँ, कम से कम आधे रुपए तो इसके अब मिल ही जाएंगे ना।

मशीन का चक्कर, ये हास्य नाटिका अभी आपने सुनी। लेखिका शांति स्वरूप प्रधान, निर्देशक विनोद रस्तोगी। आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की ये प्रस्तुति थी।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
1: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रूपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
3: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
4: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
3: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
0: फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत गुंजन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शोभित द्विवेदी। दोस्तों, हर साल आज 18 जून को दुनिया भर में पिकनिक डे मनाया जाता है। जी हां, आज है पिकनिक डे। यह दिन लोगों को अपने व्यस्त जीवन से ब्रेक लेकर प्रकृति के करीब खुले में समय बिताने, अपनों के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने और तरोताजा होने के लिए प्रोत्साहित करता है। पिकनिक शब्द की उत्पत्ति 17वीं सदी के फ्रांसीसी शब्द पिक और निक को मिलाकर हुई। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब शाही उद्यानों को आम जनता के लिए खोला गया, तब लोगों ने वहां बैठकर घूमना फिरना और अनौपचारिक भोजन करने की शुरुआत की।

दोस्तों, पिकनिक डे का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रकृति के आनंद लेने, तनाव मुक्त होने और परिवार या दोस्तों के साथ मजबूत रिश्ते बनाने का अवसर देना है। जी हाँ, अपने नजदीकी किसी पार्क, बगीचे या प्राकृतिक स्थल पर आप जाकर समय बिता सकते हैं। अपने साथ घर के बने स्नैक्स, सैंडविच, ताजे फल और जूस से भरी बास्केट भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा ओपन एयर डाइनिंग के साथ आप आउटडोर गेम्स, संगीत और हल्की बातचीत का आनंद भी ले सकते हैं।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: हेलो
3: हेलो सुनो टेलीफोन नंबर।
4: माय नंबर इज
5: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
6: दोस्तों, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और जैसा कि हम बात कर रहे थे पिकनिक डे की, जी हाँ, आज 18 जून को पिकनिक डे मनाया जाता है। और अगर बाहर तेज धूप या बारिश हो तो आप इसे इंडोर पिकनिक के रूप में भी मना सकते हैं। इसके लिए आप अपने लिविंग रूम में ही चादर बिछाकर या कुशन का एक छोटा सा बैठका बनाकर परिवार के साथ घर का बना खाना खा सकते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रकृति का आनंद लेने, तनाव मुक्त होने और परिवार या दोस्तों के साथ मजबूत रिश्ते बनाने का अवसर देना है।

और दोस्तों आज हल्दी घाटी विजय दिवस भी है। जी हाँ, हर साल 18 जून को यह दिवस मनाया जाता है। यह ऐतिहासिक दिन मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए हल्दी घाटी के युद्ध की याद में मनाया जाता है। 18 जून 1576 को राजस्थान की हल्दी घाटी में यह भीषण युद्ध हुआ था। यह दिवस महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है।

और दोस्तों इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और आप अपना और अपनों का बचाव करते रहिएगा, साथ ही सीधे धूप के संपर्क में आने से बचिएगा, हल्के ढीली सूती कपड़े पहने और घर से निकलते समय धूप का चश्मा, टोपी या फिर छतरी का उपयोग जरूर करें। प्यास न होने पर भी हर घंटे कम से कम एक गिलास पानी जरूर पिए। लू से बचने के लिए नींबू पानी, आम का पाना, छाछ, नारियल पानी और सत्तू का सेवन जरूर करें। पानी से भरपूर फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी का भी सेवन करें। साथ ही साथ कैफीन यानी चाय, कॉफी और शराब के सेवन से बचें, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी करते हैं।

अभिजीत और अलका याग्निक की गाई इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत गुंजन से दीजिए इजाजत अपने दोस्त शोभित द्विवेदी को। और हाँ दोस्तों, सुनना ना भूलिएगा 9:15 पर महफिल गजल और 9:30 पर आपका पसंदीदा शो सजीव फोनी कार्यक्रम हेलो अयोध्या।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम
1: किसान। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे, उसके पश्चात 9 बजे सुनिएगा News@9।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
3: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021, वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी, फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
3: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation at the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
2: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
3: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
2: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

0: और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
1: सेंडकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मिंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रेडल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए

0: कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
1: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
2: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
0: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
3: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: कृष्णा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉक हेल्पलाइन नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। मुंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का

0: Nations Cup in New Zealand today. And Navi, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. Four Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. That's all in the news at 9. Good night.
1: FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम महफिले गजल।
2: जिंदगी बहुत कीमती है,
3: उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
5: नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
6: RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
7: अवध क्षेत्र का सबसे विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्रीराम नेत्रालय अब नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद में भी उपलब्ध। 60,000 से भी अधिक सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन का अनुभव वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर पूजा थापर एवं डॉक्टर संजीव थापर द्वारा संचालित यहां उपलब्ध है अत्याधुनिक रेटिना एवं ग्लूकोमा क्लिनिक की सुविधाएं। साथ ही ये अयोध्या का पहला एसिलोर एक्सपर्ट ऑप्टिकल सेंटर है जहां चश्मे की जांच की जाती है विश्व स्तरीय ऑटो फोरॉप्टर एवं आई रूलर मशीन द्वारा। बच्चों के लिए खास मायोपिया कंट्रोल क्लिनिक की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आंखों की हर समस्या के लिए श्री राम नेत्रालय, पता नियावा रोड रिकाबगंज फैजाबाद। कॉल करें 91-16-76-46-46।
8: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
9: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
8: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
9: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
8: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 63-86-90-70-06। बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डी फार्म, बी फार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा, बसंतपुर, कटेहरी, अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
1: मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते।

चाहते थे मौत ही हमको जुदा करे, अफसोस अपना साथ वहां तक नहीं हुआ। तुमने तो अपने दर्द के किस्से बना लिए, हमसे तो अपना दर्द बयां तक नहीं हुआ। सुनिए गुलाम अली की आवाज में ये गजल।

0: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा फैजाबाद, अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियावा फैजाबाद, अयोध्या। फोन करें 9838100840।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिले गजल। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या, आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242442 और 7800037222।
1: जी हाँ, शुरू हो चुका है वो प्रोग्राम जिसका रहता है आपको बड़ी ही बेसब्री से इंतजार, यानी सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या। स्टूडियो में आपके साथ मैं हूँ शोभित द्विवेदी। इस लाइव फोनिंग प्रोग्राम में कॉल कीजिए 7376 4090 पर। आपकी कॉल मिलते ही आप सुनेंगे अपनी पसंद के नगमे, होंगी प्यारी प्यारी बातें। जी हाँ, प्रोग्राम का आगाज होते ही हमारे श्रोता, हमारे दोस्त हमारे साथ लाइन पर आ चुके हैं। हेलो।
3: हेलो,
1: नाम बताइए।
3: जी सर, हमराद बोल रहा हूँ, नगर आलमपुर।
1: हमराद
3: जी,
1: क्या करते हैं हमरान भाई?
3: घर पे खेती किसानी का काम है सर, उसके अलावा क्रिकेट भी खेलते हैं।
1: खेती किसानी में इस समय तो क्या चल रहा है? खेती किसानी में
3: जी,
1: खेती किसानी में इस समय क्या चल रहा है?
3: अभी धान की तैयारी हो रही है उठाने की।
1: तो बारिश वगैरह तो अभी हुई नहीं होगी?
3: जी सर, बारिश हो रही है, बारिश हुई थी कुछ दिनों पहले, अभी नहीं हो रही।
1: हाँ, अभी नहीं हो रही, अभी तो गर्मी पड़ रही है
3: जी, अभी 3-4 दिन से गर्मी काफी पड़ रही है।
1: हाँ, तो गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं आप?
3: सर, गर्मी से बचने के लिए पेड़ वगैरह है तो उसमें जो है काफी ठंडी हवा वगैरह आती रहती है तो बड़ा बहुत आसानी हो जाती है।
1: जी बिल्कुल, पेड़ पौधे
3: हमारे यहाँ असल में नीम का पेड़ बहुत है।
1: अरे वाह, जी
3: जी,
1: नीम के पेड़ आपके यहाँ है? जी बिल्कुल, नीम तो बहुत ही प्राकृतिक औषधि के रूप में माना जाता है।
3: जी सर।
1: चलिए हमरान भाई, गाना कौन सा सुनेंगे?
3: सर उसका नाम तो नहीं पता, शादी का जी,
1: शादी का कोई गाना।
3: असल में भाई की शादी हुई है ना, दोस्ती की लाइन का कोई भी गीत सुना दीजिए।
1: शादी हो गई?
3: जी हो गई।
1: चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और आपके भाई साहब को भी।
3: जी थैंक यू सर।
1: चलिए गाना सुनिए और कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: भाई देखते हैं हमारे अगले साथी कौन जुड़ चुके हैं हमसे। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। नाम बताइए अपना और कहाँ से फोन लगाया है।
1: जी मैं सुनील कुमार पाल बात कर रहा हूँ, रुदौली के माँ कामाख्या धाम क्षेत्र।
0: क्या हाल चाल है सुनील भाई।
1: बढ़िया जी बढ़िया।
0: माँ कामाख्या धाम रुदौली में, हाँ एक बार मैं जा चुका हूँ। जी बिल्कुल, मैं एक बार
1: पंचायत माँ कामाख्या धाम।
0: जी जी बिल्कुल,
1: कल हमारे यहाँ सीएम योगी जी आ रहे हैं।
0: तो तैयारियाँ चल रही है उसकी।
1: हाँ जी, बहुत जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं।
0: तो गर्मी का भी बहुत मौसम है, क्या कर रहे हैं आप गर्मी से बचने के लिए।
1: गर्मी से बचने के लिए नीम के पेड़ लगे हुए हैं और बस उसी के छांव में चल रही है।
0: नहीं, एक आध बार मैं भी गया हूँ वहाँ, मैंने देखा काफी पेड़ वगैरह बहुत है माँ कामाख्या धाम के आस पास।
1: जी जी बहुत ज्यादा, पूरा घर के थोड़ी दूर पे ही जंगल है हमारे।
0: हाँ अच्छा,
1: नदी भी है गोमती नदी।
0: हाँ गोमती नदी भी है। तो सुनील भाई करते क्या है।
1: जी हम तो अभी जॉब इधर चंडीगढ़ में करते हैं। अभी छुट्टियों में आए हुए थे बच्चों के।
0: जी चलिए बहुत अच्छी बात है, छुट्टियों में आप अपने घर आए हुए हैं। गाना कौन सा सुनेंगे आज।
1: राजा हिंदुस्तानी फिल्म का सुना दीजिए।
0: कोई खास गाना कोई भी सुना दें।
1: कोई भी सुना दीजिए।
0: चलिए राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत आपके लिए, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।

0: 7380 80 90। जी हाँ, यही है वो नंबर जिसे मिलाएंगे आप और हम आपसे कहेंगे हेलो।
1: हेलो
0: जी, नाम बताइए।
1: हुबलाल नाम है सर, हुबलाल आदित्य सजावास से बोल रहा
0: हूँ। हुबलाल जी, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है सर।
0: तो क्या करते हैं हुबलाल भाई?
1: सर मैं सिलाई का काम करता हूँ।
0: कहाँ पे करते हैं?
1: बॉम्बे में।
0: बॉम्बे में करते हैं, तो इस समय बॉम्बे से फोन लगाया है ऐप के माध्यम से आप हम? हाँ जी,
1: अभी आया हूँ छुट्टी पे।
0: अच्छा, अभी छुट्टी पे आए हैं, छुट्टी मनाने के आए हैं गर्मी की छुट्टियों में?
1: जी जी जी।
0: तो मुंबई में तो और भी ज्यादा गर्मी पड़ती होगी?
1: बहुत सर, बहुत गर्मी पड़ रही है।
0: तो गर्मी से क्या
1: बारिश चालू हो जाएगा तो मौसम ठंडा हो जाता है,
0: मौसम
1: ठंडा होना पड़ता है, ठंडी होना चालू हो जाता है।
0: अच्छा, मुंबई में
1: जी।
0: तो गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं?
1: बारिश होती है ना सर बॉम्बे में, तो ठंडी लगना चालू हो जाता है।
0: नहीं, हम लोगों ने तो सुना बॉम्बे की बारिश अगर होती रहती तो लगातार होती है फिर
1: जी। हाँ, 15 दिन।
0: हाँ, 10 दिन 15 दिन। गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: दिल बेताब से सर।
0: कौन सा, कोई खास गाना?
1: वो कल्याण अभी छाव मेरे महबूब आने वाले
0: हैं। चलिए, गाना सुना दे रहे हैं आपको, आपकी पसंद का।
1: जी सर,
0: कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।

0: आइए देखते हैं दोस्तों हमारे अगले साथी कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हाँ सर जी।
0: जी नाम बताइए अपना और कहाँ से फोन लगाया है?
1: मेरा नाम है चंद्रशेखर मिश्रा।
0: मिश्रा जी कहाँ से?
1: चंद्रशेखर मिश्रा, गांव शेरपुर, जिला बस्ती।
0: अच्छा, गांव शेरपुर।
1: हाँ जी।
0: बहुत सही। तो और क्या हालचाल है शेरपुर के, ये बताइए पहले।
1: ठीक है सर।
0: शेरपुर कैसे नाम पड़ा, कुछ पता है आपको?
1: शेरपुर शेर है गांव ना।
0: शेर है गांव, गांव के सब लोग शेर हैं?
1: नहीं सब लोग नहीं है सर।
0: खाली आप हैं?
1: नहीं हम नहीं है, गांव वाले।
0: अच्छा गांव वाले हैं।
1: तो मिश्रा तो सीधे साधे लोग हैं।
0: अच्छा आप सीधे साधे लोग, हाँ लग रहा है आपकी बात से। करते क्या हैं?
1: खेती करते हैं सर।
0: बिल्कुल खेती किसानी करते हैं। तो चंद्रशेखर भाई ये बताइए, गर्मी तो बहुत हो रही है।
1: हाँ सर गर्मी तो बहुत हो रही है
0: कि नहीं? तो खेती किसानी में भी बड़ा तो दिक्कत आती होगी, इस समय बारिश भी नहीं हो रही है।
1: सर काम नहीं हो पाता कुछ।
0: तो थोड़ा सा जैसे सर पे गमछा वगैरह रख के पानी की बोतल वगैरह लेके थोड़ा।
1: अरे सर जी बचाव। एक दिन चला गया था वहाँ दर्शन नगर गैस भराने के लिए, और उसी आने जाने में घाम लग गया।
0: जो गैस, अच्छा घाम लग गया उसी आने जाने में?
1: हाँ।
0: गैस वो भरी कि नहीं भरी?
1: नहीं भर गया सर।
0: तब
1: भर गया।
0: चलो ठीक है, कम से कम गैस भर गई। इतना आपने मेहनत किया, घामो लग गए, कम से कम गैस तो मिल गई।
1: ₹300
0: दवाइयों कराए हुआ है। चलो हमसे तो ना वसूलबो। हमसे तो ना वसूलबो।
1: नहीं नहीं सर, तो आपसे काहे वसूला।
0: चलिए गर्मी में ध्यान रखिएगा अपना और अपने घर परिवार वालों का भी। गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: अब कोई सुरैया का सुना दीजिए अच्छा वाला।
0: कौन सा गाना?
1: सुरैया का सुना दीजिए कोई अच्छा वाला।
0: सुरैया का?
1: हाँ
0: देखिए फिल्म बताइए चंद्रशेखर भाई, अभी फंसाइए नहीं हमको, आप फिल्म का नाम बताइए।
1: नहीं, नहीं फंसाएंगे नहीं सर जी।
0: फिल्म का नाम बताइए।
1: पुराना गाना हमको ज्यादा पसंद है।
0: पुराना गाना पसंद है, अच्छी बात है। फिल्म का नाम बताइए।
1: नहीं तो फिल्म का नाम आप अपनी मर्जी से बता दिया ना कि सुना दीजिए, याद करना पड़ेगा तो याद जल्दी नहीं आ
0: रहा। चलिए हम पुराना गाना आपको एक सुनवा दे रहे हैं। अब सुरैया का कौन सा गाना ये हमको भी नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप फिल्म का नाम बताते तो हम आपको सुनवा सकते थे।
1: नहीं वो उतना जल्दी याद नहीं कर पाएंगे ना।
0: शेरपुर वाले हो ना गुरु। चलो गाना सुनवा रहे हैं और कॉल करने के लिए धन्यवाद चंद्रशेखर भाई।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्कार।

0: सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। आइए देखते हैं हमारे अगले साथी कौन है। हेलो,
1: नमस्कार सर
0: जी। नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मुकद्दर में लिखी कोई बात है आकाशवाणी अयोध्या, हमारी तकती एक सौगात है आकाशवाणी अयोध्या करके दोस्त, ऐसा महसूस हुआ कि सदियों से हमारे साथ है आकाशवाणी अयोध्या।
0: वाह, बहुत खूब, नाम बताइए अपना गुरु।
1: मैं पालदा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी बोल रहा हूँ।
0: रफीक मंसूरी जी, क्या हाल चाल है?
1: बहुत बढ़िया सर, आप सुनाइए।
0: मैं भी एकदम ठीक हूँ। इंदौर का क्या हाल है, गर्मी कैसी पड़ रही वहाँ पर?
1: हाँ, अभी सर यहाँ बरसात का इंतजार है, गर्मी तो लगातार बनी हुई है, पर थोड़ा सा ठंडा माहौल है पहले की अपेक्षा।
0: अच्छा, ठंडा है माहौल?
1: हाँ, पहले की अपेक्षा तो ठीक है थोड़ा।
0: तो रफीक भाई क्या करते हैं आप?
1: सिलाई करते हैं सर हम।
0: सिलाई का काम करते हैं
1: जी।
0: तो गाना आज कौन सा सुनना चाहें?

0: गया।
1: ये हम पांच फिल्म गाना है, अमित कुमार लता मंगेशकर की आवाज में है, राजानों में सजनिया गई सब चंदनिया।
0: फिल्म देखी है आपने?
1: हाँ हाँ देखी है।
0: चलिए गाना सुनवा रहे हैं हम पांच जी, बताइए।
1: मिथुन और स्मिता पाटिल।
0: जब मिथुन स्मिता पाटिल, चलिए गाना सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का। कॉल करने के लिए धन्यवाद रफीक भाई।
2: जानू में सजनिया चमकेगी कब चंदनिया, घर में गरीब के

0: 9773 7040 90। जी हाँ, ये नंबर मिलाकर हमारे नए साथी लाइन पर। हेलो
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार, नाम बताइए।
1: ग्राम मंगला काछन पोस्ट औरंगाबाद जिला काशगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साहब की बात कर रहा हूँ सर।
0: तो रूप सिंह जी, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है सर हमारे तो। और आप सुनाइए, अयोध्या में क्या हो रहा है, अभी मौसम कैसा है?
0: अयोध्या में गर्मी पड़ रही है।
1: गर्मी तो यहाँ भी पड़ रही है काफी
0: जी, लेकिन इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है।
1: नहीं, वो तो बात सही है आपकी।
0: तो रूप भाई, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करता हूँ।
0: खेती बाड़ी का काम गर्मी के समय में तो भाई बड़ी दिक्कत होती होगी
1: जी। सुबह सुबह को होता है, लगभग 10 बजे तक काम खेतों में। फिर
0: जी बिल्कुल, हाँ सुबह के समय थोड़ा सा मौसम ठीक रहता है
1: जी।
0: तो गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: हिम्मत वाला का नैनो में सपना।
0: चलिए गाना सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का। कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: बीएड, डीएलएड, बीटीसी, डीएचपी, डीफार्म, बीफार्म और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें विदुषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट गौड़ा बसंतपुर कटेहरी अंबेडकर नगर। प्रवेश के लिए कॉल करें 9005141838।
1: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
2: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
1: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत, बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
2: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
1: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
2: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
1: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
3: सुना थे सखी, सुना थे कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
4: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे, अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
3: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकती फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
4: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
5: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
6: सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। आपके साथ मैं हूं शोभित द्विवेदी और कंट्रोल रूम से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं राजकुमार मौर्य और अरविंद कुमार। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो,
7: हेलो,
6: नाम बताइए सर।
7: जी सर, मेरा नाम शादान है, जिला अम्बेडकर नगर आलमपुर से।
6: क्या हाल चाल है शादान भाई?
7: ठीक ठाक है सर, आपकी दुआएं हैं, आप बताओ सर आपकी क्या हालचाल है?
6: आपकी भी दुआएं हैं हमारे साथ, बिल्कुल मैं भी ठीक हूँ।
7: ये सर एक कार्यक्रम जो हेलो फैजाबाद, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम लग रहा है हम लोगों को, बहुत दिन से हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं, कई बार हम लोगों का फोन लग चुका है इसमें
6: जी,
7: इसलिए हमें खुशी भी हो रही है सर कि हेलो फैजाबाद एक अच्छा कार्यक्रम आ रहा है, कि लोगों से अपने लोगों से बात होती है और लोगों की आवाज भी सुना जाता है इसमें, अपनी सब बेटी जो बता रहे हैं
6: जी,
7: बहुत खुशी महसूस हो रही है सर।
6: जी बिल्कुल, आप ही लोगों के लिए ये प्रोग्राम है, बना हुआ है कि आप लोगों को पसंद आए, आप लोग पसंद भी कर रहे हैं।
7: जी जी सर, और ये एक घंटे के प्रोग्राम हो सर, इसके लिए भी बहुत

0: सुविधा की थी, एक घंटे के प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोग से बात हो जाती है सर। पहले तो आधे घंटे का आता था, लेकिन अब एक घंटे का वो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है सर, एक घंटा।
1: जी बिल्कुल, आप ही लोगों की फरमाइश पर एक घंटे का प्रोग्राम किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे श्रोता हमसे जुड़ सकें, कनेक्ट हो सकें, अपनी बात कह सकें, अपना गाना सुन सकें। और बताइए गाना कौन सा सुनेंगे आज?
0: गाना सर वही संजोग फिल्म का सौदा का नंदलाल अब्रिज का उजाला है, ये गाना सुनिए सर।
1: चलिए सुनवा रहे हैं आपको हम संजोग फिल्म से ये गाना, और हमें से बात करने के लिए धन्यवाद शादान भाई।
0: धन्यवाद सर, आप कर दीजिए।

0: हैं, देखते हैं हमारे अगले साथी कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो,
1: नमस्ते सर।
0: जी नमस्कार, नाम बताइए।
1: सर बिरेंद्र तिवारी बोल रहे हैं, टीएन फोकर मिल मसौदा से।
0: क्या हाल चाल है तिवारी जी?
1: हाल चाल बढ़िया सर।
0: मसौदा का क्या हाल है?
1: बहुत बढ़िया सर, काम चल रहा है रिपेयरिंग का।
0: तो गर्मी के मौसम में कैसे अपना ख्याल रख रहे हैं ये बताइए, गर्मी तो बहुत हो रही है।
1: सर गर्मी में छाछ वाछ पी के काम चलाते हैं सर। अभी ठंडा पी लिए, कभी छाछ पी लिए।
0: जी बहुत अच्छा। और तो मसौदा में मेन मसौदा से ही बोल रहे हैं प्रॉपर?
1: जी जी, मसौदा केएम शुगर मिल के अंदर ही बैठे, अभी ड्यूटी में हैं सर हम।
0: अच्छा, केएम शुगर मिल के अंदर से ही बैठ के ड्यूटी से ही फोन लगा दिया आपने?
1: जी जी, वैसे प्रोग्राम सुन रहे थे, सुनते सुनते हमने खुद तक फोन लगाते हैं कि आपका लग ही जाए।
0: और लग गया?
1: लग गया सर, बहुत खुशी हो रही है आज तो हमें।
0: चलिए गाना बताइए अपना।
1: सर धर्म कांटा का गाना सुन रहा था।
0: धर्म कांटा का
1: ये गोटे डाल लेंगे।
0: चलिए गाना सुनवा दे रहे हैं आपकी पसंद का। कॉल करने के लिए धन्यवाद तिवारी जी।
1: नमस्ते।
0: नमस्कार।

0: देखते हैं हमारे अगले साथी कौन है। हेलो,
1: हेलो,
0: नाम बताइए अपना।
1: आदित्य।
0: आदित्य।
1: यस सर।
0: आदित्य कहाँ से फोन लगाया है?
1: बड़े अयोध्या से। यस
0: अयोध्या से?
1: सर।
0: अयोध्या में कहाँ से फोन आप रहते हैं?
1: बड़ी मजानिया।
0: अच्छा, क्या करते हैं आदित्य?
1: सर पढ़ते हैं।
0: पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में हैं आप अभी?
1: थर्ड।
0: थर्ड में हैं? अरे आप तो हमारे बहुत छोटे कॉलर हैं आज।
1: यस सर।
0: जी, तो इस समय तो आदित्य स्कूल बंद होगा ना, गर्मी की छुट्टियां चल रही होंगी। कब
1: यस सर।
0: से खुलेगा स्कूल आपका?
1: क्या सर?
0: स्कूल कब से खुलेगा आपका?
1: 1 जुलाई से। यस
0: 1 जुलाई से।
1: सर।
0: तो आदित्य गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: करण अर्जुन फिल्म का गीत प्यार का बंधन। तो प्यार का बंधन है।
0: प्यार का बंधन। तो प्यार का

0: बंधन है। तो हम आदित्य के लिए ये गाना सुनवा रहे हैं आदित्य, ठीक है? और कुछ कहना चाहते हैं? हेलो, और कुछ कहना चाहते हैं आदित्य? या गाना सुनवाए आपकी पसंद का?
1: गाना सुनवाए।
0: ठीक है आदित्य, कॉल करने के लिए हमें धन्यवाद।
1: नमस्ते।
0: नमस्कार।

0: तो अभी आपने हमारे छोटे से नन्हे से दोस्त आदित्य की पसंद का ये गाना सुना, और अब आइए देखते हैं अगले कॉलर कौन है। हेलो
1: जी सर, नमस्ते।
0: जी नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: सर किरण निषाद।
0: किरण निषाद जी, कहाँ से फोन लगाया है?
1: सर जिला जतना और चौरे बाजार।
0: चौरे बाजार से
1: जी।
0: क्या करती हैं किरण?
1: बस सर घर का काम करते हैं।
0: तो घर का काम खत्म हो गया आज?
1: जी सर, ब्लाउंड है बस, चौथा बर्तन, कपड़ा धोना, नहाना और सबका कपड़ा धोना, यही सब करते हैं।
0: तो किरण गाना कौन सा सुनेंगी आज?
1: सर अवतार पिक्चर का दीजिए, गाना
0: कौन सी फिल्म का?
1: अवतार। अवतार,
0: अवतार फिल्म का गाना सुनेंगी? अवतार का कौन सा गाना? सर ये किरण गाना सुनवा रहे हैं अवतार फिल्म का, और हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: जी

0: दोस्तों हेलो, अयोध्या का सफर लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो उठाइए फोन और डायल कीजिए 7376 80 40 90। क्या पता अगली कॉल आपकी हो और हम आपसे कहें हेलो। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: धर्म शरण।
0: धर्म शरण, कहाँ से फोन लगाया है?
1: जसौली, अयोध्या जिला।
0: जसौली से आए?
1: हाँ सर।
0: क्या करते हैं?
1: कुछ बस खेती बाड़ी काम करते हैं।
0: खेती बाड़ी का काम करते हैं?
1: हाँ।
0: तो खेती बाड़ी के अलावा और क्या शौक है? रेडियो सुनते हैं आप?
1: हाँ रेडियो सुनते हैं सर, मोबाइल।
0: तो गर्मी तो बहुत पड़ रही है धर्म शरण।
1: हाँ गर्मी बहुत तेज है सर।
0: तो गाना कौन सा सुनेंगे आज?
1: बॉर्डर फिल्म सुना दीजिए।
0: बॉर्डर फिल्म का कौन सा गाना?
1: कोई सुना दीजिए, देशभक्ति वाला।
0: बॉर्डर फिल्म तो सारे गाने देशभक्ति के हैं। चलिए चलिए चलिए चलिए चलिए, एक गाना हमने बॉर्डर फिल्म का लगा दिया है आपके लिए, और हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।
1: वेलकम सर।

0: दोस्तों हेलो, अयोध्या का सफर अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन शायद एक कॉल हम और अटेंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हेलो
1: हेलो सर, नमस्ते
0: जी। नमस्कार, नाम बताइए जल्दी से।
1: नाम मेरा विजय पाल यादव, ललहुआ मिटौली लखीमपुर खीरी से।
0: यादव जी, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है सर।
0: लखीमपुर का क्या हाल है?
1: बढ़िया है, गर्मी पड़ रही है सर।
0: गर्मी तो यहाँ भी पड़ रही है, मेरे ख्याल से गर्मी हर जगह पड़ रही है
1: जी।
0: बारिश का इंतजार है हम सबको।
1: हाँ इंतजार है, मगर बारिश होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है।
0: अच्छा, ऐसा क्यों?
1: बादल बन नहीं रहे हैं और क्या, यही है हम लोग अंदाज लगा सकते हैं।
0: नहीं नहीं,
1: मौसम विभाग से पता लगाते हैं
0: जी। बिल्कुल यही अंदाज हम लोग भी लगाते हैं, हमने तो ऐसे ही पूछा आपसे। चलिए गाना बताइए, कौन सा सुनेंगे, समय हमारे पास।
1: जी हाँ सर, समय तो कम है। तुमसे बढ़कर के दुनिया मैंने देखा कोई और फिल्म का।
0: फिल्म का नाम बताइए।
1: कामचोर सर है।
0: कामचोर फिल्म का नाम, ठीक है यादव जी, कॉल करने के लिए धन्यवाद। और गाना सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का।
1: ठीक है, धन्यवाद
0: धन्यवाद।

तो दोस्तों कार्यक्रम हेलो अयोध्या को खत्म करने से पहले हम आपको बता दें कंट्रोल रूम से हमारे साथ लगातार बने हुए थे अरविंद कुमार और राजकुमार मौर्या।

मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। किसी मोड़ पर कल फिर मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या से दीजिए इजाजत अपने दोस्त शोभित द्विवेदी को। हम और आप बने रहेंगे आकाशवाणी अयोध्या के साथ रात 11:10 तक।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
2: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देते हैं।
1: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
2: जी हाँ, और वो है योग।
1: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
2: एक ऐसी ऊर्जा

0: जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
1: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
0: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
1: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
2: योग करिए, निरोग रहिए।
3: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at Viva Tech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के